और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ।

मॉर्निंग पाकिस्तान, आसमान से नीचे जमीन के ऊपर, घर में घर से बाहर, दुनिया के जिस भी कोने में जहाँ कहीं मेरी आवाज सुनी जा रही है, सबको कहेंगे तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम जनाब। दिस इज रेडियो पाकिस्तान FM 101, ट्यून इन वन अबव, एंड मी योर आरजे अफसा चौधरी। दिन है जनाब आज पीर का, तारीख है 21 सितंबर 2026, और स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ जाता है 7:13।

जना मेरी बहुत सारी बातें तो एक घंटा चलती रहेंगी और उसके बाद आप लोगों की कॉल्स और आपके मैसेजेस भी चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का स्टार्ट लेने के लिए बहुत खूबसूरत तरीका होना चाहिए।

जी हाँ, तो मैं कह रही थी कि आज कुछ ऐसी गुफ्तगु, ऐसे कुछ अल्फाज दोहराते हैं जिसको शायद आप लोगों को सुनने की बहुत ज़रूरत हो, या शायद मुझे रिमाइंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आज वो कुल कायनात का मालिक बराह रास्त हमसे गुफ्तगु करे, या बराह रास्त हम उसको इमेजिन करें कि वो हमसे गुफ्तगु कर रहा है। जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं या नमाज़ के लिए बैठते हैं, जाए नमाज की तरफ जाते हैं, क्या कभी हमने सोचा कि हम अल्लाह पाक से गुफ्तगु करने जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह पाक से गुफ्तगु करते हैं। उस गुफ्तगु में हम कितने सवाल करते हैं कि हम भागम भाग में वो नमाज अदा कर देते हैं। हम क्या वो पूरी नमाज अदा करते हैं या नमाज में चोरी कर देते हैं? आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी चोरी कौन सी है? वो है नमाज की चोरी। एक तो वो लोग हैं ना जो नमाज पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, कजा करते हैं। एक वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो फर्ज पढ़ के सिर्फ भागम भाग में ऐसे भागते हैं। दुनिया के सारे काम अपनी जगह, पूरे दिन का अगर हम हिसाब लगाएं ना, एक से डेढ़ घंटा टोटल बनता है जिसमें हम हमारी सारी नमाजें बड़े सुकून से अदा कर सकते हैं।

इमेजिन करें कि हम उसी गुफ्तगु में मगन हैं और हमें एक आवाज आती है, क्योंकि मैं अधूरी नेमतें कभी अता नहीं करता, और अब जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनेगा। इसलिए तुम्हारे दिलों और घरों में वो जो हलचल महसूस हो रही है, वो जो अचानक से तुम्हें अंदर से मजबूत होने का एहसास आ रहा है, और वो जो खौफ जो बिना बताए कम हो रहा है, ये सब किसी वहम का नतीजा है या क्या है? ये मेरे फैसले का साया है। मैं तुम्हारे दुश्मनों से नहीं लड़ता, मैं तुम्हें इतना आगे बढ़ा देता हूँ कि दुश्मनी खुद ब खुद बेमानी और छोटी लगने लगे। मैं तुम्हें उन मुकामों से निकाल कर लाता हूँ जहाँ तुम्हारी कद्र नहीं होती, और मैं तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाता हूँ जहाँ तुम्हारा इंतजार लिखा होता है। बस तुम इतना याद रखना, जो होने वाला है उसे शक की नजर से कभी मत देखना, उसे अपने डर से मत तोलना, क्योंकि खौफ वहां होता है जहां यकीन नहीं होता, और जहां मैं खुद साथ खड़ा हूं वहां खौफ की गुंजाइश ही नहीं है। अपना सर हमेशा ऊंचा रखो, अपनी नीयत हमेशा साफ रखो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें ये सब किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये सिखाने के लिए दिया है कि जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर टिक जाता है तो पूरी कायनात उसका हक भी अगर छीनने के लिए आ जाए तो वो नहीं छीन सकती। जरा अपना थका हुआ दिल मेरे सामने रख कर देखो, बगैर किसी बनावट के, बगैर छुपाए, जैसे एक थका हुआ बच्चा अपने वालिद के आगोश में सर रख दे। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कितना खौफ जमा हो गया है, कितनी तशवीशें और परेशानियां रोज तुम्हारी छाती पर पत्थर बन के बरसती हैं, गुर्बत या बेरोजगारी का वो डर जो तुम्हें हर रोज आईने में कमजोर दिखाता है, नाकामी का वो तीर जो तुम्हारे दिल में ये वसवसा डालता है कि शायद तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, शायद तुम नाकाम रह जाओगे, और लोग और उनकी हंसी और वो मजाक जो तुम्हारा पीछा करती है, मगर वो तुम्हारे अंदर जहर बनकर उगल रही है। मैं ये सब देख रहा हूं, और यकीन करो मेरे बंदे, मैं आज ये सब तुमसे छीनने आया हूँ, जैसे कोई शफीक वालिद अपने बच्चे के हाथ से टूटा हुआ खिलौना लेकर कहे, अब इसे फेंक दो, मैं तुम्हें एक बेहतर और नया खिलौना दिलाऊंगा। याद रखो कि तुम्हारा ये डर इस बात का सबूत नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इस बात की निशानी है कि तुम बहुत देर तक अकेले इस दुनिया से लड़ते रहे हो, और जो बहुत देर तक अकेले लड़ते हैं ना, वो थक भी तो जाते हैं, और थक जाना कोई गुनाह तो नहीं होता, लेकिन अब तुम्हें थक कर गिरने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूँ तो हालात का रुख यूं बदलता है कि तुम खुद हैरान रह जाओ। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी जिंदगी किसी अंधेरी सुरंग में फंस गई है और जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नजर नहीं आती, लेकिन सच ये है कि तुम उस सुरंग के बिल्कुल आखिर मोड़ पर एक दफा ध्यान दो, जहां से कामयाबी और सुकून की रोशनी अचानक तुम्हारी आंखों को रोशन करने लगेगी,

मैं जानता हूँ कि रातों को तुम अपना हौसला कैसे हारते हो और अगली ही सुबह उस सारे हौसले को समेट कर तुम खड़े हो जाते हो इस दुनिया का सामना करने के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, यही वो सब्र है जिसकी मैंने खुशी तुम्हें अता कर दी और जिसकी वजह से मैं आज तुमसे मुखातिब हूँ। गुर्बत, मुश्किलात, नाकामियाँ तुम्हारे लाइक मुस्तकबिल नहीं हो सकती। ये सिर्फ जिंदगी के कुछ कठिन दौर होते हैं और कठिन दौर तो हमेशा गुजर जाया करते हैं। जब मेरा रब हार मानने से इनकार कर देता है, जब मेरा बंदा हार मानने से इनकार कर देता है और जब इन दोनों का साथ एक साथ हो जाता है, ये वो लम्हा होता है, वो वक्त होता है जब हम खुद हैरान रह जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ कैसे रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, हो कैसे रहा है, ये हुआ कैसे। खुशामदीद कहते हैं उन लोगों को जिनकी सुबह अभी अभी हुई है, सूरज अभी अभी निकला है, जिनका दिन अभी रोशन हुआ है। आप इस वक्त जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, चाय के पहले घूंट का इंतजार कर रहे हैं या घर के कामों में मसरूफ हैं, बस एक लम्हे के लिए रुक जाइए, एक गहरा सांस लीजिए, इनहेल। अब इस गहरे सांस के बाद सोचिए, कभी कभी हम वाकई बहुत अजीब होते हैं ना। अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए हम दिन रात भागते हैं, कल की फिक्र करते हैं, बिलों की टेंशन लेते हैं, रिश्तों के टूटने का खौफ होता है, सेहत की फिक्र होती है, मुस्तकबिल के सवाल होते हैं और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर भी दिमाग अपना हिसाब किताब बंद नहीं करता और यही सोचता है ये होगा तो कैसे होगा, ये होगा तो क्या ये हो पाएगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा और अगर ऐसा हो गया तो कैसे होगा। हम आने वाले कल को आज ही जीने लगते हैं। और आज सुबह मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, क्योंकि डेली अगर मैं लाइक कितना भी लेक्चर दे लूं यहाँ पर बैठ के, कितनी भी मोटिवेशनल बातें कर लूं, एक बात जो आपके अंदर अगर नहीं होगी ना तो उसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। और वो क्या है? वो यकीन है। हम इबादत के तरीकों पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादतें करते भी हैं, हम बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, लेकिन क्या हम अच्छे मुसलमान हो सकते हैं जब तक हमारे अंदर यकीन नहीं होगा? एक बात शायद हमें खुद से बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ पूछनी चाहिए कि क्या मुझे वाकई अल्लाह पर भरोसा है, क्योंकि जब इंसान को अल्लाह पर सच्चा यकीन और भरोसा होता है ना तो वो अंदर से बहुत मजबूत होने लगता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कोई खौफ महसूस नहीं होता, खौफ तो इंसान होने का हिस्सा है ना, दिल धड़कता है, हाथ कांपते हैं, कभी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन यकीन सिखाता क्या है कि डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? उस यकीन के साथ बढ़ाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी की डोर मेरे रब के हाथ में है। उसके बरक्स जो हमारा भरोसा कमज़ोर पड़ने लगता है तो हमें लगता है कि जैसे हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारी मदद के लिए कोई नहीं है, हम पागल हो जाएंगे, हम तो थक गए हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा और हम नतीजे अपनी मर्जी के मुताबिक निकालना शुरू कर देते हैं। रादर देन दिस कि हम यकीन करें, भरोसा रखें उस ज़ात पर जिस ज़ात ने सारे वादे कर दिए, दिल की कैफियत से एक दफ़ा पूछे कि हम सजदा भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सदका भी देते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में अचानक किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो उसी लम्हे हमारे दिल की हालत क्या हो जाती है? क्या हम फौरन घबराते हैं या सब्र के साथ शुक्र अदा करते हैं? क्या हम उस वक्त चीखों पुकार करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है, बेहतर होगा? मुझे लगता है शायद हमारे ईमान का एक बड़ा इम्तिहान उसी वक्त होता है जब हम ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं। असल सवाल उस वक्त सामने आता है जब रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब जवाब मिल नहीं रहा होता, जब इंसान को समझ आने लगता है
कि आगे क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, तब अपने दिल से पूछें कि दिल का भरोसा कहाँ पर है। कहते हैं हकूकुल्ला की माफी है, हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। दिन में कितनी दफा हम ये चीज खुद को रिमाइंड कराते हैं कि हकूकुल्ला की माफी है, हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। आज आपको एक असाइनमेंट देते हैं, दो तो लाइक 7:30 तक मेरे ख्याल से मेरा ये वाला चंक चलता है, लेकिन थोड़ा सा आज लंबा हो जाएगा। आज आप लोगों को एक असाइनमेंट देते हैं, आज आप लोगों ने इस चंक को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जो भी अस्माउल हुस्ना है उन सारों में, उन अल्लाह के सारे नामों की सिफात को आपने समझने की कोशिश करनी है। जैसे अल हफीज, हफाजत फरमाने वाला, अल वकील, जिसके सपुर्द तमाम के तमाम मामलात हैं हमारे। जब आप इन सारी चीज़ों को समझने लगेंगे ना, तो ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ बदल जाएगा। आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, आप असबाब इख्तियार करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में है, और वो कौन सा है? जिस पर आपका भरोसा है, जिसके सपुर्द आपने खुद को कर दिया, जहाँ कोई खौफ की गुंजाइश बचती ही नहीं है, जहाँ घबराहट का कोई सवाल आता ही नहीं है। तो अगर पिछले कुछ दिनों में आपका दिल बोझल था, या फिर आप परेशान थे, आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ था, या आप सोच रहे थे कि ये चीज़ होगी कैसे, कोई बात नहीं, बस एक जगह झुक जाएं, सवाल करें कि मुझे भरोसा है, और सच्चे दिल से एक दफ़ा भरोसा करके देखें कि आपकी मुश्किल हल होगी या नहीं होगी। यकीन करें, मुश्किल आपकी वहाँ से हल होगी यहाँ जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बस ये असाइनमेंट आपने पूरी करनी है, और आपने मुझे बताना है कि आपने अस्माउल हुस्ना कितने सीखे, कितना समझा, और उसमें से क्या आपने नतीजा निकाला। सिर्फ इतना नहीं है कि हिफाजत करने वाला, सिर्फ मीनिंग नहीं देखना, उस मीनिंग के आगे की कहानी क्या है, उस कहानी को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा काम है खोज लगाना। क्योंकि हमारा काम है खोज लगाना।

4471 आबिद अली मर्दान से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत लंबा मैसेज आपका इस ट्रैक के उस पार हम पढ़ेंगे। रमीज ने हमें ज्वाइन किया है और एक अनजान है कोई जिन्होंने अपना नाम लिखकर नहीं भेजा। आप ही व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अफजा चौधरी, जो कि कुछ दिनों में हम बदल के फातिमा ज़हरा कर देंगे क्योंकि मैंने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर दिया है, अफजा से फातिमा कर दिया है। अभी मैं अनाउंस नहीं कर रही, किसी वजह से नहीं कर रही, क्योंकि मेरे बहुत सारे लिसनर्स अभी भी नहीं आए हैं वापस। तो जब मुझे एहसास होगा कि मेरे सारे लिसनर्स जो पक्के वाले थे, जो सालों साल से मुझे सुन रहे हैं, जब वो वापस आ जाएंगे तो हम फिर अनाउंस करके अपना नाम दोबारा तब्दील कर देंगे।

खुश आमदीद कहते हैं वापस जनाब आपको प्रोग्राम में. 7:55 हो रही है इसीलिए मैंने ट्रैक थोड़ा सा पीछे कर दिया कि अब अगला ट्रैक लगा कि थोड़ा सा आपको सुना कि ट्रैक जाया करने वाली बात है. हिजाब जाहरा कह रही हैं कि उन्होंने मशीन लगाई और वो कपड़े धो रही हैं इतने सुबह सुबह. कितनी प्यारी बच्ची है, ताबेदार बच्ची है. लेकिन कपड़े धोने के इनाम में आपको क्या मिलने वाला है? चॉकलेट, कोई अच्छा सा खाना, कपड़े धोने का मुआवजा जरूर लेना घर वालों से. रमीज कह रहे हैं कि आरजे आप अपना नाम जो भी रखे हम आपको पहचान लेते हैं आपकी आवाज से. जब आप सालों साल सुबह उठ के एक ही काम करेंगे तो आप आवाज से तो पहचानेंगे ना. तो मेरे भाई आप प्लीज तलाक अंग लिख लिया करें, आप अपने गांव का नाम नहीं लिखा करो, नहीं लिखा करो, मेरे से नहीं पढ़ा जाता. आज से आपसे मेरी गुजारिश है प्लीज आप तलाक अंग लिखा करो.

यकीन करें आज मैंने फैक्ट चेक्स खोले, बिजनेस की न्यूज खोली, सारी चीजें मैंने खोली है, लेकिन मुझे कहीं पे ऐसी कोई पॉजिटिव चीज नहीं मिल रही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। दिल बर्दाश्त होके मैंने फिर बस डिसाइड किया कि छोड़ो यार, कोई भी ऐसी चीज़ मुझे शेयर ही नहीं करनी जो कि इनको उदास करे, और इनकी उदासी जो है वो फिर हमारी उदासी बनेगी, हमारी उदासी इनकी उदासी बनेगी। खैर जो भी है, जिसकी उदासी भी बनेगी। टाइम पूरा हो गया है, 8 बजने वाले हैं, हमने न्यूज़ ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के उस पार वापस आएंगे, फिर आपकी बातें हमारी बातें सब मिल के करेंगे। अभी बढ़ते हैं छोटी सी न्यूज़ ब्रेक की जाने, सिर्फ हेडलाइंस चलाएंगे और वापस आएंगे।

ladies and gentlemen, we are back. Welcome to the second hour of the show. If you have just tuned in, you are right on time because we have a lot more. म्यूजिक हमारा ऐसे चलता रहेगा, एनर्जी हमारी हाई रहेगी, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. लेकिन क्या आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस? यस, 051-111-0101 इज द डायलिंग नंबर. टेल मी वेयर यू आर लिसनिंग फ्रॉम, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द सॉन्ग्स, आपकी फरमाइशें करनी आपने 051-111-0101 पे. आपके मैसेजेस 4471 पे. तरीका बहुत ही आसान है. गो टू योर राइट मैसेज ऑप्शन, टाइप 101 स्पेस योर नेम, योर प्लेस नेम, योर मैसेज एंड सेंड दैट 4471. हिजाब जहरा कह रही हैं कि मेरे घर वाले तो कुछ नहीं देंगे, आप मेरे लिए अच्छा सा सॉन्ग लगा दीजिए, हुक्म करें कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको. आपके लिए अब भी हम गाना चलाएंगे, ऐसी की तैसी घर वालों की. एक चॉकलेट भी नहीं दे सकते यार इतने कपड़े धोने के बाद, जिद करके बैठ जाओ. बोलो अम्मी को, बोलो कि आप ही ने मुझे बिगाड़ा है, आप ही कह रही हैं कि चॉकलेट चाहिए. चॉकलेट देनी है आज आपको लेके, और हर हाल में लेके देनी है. मैं कुछ भी नहीं बोलना भरावा, मैं कुछ नहीं बोलना, तुसी तला गंग लिख के ही भेजा करो मेहरबानी. आबिद अली कहते हैं कि दोनों नाम बहुत प्यारे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए. दुआओं में आप लोग हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, और ऐसे ही रखेंगे हम आपको हमारी दुआओं में. कैसी लगती है ये वाली आवाज आपको, सुन के बताइएगा. आई थिंक ये वाला ट्रैक हम सुन चुके हैं, तो क्यों ना अभी हम ये वाली आवाज सुनाएं.

कजिन है ना, वो लोग जिनका आज इंटरव्यू है, गुड लक बोलेंगे उन्हें और उन्हें एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपना अपनी नोटपैड अपने साथ रखा करें, इसके अलावा आप अपना पेन अपने साथ रखा करें, अपनी सीवी प्रिंटेड फॉर्म में लाजमी लेके जाया करें। ये बिल्कुल भी एचआर के ऑफिस में जाके मत बोला करें कि हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में है या आपको ऑलरेडी भेजी हुई है, प्लीज़ चेक कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर वहाँ पे आपको मेरे जैसी एचआर मिल गई ना, तो अगले ही लम्हे वो आपको कहेगी कि ठीक है बेटा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, अगली दफ़ा मिलेंगे किसी अगले इंटरव्यू में। इसलिए अपनी चीज़ें आपने पूरी लेके जानी है, नोट पैड लेके जाना है, चीज़ों को नोट करना है, साथ साथ जो चीज़ें भी आपको गाइड की जाती हैं, जस्ट इन केस आप रिजेक्ट हो जाते हो, आपने बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना है, आपने अपने हौसलों को वैसे ही बुलंद रखना है, क्योंकि हर इंटरव्यू आपको एक सीख देता है, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाता है, अगर आप इम्प्रूव करने वाले हों खुद को। हर इंटरव्यू से आप कुछ ना कुछ सीखते हो और दिन ब दिन बेटर होते हो। वेल जनाब, आज आप लोगों ने ना कोई एक ऐसा गाना मेरे साथ शेयर करना है जो कि आपको आपके बचपन में ले जाए या आपकी जवानी में ले जाए। बुढ़ापे में तो आप ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि वॉक तो नहीं हो सकती आपसे।

अच्छा तरीका है वैसे मार्केटिंग करने का. आप मुझे वैसे कहते मैं वैसे भी मार्केटिंग कर देती. वेल जनाब कह रहे हैं कि आरजे ज़ारा नूर से आपकी मुलाकात हुई है. नहीं, मेरी किसी आरजे से मुलाकात नहीं हुई है, बस एक दो के अलावा जिनको मैं रेडियो से पहले से जानती हूँ. जैसे अदील लतीफ़ हो गया, अदील लतीफ़ ने 101 ज्वाइन किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है. अदील लतीफ़ को मैं 2019 से जानती हूँ, शायद थोड़ा सा उससे पहले. आतिर अली सैयद हो गए जो कि रात को आते हैं, रात के प्रोग्राम करते हैं. मैडम सदफ हो गई. इन तीन के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से भी मिली हूँ, या अगर मिली होंगी तो भी नाम याद नहीं होगा क्योंकि उनसे रेगुलर मेरी मुलाकात नहीं होती है. लेकिन इन इन तीन लोगों से ऐसा है कि मैं कॉन्टेक्ट में रहती हूँ.

कामिल कह रहे हैं कि आप हिजाब जहरा को सॉन्ग सुना दें, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। हिजाब जहरा बच्ची है भाई, ये प्यार भरे दो शर्मीले नैन कोई नहीं होते, ये सब धोखा है और ऐसे धोखे में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हिजाब कह रही है आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रैक लगा दीजिए। ओह माय गॉड, आज उनकी बेटी का पहला बर्थडे है। मैं कुर्बान, मेरी तरफ से बहुत बहुत बहुत खुशियां मुबारक आपको। बेटियां बहुत प्यारी रहमत होती हैं, आप मुझे ही देख लो, लेकिन मेरे माँ बाप कब मानेंगे ये। जो लोग भी कॉल्स कर रहे हैं वो तो इस वक्त मुझे सही नवाज रहे होंगे, आपकी कॉल्स की जाने भी बढ़ते हैं, जरूर बढ़ेंगे जनाब।

अशक सजते हैं हर दूल्हे पे, वही जिंदगी बर्बाद हो रही होती है और आप कहते हो दूल्हे का सेहरा सुहाना और दुल्हन का दिल दीवाना। दुल्हन से तो कभी पूछ के देख लो,

0: जनाब, किसी ने हमें मैसेज किया है टोबा टेक्सिंग से. मलिक रेहान अली हमें टोबा टेक्सिंग से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए. और मेरे ख्याल से चले हम नहीं कहते. अस्सलाम वालेकुम. मनोवन
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक. One above FM 101.
2: Hum pe hi guzre.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101. 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में एक मौसर कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 8 खवारिज को हलाक कर दिया है। मुल्क भर में आज से 115 अजला में पोलियो के खात्मे के लिए एक हफ्ता दौरानिए की जैली कौमी मुहिम शुरू हो गई है। और इसराइली फौजों ने मशरकी बैतुल मुकद्दस के शुमाल मगरबी कस्बे बिद्दू में धावा बोल दिया और मस्जिद में मौजूद नमाजियों का घेराव कर लिया।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ। वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर अरसलान मसूद, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर। जुमेरात 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: This is FM 101.

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे

0: Coming up.
1: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिले हंगो में एक मौसर कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 8 खवारिज को हलाक कर दिया है। मुल्क भर में आज से 115 अजला में पोलियो के खात्मे के लिए एक हफ्ता दौरानिए की जैली कौमी मुहिम शुरू हो गई है। और इसराइली फौजियों ने मशरक़ी बैतुलमक़दस के शिमाल मगरबी कस्बे बिदू में धावा बोल दिया और मस्जिद में मौजूद नमाजियों का घेराव कर लिया।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

This is FM 101. सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर अरसलान मसूद, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर। जुमेरात 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन की 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के आला सतह के 81वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। गुज़श्ता माह पाकिस्तान की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का हजम बढ़कर 31 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुंच गया है, जो दो साल के दौरान माहाना बुनियाद पर बुलंद तरीन सतह है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिले पंजगोर में एक कार्रवाई के दौरान फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। और एशियाई खेलों में खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल भारत और श्रीलंका के दरमियान निशिन में जापान में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101 101।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: सुनते रहिए FM 101.1
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ। वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर अरसलान मसूद, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर। जुमेरात 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।

दिल मुब्तला है कब से अजाबे सुकूत में, तू रब्बे नुत को लब है मुझे बोलना सिखा। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम लाहौर और पूरे पाकिस्तान में, जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, पाकिस्तान से बाहर भी आप सबको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम।

FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेडीज लाउंज लेकर मौजूद है एक बार फिर से आपके साथ। आपकी अपनी आरजे सादिया रफीक। एवरी मंडे हमारा और आपका साथ रहता है इस शो में 11 से लेकर ठीक 1 बजे तक। थोड़ा सा आज लेट हो गए लेकिन जनाब इसी खूबसूरत से साथ को निभाने के लिए एक बार फिर से हम मौजूद हैं आपके साथ। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते गाते मुस्कुराते हमारे साथ साथ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रहें FM 101 के साथ साथ। तो जनाब हमेशा की तरह ढेर सारी बातें, ढेर सारी चिट चैट आज के शो में भी होगी, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं आज के वेदर अपडेट की जानिब। लेट्स सी क्या चल रहा है वेदर में। वेल लिसनर्स, एज पर रिकॉर्डेड एट 11 AM इट्स 34 डिग्री सेल्सियस ऑन द स्केल। मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर टुडे इज 35 डिग्री, जबकि कम से कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें तो देयर इज 48%। हवा चल रही है 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ओवरऑल वेदर आज के दिन सनी है एंड सनी सनी सनी इज गोना कंटिन्यू टिल वीकेंड। ऐसा वेदर रिपोर्ट अभी तक बता रही है, आगे चल के क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये जानते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। अभी हम बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम के वेरी फर्स्ट ट्रैक के जाने आगाज करें ब्राउज लक की आवाज़ से। आप सबसे कहते हैं हमारे साथ साथ रहिए, कीप डायलिंग 04221100101 आप लोगों की ऑफर कॉल 12 बजे तक शामिल करेंगे शो में। फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहें तो facebook.com/FM101 लाहौर।

जी तो जनाब, रास्ते में सफर में जो लोग मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, आपसे कहेंगे आप सेफ वे, देखभाल कर दाएं बाएं आगे पीछे जहां तक नजर जाए घुमा लीजिए। इस बात का इत्मीनान कर लीजिए कि आप ठीक जा रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी ठीक जा रहे हैं। और जनाब, आपके पास कागजात पूरे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। Whoever hits the road, उसके पास एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द ओनली डॉक्यूमेंट दैट शोज कि यू आर अ क्वालिफाइड ड्राइवर और यू हैव क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस रोल। सो जनाब, भूलना नहीं है, जिन जिन के पास नहीं है फौरन से बनवाएं। कह दिया मैंने आप सबको। सो जनाब, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना चाहिए एज इट इज। जैसे वो डिवाइस होते हैं हमारे लिए होते हैं और हमें ही फॉलो करने होते हैं, किसी भी परेशानी से बचने के लिए, किसी भी मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए। एनी वे जनाब, बात करते हैं आज के टॉपिक के वाले से। ऑलरेडी वी लेट, सो इट्स 11:30 ऑन द डायल राइट नाउ। बहुत ही मजे का टॉपिक, बहुत ही सादा सा, लाइट सा, और मैं समझती हूँ मजे का टॉपिक आज जो हम लोगों ने चूज किया है। आई वाज थिंकिंग कि जनाब बिल्कुल फिलोसफी वाली गुफ्तगु नहीं करनी, यहाँ वहाँ हमने नहीं खोना, कुछ सादा सी बात होनी चाहिए। इतना अच्छा वीकेंड गुजार कर जब हम वापस आते हैं, एंड स्पेशली ऑन मंडेज जब हमारे दिन, जो मंडे का दिन बहुत भारी होता है बहुत सारे लोगों पे, सब लोगों पे ही कहूँगी, और जिन्होंने दोबारा से रूटीन में वापस आना होता है, पता नहीं क्यों। हालांकि वैसे से कई मंडेज हम गुजार चुके होते हैं, लेकिन हर बार मंडे जो है वो बहुत हैवी होता है। और ये ऐसा नहीं कि हमारे मूड और मिजाज की वजह से मैं ऐसी बात कर रही हूँ, इट इज़ प्रूवन, बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो इस पे की गई हैं, और लोग ये तक नोट किया गया है कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्पेशली अगर सडन हार्ट अटैक्स की बात करें, तो वो मोस्टली मंडेज को होते हैं। हम बिला वजह पता नहीं क्यों एक नए हफ्ते की शुरुआत पे पैनिक कर रहे होते हैं अपने कामों को लेके। सो डोंट पैनिक, आपसे यही कहेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक ये है कि आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा काम है हमारी ज़िंदगी में, कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा काम के जिसको करते हुए हमें शर्माना नहीं चाहिए और कर देना चाहिए, कह देना चाहिए, और मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू से टू कम्प्लीट दिस सेंटेंस। मतलब होता है ना कि हम बहुत बार हेजिटेट कर रहे होते हैं और खामोश रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सच बोलते हुए हेजिटेट कर रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं कि सच तो ये है लेकिन मैं इनके मुंह पे कह नहीं सकता। शर्मा रहे होते हैं, मिला ना, झिझक रहे होते हैं, एक झिझक सी होती है। सो आपने मुझे बताना है कि आपके नज़दीक ऐसा कौन सा काम है ज़िंदगी में जो हमें कर देना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बिला झिझक कह देना चाहिए। सोचे जनाब और हमें बताएं, और हम आपको जनाब म्यूज़िक सुनाते रहेंगे साथ साथ, और मेरे पास फरमाइशें भी आ रही हैं, लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप बीट और कोई नया ट्रैक जो रिसेंट इरा का हो वो हम प्ले करें, ताकि हम हर म्यूज़िक को जो है वो इंजॉय कर सकें। एंड स्पेशली अगर हम इस स्लॉट की बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें हम थोड़ा मूड को, वैसे तो हम अपने मूड को हमेशा अच्छा और अप रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गो विद द फ्लो होना चाहिए ना, ये कहना चाह रही हूँ मैं। मेरी प्लेलिस्ट देखें और जो आप लोगों की तरफ से फरमाइशें आ रही होती हैं वो टोटली ओपोजिट हो जाती हैं। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, अगर आप लोगों की फरमाइश मैं इस स्पेस पे प्ले ना कर पाऊँ कि दिस वन इज एन ओल्डी। ओल्डीज का अपना ही एक रंग है, आई एग्री, नथिंग कैन मैच ओल्डीज, लेकिन शो का भी अपना ही एक मूड होता है।
वेल जनाब, ये वो सॉन्ग है जिसका एक पार्ट जस जैन जुहेब की वजह से बहुत ही हिट जा रहा है, उसको सुनने के लिए हम ये सॉन्ग सुन रहे हैं। स्टिक अराउंड, दिस इज एफएम 101।

All right, listeners, we're back once again. Lord Kratchu ke aapke saath FM 101 Radio Pakistan Lahore ke live on your studio se aap sun rahe program Ladies Lounge aur mujhe kehte hain Sadia Rafiq. Aapko kya kehte hain aap hame bata rahe hain 04211100101 par. Zaheer Abbas sahab hamare saath maujood the, Ofer Hanif bhai hamare saath maujood the. Bahut shukriya aap sabka. आप लोग हमें सुन भी रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. आज जो लोग बार बार डायल कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को सलूट.

सो हम बात करें कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा ही कौन सा काम है आखिर हमारी जिंदगी में जो हमें करते हुए झिझकना बिल्कुल नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप उससे कि कभी कभार हम काम में बिजी बहुत होते हैं और हमें किसी काम को ख़त्म करना होता है, हम थक रहे होते हैं, हम एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं अच्छा खासा, हमारे आसाब जवाब दे रहे होते हैं लेकिन हम लगे हुए होते हैं कि इस काम को ख़त्म करके छोड़ना है यार, ब्रेक नहीं लेनी, लोग क्या कहेंगे। सो आई मस्ट से लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना, मत झिझकिए, मत शर्माइए, रेस्ट कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, बहुत ज़रूरी होती है कभी कभार ज़िंदगी में ब्रेक, एक ब्रेक छोटी सी ब्रेक हो बेशक, वो आपको रिफ्यूल करती है, आपको री एनर्जाइज करती है। आई नो कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं कि काम शुरू किया है तो ख़त्म करके ही बैठेंगे लेकिन इन द एंड मैंने भी ये सीखा है आई नो कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं कि काम शुरू किया है तो ख़त्म करके ही बैठेंगे

सो उसके लिए हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। facebook.com/fm101 लाहौर हमारा फेसबुक पेज एड्रेस है, जहाँ पे आपको हमारे शो का स्टेटस अपडेट मिलेगा और वहाँ पे आप जनाब स्टेटस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से। आप लोगों के जो मैसेजेस हैं इनको हम शामिल करते रहेंगे शो में नाउ एंड देन। लीजिए नाम नेक्स्ट ट्रैक प्ले करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं और मज़े मज़े के गॉसिप्स करते हैं। इट्स लेज लाउंज, एक बजे तक हमारा और आपका साथ। इब्राहिम सुलेमान एंड हसन मलिक की आवाज़। कीप एंजॉयिंग, स्टे अराउंड।

जी जनाब। कौन सा ऐसा काम है हमारी जिंदगी में जो हमें करते हुए बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए, हेजिटेशन को कह देना चाहिए बाय बाय। जिसने की शर्म उसके फूटे गरम सो वो ना हो जाए। मोहम्मद शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद थे ऑफ एयर, अभी उनसे बात हो रही थी, अरब लालक के गाने की फरमाइश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। निशा मलिक हमें सुन रहे हैं जनाब, बागबानपुरा लाहौर से हमारे साथ हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि ये पुरानी बातें हो गई हैं, झिझक वाली और हिचकिचाहट वाली बातें, कि पहले होता था कि बच्चे बड़ों से बात करते हुए भी झिझकते थे, डरते थे, घबराते थे। एक और तरह का कह लें कि एक कॉन्सेप्ट था घरों में जो बॉन्ड थे बच्चों के और पेरेंट्स के, वो और तरह के थे, हेजिटेशन होती थी उनमें। और कई दफ़ा ऐसे होता था कि काम करते करते, सही काम करते करते डर के मारे ख़राब हो जाते थे ये सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, आई एग्री। लेकिन उनके बकौल जो आजकल की जनरेशन है, जितने वो कॉन्फिडेंट हैं, जितने वो एक्टिव हैं, तेज़ हैं, हर काम माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्यूरेटली करते हैं, ना झिझकते हैं, ना घबराते हैं, ना ही आजकल के पेरेंट्स उस तरह के रहे हैं। सो सारी बातें बिल्कुल सही कही है निशा ने, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो मैं कहती हूँ शर्मो शर्मी बहुत सारे काम नहीं करते, मतलब लिहाज कर जाते हैं अक्सर जगहों पे। और दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली फैमिली, दिस इज़ अबाउट आर सोशल सर्कल, कि जहाँ पे हम आउटडोर मूव कर रहे होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं किसी अजनबी से हम मिलते हैं, अचानक बरसरे राह किसी से मुलाकात हो जाए, तो हम वहाँ पर हेजिटेट कर रहे होते हैं। ना कहते हुए, मतलब दिस इज़ अ बिग थिंग आई मस्ट से, कि इनकार करना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है, किसी को ना करना। कुछ लोग इतने अच्छे माशाल्लाह सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, कि वो किसी को भी ना नहीं कर सकते। वो पिस रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, और मतलब घर में भी एक आध बंदा ऐसा होता है ना कि जो सारे काम करी जा रहा होता है, और वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है किसी और ने करने नहीं है। वो बहुत सफ़र कर रहा होता है, बहुत बर्दाश्त भी कर रहा होता है, लेकिन वो कर रहा होता है। तो उस इंसान के अंदर भी एक झिझक होती है कि उसे नो नहीं कहा जाता, उसे इनकार नहीं होता, आप उसे कहते रहें वो कर ही जाएगा। अक्सर ऑफिसेज में काम करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बंदा चुप करके काम कर देता है, जो नहीं आगे से कुछ कहता, उसके ऊपर बर्डन होता है ना। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे मेरी इस बात से। तो मतलब जो कुछ कहता नहीं है, जो डर के मारे कह लें, अदब के मारे खामोश रहता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, उस पर लोग बर्डन डालते हैं और वो उससे इनकार नहीं होता, वो ना नहीं कर सकता। कई दफ़ा होता है मोहब्बत में, प्यार में, एक दूसरे के लिहाज में हमसे इनकार नहीं होता। किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं जी ठीक है, हो जाएगा, नहीं भी होता तो हो जाएगा तो आपके साथ कब कब ऐसा होता है, और आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो करते हुए हमें नहीं शर्माना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, कह देना चाहिए एंजते फिर एंजते से।

ली जनाब, ढेर सारे हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ साथ हैं और फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनके भी थोड़े से कमेंट्स जो हैं शामिल करते चलें। रजा चौधरी हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वेलकम टू द शो कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और रमज़ान गुजर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सैयद कैसर अब्बास हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और यू गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, हैव अ ब्लेस्ड एंड स्पार्कलिंग डे अहेड, थैंक यू सो मच। अकबर खान हमें सुन रहे हैं कराची से, इसके अलावा जनाब कागजी घाट हमें सुन रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने आईडीज़ के नाम इस तरह के रखे होते हैं, लेकिन अपने मैसेज में इसे एटलीस्ट अपना नाम लिखा कीजिए। इब्राहिम कलेरी, अगर मैं सही नाम ले रही हूं तो, डीजी खान से शामिल है हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम साहब। और मनाजर महमूद हमें सुन रहे हैं और वेलकम टू द शो कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुनव्वर अब्बास हमें सुन रहे हैं लाहौर से, नाइस शो कहते हैं। नज़ीर खुसो हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया जनाब। हमदुल्ला हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं मैं हूँ हमदुल्ला मलखेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो कहते हैं, थैंक यू सो मच हमदुल्ला। खजर हुसैन हमें सुन रहे हैं और कहते हैं आप ही क्या हाल है, वेलकम शो, बहुत प्यारा शो, प्यारी आवाज़, बहुत शुक्रिया जनाब। और जनाब इसके अलावा जाहिद खान हमें सुन रहे हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, बहुत शुक्रिया जनाब आप सबका, आप सब लोग हमारे साथ साथ हैं, हमें सुन रहे हैं और न सिर्फ हमें सुन रहे हैं बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहे हैं। इट्स 11:50 ऑन द डायल, सॉरी, और थोड़ी ही देर में हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब भी, और न्यूज़ ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ लाइव कॉल्स का जो सिलसिला है वो भी आगाज़ होगा। सो सुनते रहे एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, लेडीज लाउंज मुझे कहते हैं सातिया रफीक। Keep on dialing 042-111-0101.

ले जनाब, नेक्स्ट सॉन्ग की जानिब मूव कर रहे हैं। दिस टाइम हम प्ले कर रहे हैं अली जफर को, एंड दिस इज सच स्वीट मेलोडियस ट्रैक। आई जस्ट एंजॉयड, आप भी एंजॉय कीजिए।

Keep listening FM 101. आप लोगों को ज्वाइन करते हैं आफ्टर न्यूज ब्रेक. Keep dialing 04211100101. न्यूज ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, आपकी लाइव कॉल शामिल करेंगे शो में. सो कीप डायलिंग, कीप ट्राइंग एंड स्टिक अराउंड. दिस इज FM 101.

All right, listeners, we're back once again. FM 101 Radio Pakistan Lahore ke live on air studio se aap sun rahe Ladies Lounge. Mujhe kehte hain Sathia Rafiq. और जनाब अम का आलमी दिन आज के दिन मनाया जा रहा है पीस डे, जिसकी की बहुत जरूरत है हम लोगों को. अमन करना भी और अमन को कायम रखना भी आसपास के लोगों के लिए, कि लोग हमसे महफूज रहें, बहुत जरूरी है. आई जस्ट केम अक्रॉस अ सीसीटीवी फुटेज ऑफ एन इंसिडेंट. सिर्फ पार्किंग के झगड़े पे, गाड़ी पार्क करने के झगड़े पे एक शख्स ने फायर कर दिए. मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं हम. सुजना पीस बहुत जरूरी है जिंदगी में, हमारी जाती जिंदगी में, ओवरऑल भी मुल्क में भी, तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए. पीसफुल माइंड ही हमेशा आगे बढ़ते हैं. गर्म दिमाग, गुस्से वाले दिमाग कुछ नहीं कर पाते हैं. सो ये एक ऐसी एफर्ट है, ये एक ऐसी कैंपेन है जिसमें हर एक का पार्टिसिपेट करना, हर एक का हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है. सो आई वुड से आज के दिन की मुनासिबत से हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखना चाहिए. अमन को, पीस को प्रमोट करना चाहिए. जहाँ तक हो सके, जितना मुमकिन हो सके, उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि हम खुद एट पीस रहें. जितना हम एट पीस रहेंगे उतना ही हमारे आसपास का माहौल भी एट पीस रहेगा. बहुत सारे लोग होते हैं, अब मुझे पता है सामने भी मौजूद होते हैं जो झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं, क्या कहें. लेकिन अगर आप अपना दिमाग जो है कूल रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, बहुत सारे ऐसे झगड़ों से बच जाएंगे, सीरियसली. सो रोड पे स्पेशली मैं कहती हूँ, जब भी मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए, मसला ये होता है कि कोई एक भी स्टेप बैक नहीं कर रहा होता. कोई एक भी कहे ना कि अच्छा चलो यार मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, लेट्स नॉट डू झगड़ा, तो बात सॉल्व हो जाती है. लेकिन होता क्या है, एक बंदा टोकता है तो दूसरा उससे ज़्यादा गुस्से में आता है और सीन क्रिएट हो जाता है. तो आई मस्ट से कि हम सबको अपना जो एंगर इश्यूज हैं, जो अपनी ज़िंदगी में गुस्सा है, उसको कम करने की ज़रूरत है. दिस इज़ माय मैसेज फॉर टुडे. ऐसा कौन सा काम है हमारी ज़िंदगी में जो हमें करते हुए नहीं झिझकना चाहिए, कह देना चाहिए, कर देना चाहिए. आज का हमारा ये टॉपिक है आप लोगों के लिए. आप हमसे बात करें 04221100101 पर. मनाजर महमूद हमारे साथ हैं और इसके अलावा मतलब ढेर सारे लोग हैं. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि किसी का नाम जो है अंदर से मिस ना हो जाए. खिजर हुसैन, जाहिद ख़ान और रिहाना ख़ान भक्कर से हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया. रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमें सुन रहे हैं. इतने सारे मैसेजेस, ढेर सारे मैसेजेस इकट्ठे. और जनाब अब थोड़ा सा हमारा नेटवर्क जो है उसके साथ कुछ इशू है आज के दिन, तो थोड़ा सा स्लो चीज़ें अपडेट हो रही हैं. एंड आई वुड से कि अगर मैं भूल जाऊँ या मेरे से रह जाए किसी का नाम ऑनर जाना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. और जनाब क्यों खामोश हो गई मैं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि नेक्स्ट हम सॉन्ग प्ले करें और उसके बाद आप लोग की जो लाइव कॉल्स हैं उनको शामिल करें शो में. अन्हा खालिद का स्पेशल सलाम है जनाब. रजा चौधरी साहब कह रहे हैं ऐसा.

0: मोहम्मद हफीजुर रहमान हमें सुन रहे हैं, भक्कर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी, आप भी हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ हैं। राइट नाउ वी हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक एंड दिस टाइम वी गोना प्ले टू राहत फतेह अली खान।
1: मुसव्विर हो गई आंखें।
0: ये ट्रैक सुनते हैं, इसके बाद लौट कर आते हैं, आप लोगों से लाइव चिट चैट करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। सो बी प्रिपेयर्ड एवरीवन ऑफ यू, कीप डायलिंग 0422111001।

0: जी तो जनाब, वी बैक लॉर्ड क्रैच के आपके साथ एक बार फिर 7.101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन स्टूडियोज में लेज लाउंज के साथ, मुझे कहते हैं सातिया रफीक। और जनाब फर्स्ट कॉलर ऑफ द डे, लाइव कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम बानो बान, जैसा भी सुनने वालों को मेरी तरफ से मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। कैसी सादिया रफीक आप?
0: मैं खैरियत से। और ये फार्मूला क्या है, पहली कॉल ये आपके मिल जाती है, ये फार्मूला क्या है?
1: बस ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला और मुझे भी नहीं पता, ये आप मेरी बस मुझे लकी समझ लें आप।
0: माशाल्लाह,
1: कई लोगों को जो है ना गिला शिकवा है, लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना आपका कमाल है ना मेरा कमाल है, ये अल्लाह की तरफ से ना अक्सर ही मेरी पहली कॉल मिल जाती है और मैं खुश नसीब हूँ।
0: क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से, क्या कहेंगी?
1: क्या आपने बताया भी, मैं भूल चुकी हूँ कि जो लोग
0: हमें मतलब अक्सर हम कुछ काम होते हैं ना जो करते हुए हम हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, वो ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए?
1: काम तो कोई भी नहीं शर्माना चाहिए, मतलब इसमें वो अलकस करनी चाहिए कि मैंने नहीं करना, मेरे से नहीं होगा काम, हर काम हो जाता है अगर करना इंसान की सच्ची नीयत हो ना, तो हौसला बुलंद हो तो काम, हर काम ही हो जाएगा, बुरे से बुरे वक्त में काम जो है ना काम हो ही जाता अगर इंसान ने करना हो तो काम जो है ना हर काम करना चाहिए, शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
0: जी ठीक है,
1: क्योंकि हमारे कायद ने भी कहा है काम काम और बस काम।
0: जी ठीक हो गया। जी बिल्कुल ठीक है।
1: तो उसका गाना क्या नाम है, हदीका ज्ञानी का गाना है एक बूहे बारियां, ये अगर प्ले कर दें तो आपके प्रोग्राम 4 या 16 चांद लग जाएंगे।
0: जी जी जरूर। हाँ, बहुत
1: शुक्रिया। तो कुछ सलाम खलूस आप ले लें, रुबीना जैसी है, अनीला है, रुजुआ और फरी है, फरी भी कोशिश कर रही होंगी, और मेरे भाई तारक भाई हैं कोयट में रहते हैं, उनको बहुत बहुत आसाम, हनीफ भाई को, सब सुनने वालों को मेरी से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और अब यकीन करो कि जब मेरी कॉल मिल जाए तो मुझे पता था, चल ऐसे लगता है कि मैंने पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: और जब नहीं मिलती तो लगी रहती। ठीक
0: है, सुनने वालों को मैं लें जनाब, हमारा टॉपिक ये है कि हम कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करते हुए लोगों की वजह से, कह लें अपने आसपास के लोगों की वजह से, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम किसी की मदद मांगते हुए हिचकिचा रहे होते हैं, किसी से कहते हुए कि ये काम करते हैं, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी इन दिस, प्लीज़। हम फंसे हुए होते हैं, हम मुश्किल में होते हैं, हम बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि हमें एक हेजिटेशन सी फील होती है। है ना, आप अकेले काम कर करके एग्जॉस्ट हो रहे हैं लेकिन आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अगेन ज़हीर अब्बास।
0: जी ज़हीर अब्बास साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: मैं सोच रहा था कि सीएम हाउस में कॉल करना या उनसे मिलना इतना मुश्किल नहीं जितना अपनी बहन से बात करना मुश्किल।
0: ओए होए होए होए। बस ये ना ऐसे ही आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का खुलूस है, आप ही लोग साथ कोशिश कर रहे होते हैं, बार बार डायल कर रहे होते हैं, तो उसी चक्कर में बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो पाती।
2: मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं तो मेरी बहन के प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं और मेरी बहन के प्रोग्राम को पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से ज़हीर भाई?
2: बन्ना जी, बात ये कि आपने पूछा है कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बहुत ज्यादा काम है, कोई एक चीज किसी को माफ करने में।
0: बिल्कुल सही,
2: जिसको आप माफ ना करना चाहें या फर्ज करें कि वो ही गलती पर है, आप ठीक हैं, वो भी गलती पर है, लेकिन उसका पारा इस टाइम, उसका सूरज इस टाइम सवे नज़े पे, आप खामोश हो जाए उसको माफ कर दें, बाद में उसको प्यार से समझा दें, प्यारी बहन कह रही भाई मसला ये है, मेरा ये मुद्दा था, ये मेरा मसला था, मैं समझाने में नाकाम रहा। वो शायद ने कहा था ना कि मेरी दास्तान हसरत वो न सुन सके अभी तक, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है।
0: बिल्कुल सही,
2: मैं समझाने में थोड़ा सा नाकाम रहा हूँ या नाकाम रही हूँ, तो असल बात ये जो आपको समझ नहीं आई, वो भी जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तन्हाई में जाके समझाए, तो जब तक हमारे अंदर कुवत बर्दाश्त नहीं होगी, किसी को माफ करना नहीं सीखेंगे, या किसी से माफी मांग लेना ये भी बहुत बड़ी बहादुरी होती है, माफी मांग लेना ये बहुत बड़ी चीजें होती है। अगर इसमें इंसान कामयाब हो जाए तो इसी में जो आज का वो दिन मनाया जा रहा है अमन, इसी में ही आ जाता है।
0: बिल्कुल सही। अपनी गलती का इतराफ कर लेना भी बड़ी बात होती है, हम हेजिटेट करते हैं, गलती कर लेते हैं लेकिन मानते हुए हमें मसला होता है।
2: असल में अब हमें अंदर से पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन हमारा नफ्स हमें जो उकसाता है नहीं, सिर्फ मैं हूँ, वो बंदा अगला गलत है, चाहे उसके जितना मर्जी वो एक मतलब इज्जत वाला हो या सीनियर हो, तो उसके सामने हम ऐसे अकड़ जाते हैं कि जैसे हम ही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम नहीं, हम कुछ भी नहीं है।
0: बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जहीद भाई, आप शामिल हुए शो में।
2: ठीक है, बहुत शुक्रिया।
0: टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट जनाब, हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है हमारी ज़िंदगी में जो हमें करते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। डर के आगे जीत होती है ना, तो हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अभी बहुत ही प्यारी बात है जहीर भाई ने की कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, दिल बड़ा कर लेना चाहिए, फौरन कर लेना चाहिए। इसका अपना ही एक अलग मकाम है, और इस अजर व सवाब के अलावा आपकी ज़ात में निखार के लिए, आपकी पर्सनालिटी में बेहतरी लाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप बड़े बन जाते हैं, आप ना चाहते हुए भी कुछ ना करके भी बड़े बन जाते हैं, बस थोड़ा सा दिल बड़ा करना सीख लें तो। सो अपनी गलती का इतराफ भी कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, कुछ नहीं हो जाता, कसम से कुछ नहीं हो जाएगा। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन?
3: कैसर बास बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं कैसर, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको एक वार्म वेलकम, इतने अरसे के बाद आपने दोबारा से ज्वाइन किया,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
3: जी। अच्छा, टॉपिक के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैं वो बंदा हूँ जिससे कोई भी आगे ना काम कह देता कि यार ये काम कर देना,
0: हाँ, और आप करते जाते हैं
3: और इस चक्कर में मैंने 14 साल गुजार दिए, जो भी आता है मुझे कहता है यार ये काम कर दो, क्योंकि उसे पता है मैंने कर देना।
0: आपने
3: ना नहीं करनी क्योंकि मैंने इधर एक अच्छा गुजारा, अभी 14 साल हो गए मुझे इधर, हर कोई मुझे जानता है।
0: तो कैसे आपने अभी तक नहीं सीखा कि ना करना सीख लेना चाहिए?
3: नहीं, वो दरअसल वो ना वाली बात नहीं है ना मुझ में, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ बनाया ही ऐसे कि मेरे अंदर आदमी सी है, मैं थोड़ा सा वो क्या कहता हूँ डाउन टू अर्थ पे रहने वाला लड़का हूँ, सिंपैथेटिक, मॉडस्ट, हंबल, ये सारी चीजें मुझ में शामिल है।
0: बिल्कुल सही।
3: अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज ना मेरी भांजी का ना यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, ठीक है, उसको बेस्ट विशेस बोल दें, और उसके लिए ना कोई सुखियाना कलाम लिखा था, डेडिकेट कर दें।
0: जी ठीक है, नाम बताइएगा।
3: उसका नाम है सैयदा फरवा जहरा।
0: सैयदा फरवा जहरा, जी ठीक है, कैसर इंशाल्लाह जरूर करते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे ऑफिस में जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, खाली ऑफिस की बात नहीं है, अक्सर जगहों पे, ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे आपके सबॉर्डिनेट्स आपको ऐसे मिल जाएं कि जो आपको ना नहीं करते, जो नहीं इनकार करते, आप जो कुछ देते जाएंगे वो करते जाएंगे, और वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनमें वो एक अजीब सी हेजिटेशन होती है, कह लें हिचकिचाहट होती है, वो अदब में लिहाज में चुप रहते हैं और काम करते जाते। आई मस्ट से कि अगर वो ना नहीं कर रहा, वो नहीं आपको इनकार कर रहा, थोड़ा सा लिहाज आप भी कर लें। टू ऑल द सीनियर्स आई वुड से प्लीज़ थोड़ा सा लिहाज कर लें, इंसान है वो भी। होता है ना, घरों में होता है ये कि हमारे घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टबर्न होते हैं, जो थोड़े से रिजिड होते हैं, वो लोग नहीं काम करते। एक मासूम बच्चा होता है जिसको आप बहला फुसला के प्यार से कहते हैं कि यार ये काम कर दो, और वो कर देता है फौरन। तो वही एक बच्चा जो होता है ना, वही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, वही सबसे ज़्यादा एफर्ट्स भी करता है, सबसे ज़्यादा फिर वो डांट भी खाता है, बिकॉज जो ज़्यादा काम करता है वो ज़्यादा डांट खाता है। इट हैपन्स। सो जनाब, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहिए, हमें फ़ौरन कर लेना चाहिए, नहीं शर्माना चाहिए, नहीं हिचकिचाना चाहिए? राइट नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द शो, 1223 ऑन द डायल राइट नाउ। आप लोगों के साथ बातचीत चल रही है लाइव हमारी 04221000101 पर। कीप डायलिंग एंड स्टिक अराउंड, दिस इज़ FM 101।

0: वेलकम बैक लॉट कर चुके आपके साथ एक बार फिर से FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लाइव ऑन एयर स्टूडियोज में लाइव कॉलर हमारे साथ कॉल ड्रॉप हो गई. ओह माय गॉड, व्हाट अ लॉस, व्हाट अ लॉस. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं तारिक भाई, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सबके लिए और करम है ज़ात पाक का. आप सुनाएं सब खैर वाफियत.
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से?
1: टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहूँगा सादी आप भी कि अपनी जिंदगी में ना ऐसा दाल रखें, इनकार आसानी से कर पाएंगे अगर आप अपनी जिंदगी में एतदाल रखेंगे ना तो इनकार कर पाएंगे. क्योंकि झिझकते हुए तो दूसरा बंदा तो अपना पाबंद और अपना नौकर समझ लेता है हर बंदा. किसी की चार दिन रेगुलर आप हेल्प करते हैं ना तो वो आपको अपना मतहत ही समझ लेता है, अपना पाबंद समझ लेता है.
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो जिंदगी में एतदाल रखना चाहिए ताकि आप इनकार कर सके आसानी से.
0: बहुत बहुत सही बात की आपने. कुछ और कहना चाहेंगे तारिक भाई?
1: और ये कहना चाहूंगा आप जो दूसरी बात कर रहे थे ना, जिंदगी में ये पीर वाली संडे और मंडे वाली बात.
0: जी मंडे पैनिक की. हाँ जी
1: हाँ, ये हम लोग अपना तसव्वुर गलत कर लेते हैं. असल में कुछ भी ऐसा नहीं होता. सब दिन एक जैसे होते हैं और जितना रेगुलर आप मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, खुद को रेगुलर रवा दवा रखेंगे ना, फिटनेस बरकरार रहेगी आपकी.
0: बिल्कुल सही.
1: हाँ, अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए मसरूफियत रखें, हेल्प करें, अपनी आप नबेड़ो ते जे हो सके ते दूसरियां दी भी नबेड़ो.
0: लेकिन अगर हो सके
1: वही ना, अपनी आप नबेड़न दी सलाहियत रखो, अपने अंदर सलाहियत पैदा करो और हो सके ते दूसरियां दी भी हेल्प करो, दूसरियां दी नबेड़ो, लेकिन बिला वजह नहीं किसे च टांगड़ो.
0: बिल्कुल सही.
1: जेड़ा जिस काबिल है ना, हुण मिसाल मैनू पता, मैं सादी आप ही नाल मुखातब हूँ, मेरे सामने सादी आप ही है. और सादी आप ही पता है, सामने जेड़ा बंदा है और उन्हें पता होगा कि मेरे नाल कौन मुखातब है, मैं किधर नाल मुखातब.
0: ठीक हो गया.
1: अपने जेनी काबिलियत होनी चाहिए थी.
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही.
1: अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, बहुत सारिया दुआवां अल्लाह आपको महफूज रखे बुरे वक्त से बुरी नजर से.
0: आमीन.
1: आपके पूरे मैनेजमेंट को सल्यूट और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम. अल्लाह निगेबान से सदा जीवे सोना पाकिस्तान.
0: जनाब चेंज योर माइंड की बात करते हैं अब हम थोड़ा सा. कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ प्लान्स बनाए होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमने ये ये ये ये ऐसे करना है, लेकिन किसी वजह से किसी भी तरह के हालात की वजह से, किसी भी फ्यूचर आउटकम की वजह से हम अपने प्लान को उस तरह से नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, हम वो काम उस तरह नहीं कर सकते जैसे हमने सोचा था. तो अनाउंस करते हुए बताते हुए कई बार हम हेजिटेट करते हैं कि यार नहीं, ये मैंने ऐसे सोचा था लेकिन अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ. हमें बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है लोगों की कि लोग क्या कहेंगे. ये बहुत बड़ी बात है. और मैं ये कहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे अगर ये भी हम नहीं सोचना है तो फिर लोग क्या सोचेंगे. लेट देम थिंक, लेट देम से वट एवर दे वॉन्ट टू. आप इजी रहें अपनी ज़िंदगी में. कई बार ऐसे होता है हमें चेंज ऑफ प्लान करना पड़ता है, कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई प्लान मिलके किया होता है और फिर हमें वहाँ से निकलना पड़ता है उस प्लान से, तो हम हेजिटेट कर रहे होते हैं कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने ये कहा हुआ था कि मैंने इसको ऐसे करना है तो अब मुझे ये करना पड़ेगा. आप नहीं कर सकते. जब आपने वादा किया था तब मारूजी हालात और थे, हकायक और थे, अब वो बदल चुके हैं. सो फील ईजी अपनी ज़ात पे, अपनी ज़ात को आसानियाँ दें, जैसे हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, ऐसे अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। तो स्पेशली मैं ये कहूँगी बहुत ज़रूरी है, जब ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, आपके पास अपने करने के बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये नहीं कह रही सेल्फिश हो जाएं, किसी की बात ना सुने, किसी का काम ना करें, लेकिन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को, अपने कामों को सबसे पहले रखें, और उसके बाद सोचें कि अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, फलां क्या सोचेगा क्या कहेगा, हम खुद को बर्डनाइज नहीं कर सकते, हम खुद पे बोझ नहीं डाल सकते। खुद को ईजी रखने की कोशिश क्या करें और इनकार करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। जिस जिसको नहीं आता, आई वुड से कि सीखें। आजिज़ी अपनी जगह है, नर्म दिल होना अपनी जगह है, एहसास करना लोगों का, किसी के काम आ जाना, ये सारी जज्बे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग, अभी जैसे तारिक भाई कह रहे थे कि लोग आपका फिर आप कह लें कि नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें आदत हो जाती है कि यार इसने कुछ नहीं कहना, इस पे डाल देते हैं। तो ऐसा मत बने, ठीक है आप करें काम, लोगों के काम आए, लेकिन एक हद होनी चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट जो है वो ज़रूरी है, और उसके बगैर अगर हम चलेंगे अपनी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। सो आई वुड से कि अपने लिए भी आसानियाँ ढूंढें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें एक्टिव रखने के लिए, हमें एनर्जाइज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी तवानाइयां खर्च करें लेकिन पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव लोगों के लिए। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल के बच्चों की बात करें तो नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों से दूर रहें। ये जो वाइब्स है ना, जैसे अभी इस सॉन्ग की भी एक गायब वाइब है, गायब नहीं है, वाइब है।
2: बीमारा नु शफा मिल जाती है, प्यार नाल ना।
0: सो एक नजर जो है, एक लुक जो है, उसकी भी एक वाइब होती है।

0: दूसरों के भी काम आए, वो भी तो लोग है ना, जो एक इंसान होता है और इतनी ज्यादा लोगों को वो खाना भी खिला रहा है फ्री, लोगों के मतलब काम आ रहे हैं, लोगों की बच्चियों की शादियां भी कर रहे हैं, एक ही बंदा होता है ना पीछे, तो ऐसे ऐसे भी तो इंसान बंदे आदमी लोग हैं ना मर्द दुनिया में, तो आप इस तरह के बनो, ऐसे लोगों को देखो, उनकी तरफ देख के सीखो, तो ये चीज है, ऐसे काम में मेहनत है ना, शर्माना नहीं चाहिए और सच बोलने में भी शर्म ही आनी चाहिए आपको।
1: बिल्कुल सही, बिस्मा का आज का मैसेज हम तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया बिस्मा।
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज। ली जनाब, मैं इनको कहती हूँ ये पावर बैंक कॉलर्स होते हैं हमारे, कि इन एक दफा जो है ना एनर्जी मिल जाती है। बड़ी मजे की बात की बिस्मा ने, कि वो पहले हेजिटेट करती थी लेकिन अब उन्होंने सीखा है। ये चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में सीखना, मैच्योर होना, ये मैच्योर होने की अलामत होती है जब हम सीख लेते हैं किसी को इनकार करना। और यकीन करें, इनकार करना इज अ बिग थिंग, ये कोई आम मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ इशू होता है कि हम हेजिटेट करते हैं, हम नहीं कह पाते कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, और हम अपने सर पे लेते जाते हैं इस तरह के मामलात। और इन द एंड क्या होता है कि हम लोग सफ़र करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, हम फिज़िकली थक जाते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी वो एनर्जी जो हमने अपनी ज़ात के लिए या अपने घर वालों के लिए बचा के रखनी थी वो हम कहीं और सर्व कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट से नो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। हेलो
1: जी, जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिएगा।
2: हाँ, खान बाबा बोल रहा हूँ कोहाट से।
1: जी जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
2: अल्लाह का फजल करम है।
1: शो सुन रहे हैं आप? शो नहीं सुन रहे होंगे वहाँ।
2: बात यह है आपकी ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। लाहौर में होता था तो आती थी ना।
1: जी जी, लेकिन आप फोन पे सुन सकते हैं ना।
2: आप क्या नाम है, टॉपिक क्या है?
1: हमने ये पूछा है कि हमें कौन से ऐसे काम है अपनी जिंदगी में जो करते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी बात की कि हमें अपनी गलती का इतराफ कर लेना चाहिए, हमें लोगों को इनकार करना आना चाहिए।
2: बिल्कुल, ये जो गलती है ना, ये एक इंसान को तबाही के किनारे पे खड़ा कर देती है। अगर इस गलती से आप पहले अपोलोजाइज कर लें, इट इज टू गुड। बस मेरा ये इनसे वो है, आप इसको लोग सुन रहे हैं तो अगर सॉरी कर दे, अपोलोजाइज कर दे, रिक्वेस्ट कर दे, तो ये बड़ी तबाही से बच जाता है। अब देखे ना, मामूली से गलती से क्वार्ट तबाह बर्बाद हो गया। ये जो दहशतगर्दों ने अटैक किया, ये मामूली सी गलती से बड़े मतलब लोग शहीद हो गए। ओके ओके बेटा, जैना बरसे बोल रही है ना?
1: जी जी।
2: हाँ जैना बेटा, अल्लाह हाफिज।
1: ऑलराइट।
3: सुबह की ये हवा कुछ कह ना चाहे, ये राज बुझे बिन।
1: 12:43 on the dial right now.
3: पूछे बे ख्याली क्यों हम सजाए, है राज खुफिया तू सो।
1: 17 more minutes to go.

0: Alright, this is a bag. Lark aaj ke aapke saath ek baar phir se aur hamari phone line blink kar rahi hai baar baar kar rahi hai. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam. Kya haal aap ke? Theek hain?
0: Main theek hoon khairiyat se.
1: Hamara baat kar rahi hoon Shahdara Lahore se.
0: Kaisi hain hamara khairiyat se hain?
1: Alhamdulillah. Aap sunaye aap kaisi hain?
0: Main bilkul theek thaak. Kya kehna chahenge aaj ke topic ke wale se?
1: टॉपिक के वाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दिल में होना कह देना चाहिए और झिझकना नहीं चाहिए. और दूसरी बात ये है कि फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ट्रू.
1: इसी तरह ना मैंने कुछ बात करनी थी अपनी खाला से ना, तो मैं मौका तलाश कर रही थी कि कोई मौका मिले तो मैं उनसे बात करूँ. तो अल्लाह ताला ने मौका ही नहीं दिया. पिछले मंडे उनकी डेथ हो गई, अचानक से उन्हें अटैक हुआ तो उनकी डेथ हो गई.
0: इन्नालिल्लाह.
1: तो अब पछता रही हूँ कि शायद काश मैंने वो जो दिल में बात थी मैं उनसे कर देती, मैं उनसे शेयर कर देती तो उन तक पहुँच जाती वो बात जो मेरे दिल में थी.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
1: तो लेकिन नहीं कर पाई, लेकिन अल्लाह पाक उनकी मफरत करे.
0: आमीन.
1: और जो लोग आपको कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें चाहिए कि वो भी काम करके दिखाए लोगों को कि भी हम कर सकते हैं. और काम इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी चीख चीख के बताए कि भाई हमने ये काम किया, हमारी ये कामयाबी है.
0: और लोग कुछ भी नहीं कहते फिर आपके पीछे पीछे होते
1: हैं. जी बिल्कुल. और देखें बिस्मा कह रही थी ना सच बोलते हैं, मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसे सब कहते हैं कि ऐसे नहीं कहना था, ऐसे नहीं कहना था. मेरे एक टीचर हैं तो वो कहते होते हैं जेड़ा सच बोले ओदे नाल कोई ना बोले. तो
0: बच के रहो से.
1: हाँ, वो जो सच बोलता है ना उसके साथ कोई नहीं होता. उसके साथ कोई बोलना पसंद नहीं करता. लेकिन जो हकीकत है वो तो सबको भी पता ही होती है, लेकिन वो उस चीज को छुपा रहे होते हैं कि भाई ये बात ऐसे नहीं, इसको ये क्या फायदा. अभी हम लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते ना.
0: हमने अपनी अपनी जिंदगी में ना सहूलतें ढूंढ ली हैं असल में.
1: जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन करें और ये सोचें कि किसी का दिल ना दुखे हमारे से, और हम जो करें अच्छा करें और हमारे बाद भी वो याद रखा जाए.
0: बिल्कुल सही हो गया. बहुत शुक्रिया हमारा आप शामिल हुए शो में.
1: सब सुनने वालों को सलाम. ओके, अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़. सो जनाब, नहीं हेजिटेट करना चाहिए. बहुत ही ट्रू पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत बात हमारा ने की आज के शो में. कि फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते रह जाते हैं, हमारी हिचकिचाहट, हमारा शर्माना हमें रोक लेता है और लेटर ऑन हमारे पास पछतावा रह जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि यार काश मैंने उस वक्त ये कर लिया होता, काश उस वक्त मैंने ये कह दिया होता, मैंने एक्सप्रेस कर दिया होता. कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे जज्बात होते हैं, हम लोगों को एहसास नहीं दिलाते, रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को कह नहीं पाते उस तरह से. लेकिन फिर कभी ऐसा वक्त भी आता है कि फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहती कहने की, तो फिर हम फील करते हैं चीज़ों को अपने दिल में बहुत ज़्यादा और वो और भी ज़्यादा हर्ट करती हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक. कौन हमारे साथ?
2: हम्दुल्ला मलाखेल बात कर रहा हूँ लाहौर से.
0: कैसे हम्दुल्ला, क्या कहना चाहेंगे?
2: आपकी शो सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा थी. बस या फिर तरह जब हम लोग कोई काम वगैरह करते हैं और ये किसी को नहीं बोलता कि ये बंदा मेरा हेल्प आउट करेगा. आजकल का दौर इस तरह है, हम लोग किसी की उम्मीद का वास्ता खत्म हो चुके हैं. हम लोगों का क्यों पता होता है भाई ये काम करता भी नहीं, हम क्यों अपना अपने अचल पर हम बेफजूल पे इस्तेमाल करेगा. उससे बेहतर कि हम वो खामोशी से करेगा.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
2: आजकल वही दौर नहीं है पहले जब हम फिक्र की मेरे ये काम करे वो करो, बस जो है अपना कहीं टेंशन में हो या मुसीबत में हो या जो भी परेशानी व काम आ वो खुद जाके कर लेते हैं. दूसरे से हम लोगों को उम्मीदें खत्म हो गई.
0: उम्मीदें खत्म हो गई हम. बिल्कुल ठीक हम्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए शो में.
2: और बहुत ज्यादा प्यार अपने आप का.
0: ऑलराइट, उम्मीदें खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह की। और ये सही बात है, मतलब बहुत सारी चीजें इस तरह से मटेरियलाइज हो गई हमारी जिंदगियों में कि हमें खुद एहसास नहीं हुआ। और अभी मैं हेल्प की बात कर रहे थे, मैं लोगों की हेल्प मांग लेनी चाहिए जहाँ हमें लोगों की हेल्प की ज़रूरत हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रोकती हैं ना, हमारी बेसिक आपके लिए एजुकेशन इस तरह की होती है। लाइक आई वॉज़ ऑलवेज टोल्ड बाई माई मदर कि अगर कोई एहसास करके आपका काम करे तो आपको उसका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए और आपको उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उस बंदे को वैल्यू करना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो एहसास करके आपके लिए कोई काम करते हैं, लेकिन जब आपको खुद किसी को कहना पड़े कि ये काम कर दो, वो कर दे तो ये उसकी बड़ाई है, वो ना करे तो इट हिट्स यू बैक, इट हिट्स यू सीरियसली वेरी मच, तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि वो इनकार कर दिया। हर तरफ मसले हैं, क्या करें। लेकिन मैं कह ये रही थी कि मेरी अम्मा के बकौल, अगर कोई आपको एहसास करके आपको सपोर्ट करता है दैट्स ग्रेट, लेकिन खुद आप कोशिश करें कि आपको किसी की मदद ना मांगनी पड़े, क्योंकि उनके बकौल रिश्ते एहसास के होते हैं, ख़ास तौर पे ताल्लुकात जो होते हैं वो एहसास के बेस पे होते हैं। और अगर किसी में एहसास अज खुद नहीं है तो कह के करवाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके बकौल कह के तो बंदा फिर किसी गैर से भी करा लेता है, कह के तो बंदा किसी राह चलते बंदे को भी कहता है ना यार ये मेरा काम कर देना ज़रा, तो वो करता जाता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह का ये कहना है कि नहीं करते लोग, और उम्मीद का दौर नहीं है, उम्मीदें वाकई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इट हर्ट्स, इट्स सीरियसली हर्ट्स। तो उम्मीदें उस तरह से ना वाबस्ता करें, लेकिन एक जो रिश्ता है इंसानियत का, आपस में एहसास का एक ताल्लुक जो है इंसानों के अंदर, अल्लाह ताला ने रखा है, ये हमने नहीं रखा, इंसानियत टोटल इस पे बेस करती है, हमारे आमाल टोटल इस पे बेस करते हैं कि हम एक दूसरे का एहसास करें, और वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और मैं ये कहना चाहूँगी आज के प्रोग्राम का मेरा मैसेज यही है कि इनकार करना सीखें, नहीं कहना सीखें, सच्ची बात को कहना सीखें, मत हिचकिचाएं। जब आप काम सही कर रहे हैं, जब आप काम वो कर रहे हैं जिसका आपको हुक्म है, तो आपने क्यों घबराना, आपने क्यों डरना, और हमेशा ये यकीन रखें कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होते हैं, कभी कुछ गलत नहीं होता। आपकी जात, आपका इनर जो है मुतमईन है तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं है। और एक और चीज़, आई डोंट नो कहना सीखें। कई बार ऐसे होता है ना कि हमें कोई पूछता है कि यार ये बताना, ये तुम्हें पता है, और हमें नहीं पता होता लेकिन फिर भी बताते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें ये कहना पसंद नहीं कि हम उनसे कहेंगे कि हमें नहीं आता या हमें नहीं पता, तो ये क्या सोचेगा हमारे बारे में। मतलब ये अजीब सा कॉम्प्लेक्स हमें नॉलेज का भी है एक, तो अगर आपको नहीं पता जस्ट से इट, आपको नहीं पता, इट्स वेरी सिंपल, इट्स दैट सिंपल। जो हमें नहीं पता वो हमें

0: दो कदमा दी दूरी सारी अपने आप तो अपने तक
1: आतिश पानी तेरे अंदर।
0: सनी हमें सुन रहे हैं, रस्ते में हैं और हमें सुन रहे हैं, आपसे कहेंगे थैंक यू सो मच। मुनव्वर अब्बास हमें सुन रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तारिक भाई ने मैसेज किया और इसके अलावा खजर हुसैन और जाहिद खान और रियाज भट्टी और ढेर सारे हमारे लिसनर्स, हमारे प्यारे स्वीट लिसनर्स जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने मैसेजेस हमें भेजे, आप सबसे कहेंगे थैंक यू सो मच। सैयदा फरवा जहरा, यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन है उनका, कैसर अब्बास ने कहा था कि उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस बोल दीजिए, आपको वेरी वेरी वेरी बेस्ट विशेस, ये नया सफ़र आपका कामयाबियों से भरपूर रहे और आप कंप्लीट करें अपनी इस डिग्री को कामयाबी से। दुआएं हमारी आपके साथ और मेरी सभी लिसनर्स के साथ भी। जाते जाते ये ट्रैक प्ले कर रही हूं आप सब लोगों के लिए, इस उम्मीद इस ख्वाहिश पे आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे होगी फिर मुलाकात नेक्स्ट मंडे इन द सेम शो, टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर अरसलान मसूद, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर। जुमेरात 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।

0: भूल गई, मैं भूल गई हो, भूल गई, मैं भूल गई हो, जाने आखिरी
1: जाने आखिरी कॉलर।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो बंद करो।
2: आसिफ अलीम बोल रहे हैं।
0: हाँ जी
2: सलीम।
0: हाँ जी सलीम।
2: आसिफ अलीम।
0: हाँ तुसे अपने रेडियो बंद करोगे कि नहीं? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। फिर दसो हाजी अमीन क्या दस तुसी ना?
2: हाजी नहीं, आसिफ अलीम।
0: हाफिज अमीन। हाफिज अमीन साहब तुहानू असीं वेलकम करने आ, की कहोगे?
2: हाफिज, हाफिज नहीं, आसिफ, ए एस आई एफ।
0: आसिफ, आसिफ, ओके ओके ओके।
2: जी जी
0: जी आसिफ साहब बोलो, कुछ दसोगे, कुछ कहोगे?
2: बदनाम होने की गई, वक्त दा लंघ रिया घोड़ा, टाइम बड़ा रह गया थोड़ा, ते हुण मैं की अर्ज करा? बस यही कह सकना कि जनाब अज बड़े दिन बाद कॉल मिली है
0: जी,
2: ते जनाब पता नहीं तुसी कित्थे गायब हुंदे हो।
0: नहीं नहीं, मेरा हर हफ्ते मैं इत्थे ही हुंदा तुहाडे कोल ही।
2: अच्छा
0: हाँ जी,
2: सही है।
0: ते केड़ी केड़ी थां तों बोल रहे जे?
2: लॉरेंस रोड लाहौर तों।
0: हां बड़े दिन बाद तुहाडी कॉल आई है, बड़ा मजा आ रिहा तुहाडे नाल गल करके।
2: हां जी जी,
0: बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
2: वेलकम वेलकम,
0: ओके ओके, अल्लाह हाफिज।

0: कि मैं भूल गई हूँ।
1: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आखिरी कॉल जल्दी बोलो।
2: मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहे हैं, सुन्नाबाद लाहौर तो।
1: मोहम्मद सलमान भट्ट, मेरा भरा शहजादा 78 दे आरपीएम दी स्पीड ते बोल रहा है मेरा भरा।
2: माही मेरे रोंद ना मारी ना दाल आया जिंद जान दा।
1: हां लाया
2: दे दिया की रब जान दा।
1: हां लाया सी उरे थोड़ी देर पहले मैं गा रहा है। मारे झूठ ना बोले है ना।
2: नहीं ओनू भी पैंतरे आने चाहिए ने ना सारे।
1: अच्छा
2: भलवान पैंतरे नहीं सीखते, पैंतरे सीखने चाहिए ना।
1: दाल आने जेड़े ने बड़ा पैंतरा बदलदा, तू बड़ा पैंतरा बदलदा ठीक है ना।
2: ਅਖਾੜੇ ਚ ਜਦੋਂ ਘੁੜੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਾਲ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਲ ਆਣਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਸੀਨ ਤਾਂ ਪੁੱਜੇ ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ।
2: ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ।
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜੀਦੇ ਰਹੋ।
2: ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਓਕੇ ਜੀ।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर अरसलान मसूद, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर। जुमेरात 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: गेट रेडी फॉर नॉन स्टॉप हिट्स इट्स बैक टू बैक इंग्लिश बैंगर्स एवरी डे फ्रॉम 3 PM टू 4 PM ओनली ऑन FM 101। फ्रॉम द लेटेस्ट चार्ट टॉपर्स टू द क्लासिक्स यू लव, वी हैव गॉट योर प्लेलिस्ट कवर्ड। Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.

For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सेहत की बात साई लाइफ के साथ वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का मौजू होगा कोलेस्ट्रॉल और उसके बढ़ने की वजूहात। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर अरसलान मसूद, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर। जुमेरात 22 सितंबर 2026 शाम 5 बजे सिर्फ FM 101 लाहौर पर। यह प्रोग्राम आपके लिए साई लाइफ फार्मा के तआवुन से पेश किया जाएगा।

0: अच्छा सर, एक सवाल था खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का गिला है कि दो पार्टियों की जो आपस में रसाकशी है उसकी वजह से आवाम रुल रही है और खासकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इसमें बड़ी ज़्यादा इस वक्त तकलीफ में है, तो इस हवाले से क्या आप लोग आपस में बैठ कर कोई रायमल नहीं
1: था? देखिए, मैं तो कितनी बातचीत की कोशिश की गई असेंबली के अंदर, वज़ीर आज़म साहब ने 6 दफ़ा कहा कि हम बातचीत करते हैं। ये गैर सियासी लोग हैं, इनमें चंद लोग हैं जो समझदार हैं, मगर हमेशा जब बात की है ये गैर सियासी बात करेंगे, गालम गलोच करेंगे, इल्ज़ाम तराशी करेंगे। तो हमने तो पहले दिन कहा था कि आओ बैठो बात कर लो, मगर अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी, हम मुतद्दद बार कोशिश कर चुके। अब ये जो चढ़ाई जत्थाबाजी और ये जो एक पुरतशद्दत एहतजाज की तैयारी हो रही है, इससे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी को एक दिन में 120 अरब रुपए का टीका लगता है। सड़कें बंद होती हैं, ट्रांसपोर्ट बंद होती है, तजारत तबाह होकर रह जाती है, तो ये 120 अरब रुपए अपनी जेब से देंगे सोहेल खान अफरीदी साहब और उनकी टीम? तो ये जो ताजिर का क्या कसूर है, दुकानदार का क्या कसूर है, मेहनत कश का क्या कसूर है, किसान का क्या कसूर है, मजदूर का क्या कसूर है कि आप पूरी सड़कें बंद कर दें, कारोबार ठप होकर रह जाए, आप तरक्की नहीं दे सकते, कम से कम तरक्की के अंदर खलल तो ना डालें? तो ये इनसे बातचीत की बहुत बार कोशिश की गई और संजीदा कोशिश की गई, ये बातचीत वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये शोभदाबाजी में सोशल मीडिया पोस्ट में, ये एक फिल्म चल रही है, आप देखेंगे कि फिल्म में जिस तरह बंदा आता है एक छलांग मार देता है, कोई वहां हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आता है। उस दिन आपने देखा शफी जान साहब गवर्नर हाउस में उनकी जो अदाएं थी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, मैं तो मुझे तो पुरानी फिल्में याद आ गई कि एक हीरो की तरह भागते हुए हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। अवाम का दर्द करो, खुदा का खौफ करो कि ये तुम हेलीकॉप्टर की, और ये देखें ये वीडियो किसने बनाई, एक बंदा खड़ा किया हुआ था पीछे, वो यूं कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहा था कभी शफी जान साहब उतरेंगे हेलीकॉप्टर से। तो जितना खर्चा आया उस विजिट पे, उसके पैसे भी सरकारी खजाने में जमा करा दें, अब ये रिवायत डल गई इस मुल्क के अंदर, तो आप भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर के पैसे जमा करा दें। ये बातचीत वाले लोग नहीं, अगर बातचीत करनी होती बहुत पहले कर चुके होते।
0: जब से गोल्ड माइनिंग शुरू हुई है पहाड़ में, तो जैसे ही निकलते गोल्ड माइनिंग इलीगल फिर से शुरू हुई है,
1: इस पे नोटिस जो है वो ऑलरेडी लिया जा रहा है और इसका मुकम्मल एहतसाब होगा। ये नहीं हो सकता कि अरबों रुपए का टैक्स भी चोरी हो, इलीगल माइनिंग भी हो, इलीगल माइनिंग के जरिए अपने मनपसंद लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो इलीगल माइनिंग करके अवाम के हक पे डाका डालें। इस पर मुकम्मल इंक्वायरी होगी और जो जिम्मेदारान होंगे इंशाल्लाह ताला उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।
2: नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात अताउल्लाह तारिक को हार्ट में मौजूद खिताब कर रहे थे और मीडिया के सवालों के जवाब भी दे रहे थे। उनका कहना था कि आज जख्मी जवानों से मेरी मुलाकात हुई है, मैं यहाँ के शहदा और गाजियों को सलाम पेश करने आया हूँ। इन
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: ओके यू गाइज, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक. जैसे ही हम न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे मज़ीद गपशप करेंगे. सुनते रहिएगा FM 101, चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान.

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: नूर जी, मैडम नूर जहाँ मलका तरन्नुम, उनकी जो है आज बर्थ एनिवर्सरी है और 21 सितंबर 1926 को पैदा हुई, पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर और ये वो गुलुकारा है, मलका तरन्नुम इनको कहा जाता है और इसलिए भी कहा जाता है कि हमें जितनी भी अब भी जब भी हमारे पास कोई ऐसे डेज आते हैं, अभी 6 सितंबर गुजरा, हमारे पास बहुत सारी मैडम की आवाज़ में बहुत सारे ऐसे नगमे हैं, ऐसे हमारे पास गाने हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मैडम जिनका भी, जिस भी एक्ट्रेस के पीछे प्लेबैक सिंगर मैडम होती थी, उनकी रातों रात जो है ना चांदनी हो जाती थी और वो प्लेबैक सिंगर की मैडम के होने की वजह से जो है ना वो एक्ट्रेस जो है वो फेमस हो जाती थी। और इसी तरह से हमारी जंग के दिनों में भी मैडम ने जो जोश और जो वलवला आवाम में, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो ट्रिब्यूट पेश करती थी हमारी फ़ौज को, हमारे नौजवानों को जो सरहद पे लड़े होते थे, सो मैडम ने जो है वो हर तरह से अपनी आवाज़ को जो है, उर्दू गाने हो, पंजाबी गाने हो, सिंधी गाने हो, हर लिहाज से हमारी इंडस्ट्री को भी और हमारी अब तक की जनरेशन से, इवन जो अब जेन ज़ी है जिनको नहीं पता, वो भी जो है एक, मुझे लगता है कि मैडम की आवाज़ ऐसी है और एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ ऐसी है कि वो रिलेट कर सकते हैं,
1: पहचान भी लेते हैं। जब आपने प्ले की थी ना तो आपके, मेरे ख्याल से अनाउंस करने से पहले लोगों ने पहचान
0: लिया होगा, बिल्कुल जी। और मैडम की क्या क्या गीत हैं, मतलब कौन कौन सा हम प्ले करें, कौन कौन सा ना प्ले करें, सो आज जो है वो मैडम को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं।

0: ऑलमोस्ट 10,000 गाने इन्होंने गाए और उर्दू पंजाबी सिंधी जुबान में गाने गाए। जी जी
1: बहुत बड़ा नंबर है,
0: बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर है और सब कॉन्टिनेंट की उस टाइम की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी गुलूकारा थी।

0: और अगर हम इनकी बात यूं करें तो इतना खूबसूरत नाम मलिका तरन्नुम, इसके बिना तो मुझे लगता है इनका जो हम तारुफ कराते हैं वो मुकम्मल ही नहीं हो पाएगा। 10,000 से ज्यादा गाने गए, 35 साल से जायद तकरीबन इन्होंने काम किया। और हम जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है जब आपकी मुल्क एक इस तरह की नहज पर आया होता है, जब आप किसी दुश्मन मुल्क के साथ एक बहुत ही नाजुक मरहले पे होते हैं, तो इनकी जो हम लोगों के जो नगमे होते हैं वो बहुत अहम किरदार।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो 1965 की अगर जो जंग उसकी हम बात करें तो इनके जो नगमे थे वो बहुत ज्यादा हम लोग आज भी सुनते हैं कि जो हमारे जो फौजी जवान थे ना जब लड़े होते थे तो वो पीछे कैसेट्स पे ना इनके नगमे लगा के सुनते थे।
2: बिल्कुल।
0: और वो बिल्कुल इनके एक ही जुमले के पीछे वो दोहराते थे और वो नारे लगाते थे। और मुझे लगता है उसमें जो बहुत अहम किरदार था ना रेडियो पाकिस्तान की तरफ से भी, तो वो मैडम नूरजहां का एक बहुत, हम जितनी भी इनकी तारीफ करें मुझे लगता है वो कम होगी। और वो अल्फाज हम लोग, मुझे लगता है कि हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल ऐसे ही
2: है। और हमारा जो जज्बा हुरियत होता है, जज्बा हुब्बुल वतनी होता है, वो बेसिकली वो जो है ना 1965 की जंग का जो साइमा ने जिक्र किया है, तो फौजियों के लिए वो एक मोटिवेशन होती थी कि हमें मजीद करना है, अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क के लिए लड़ना है, तो वो चीज़ जो है वो बेसिकली।
1: और आप ये देखो कि एवर ग्रीन है, मतलब उनकी आवाज़ उनकी गाए हुए मिली नगमे हों, आज भी जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं। और आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वही जज्बा और वही सारा कुछ जो है हुब्बुल वतनी भी हमारे अंदर ऐसे ही बढ़ती है कि आज भी हम मैडम की गाए हुए मिली नगमे सुनते हैं। इवन मैडम की गाए हुए फिल्मी गीत जो हैं वो भी एवर ग्रीन है, मैडम की आवाज़ ही ऐसी है। इसीलिए मलिका तरन्नुम जो है वो बिल्कुल सही खिताब है। बहुत सारे अवार्ड्स, अगर मैं नाम लूँ तो मेरे ख्याल में नाम लेते लेते जो है ना वो शो ख़त्म हो जाएगा, बट बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि मैडम को मिले। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, निगार अवार्ड की बात करें, प्रेजिडेंट अवार्ड की बात करें, तमगा इम्तियाज़ की बात करें, जी
0: सितारा
1: इम्तियाज, बिल्कुल जी, पी टी वी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मिलीनियम अवार्ड, और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि मैडम ने अपने नाम किए। और बिल्कुल मैडम की आवाज़ ऐसी थी कि मैडम रातों रात कोई अगर एक्ट्रेस फेमस हुई है तो पीछे अगर मैडम प्लेबैक सिंगर हैं, और अगर मैडम ने गाना गाना उनका छोड़ दिया है और अगर प्लेबैक आवाज़ मैडम की नहीं है तो भी अरूज से जवाल तक का सफ़र जो है वो देखा फिल्म इंडस्ट्री ने उन एक्ट्रेसेस का। All right, जी, अगर आप लोग अभी कोई मैडम का फेवरेट ट्रैक है तो आप लोग ज़रूर हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर प्ले करेंगे। और आज हम जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैडम नूरजहां को, मलिका तरन्नुम को, आज इनकी सालगिरह है। और इसके साथ साथ आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, कॉल्स करने के लिए आप लोग डायल कर सकते हैं नंबर 0421-000-101। और इसके साथ साथ आप लोग फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, fizz.com/FM101 लाहौर के पेज पर आपने जाना है जी, पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट पर अपना फेवरेट ट्रैक ऑफ मैडम नूरजहां हमें बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जी, जब हम मलिका तरन्नुम की बात कर रहे हैं तो आज मलिका हुस्न की भी जो है वो आज सालगिरह है। सबीरा सुल्ताना जी, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, क्वीन ऑफ ब्यूटी कहा जाता था इनको, और बड़ा गोल्डन एरा था इनका इंडस्ट्री में, और स्टैचू ऑफ मार्बल भी कहा जाता था इनको। सो बहुत सारी फिल्म्स इन्होंने की, इवन जब हम मिले नगमों की बात करें, इस तरह के पेट्रियाटिक उनकी बात करें, तो इनकी भी एक फिल्म का था पेट्रियाटिक, मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन। सो वहाँ से जो है इनसे भी रिलेट हो रहा, और आज इनकी भी बर्थडे है। सो जी, इनको भी हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, हमारी लिविंग लेजेंड हैं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। और जी, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, बात करें मैडम नूरजहां के हवाले से और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और उनके हवाले से कोई गाना अगर आपके माइंड में भी है, कोई आपकी भी फरमाइश है, तो ज़रूर जी आप बता सकते हैं। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
3: गुड इवनिंग,

0: तो भी तारीफ कर रहे हैं हमारे ऑफर कॉलर्स, सब आपको वेलकम भी कर रहे हैं और आप उनकी आवाज़ की तारीफ भी कर रहे हैं। और बाकी जी आवाज़ अच्छी है इनकी, और ट्रेनिंग भी तो देखें ना रेडी पाकिस्तान से लिए, सो इट मैटर्स अ लॉट। और राइट जी, हमारा आज का टॉपिक जो है हम बात कर रहे हैं पॉकेट मनी के हवाले से, और ये दोनों क्योंकि मुझसे तो छोटी है ना, तो मैं चाहूँगी कि मैं पहले इनसे पूछूँ कि इनका अभी भी वो वाला दौर है, पॉकेट मनी मिलती है आप लोगों को अभी भी?
1: अब तो हम बड़े हो गए अनफॉर्चुनेटली।
0: अच्छा, नहीं मुझे लग रहा है कि साइमा कहना चाह रही है उसको मिलती है,
2: क्योंकि ना मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुई।
0: अच्छा,
2: तो इसलिए मुझे
0: डिपेंडेंट नहीं हुई या इंडिपेंडेंट नहीं हुई?
2: मैं डिपेंडेंट हूँ ना, इंडिपेंडेंट। अच्छा, नहीं हुई।
0: ठीक है,
2: पढ़ती है।
0: ठीक है जी। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगी कि साइमा को कितनी पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि साइमा अब जो पॉकेट मनी मिलती है वो जाहिर है बचपन से तो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अब दौर भी बदल गया है, अब चीजें भी बदल गई हैं। मुझसे अगर कोई पूछे ना तो मुझे बचपन में पॉकेट मनी क्या, मतलब एक वो होता है ना जेब खर्च होता है, समटाइम्स होता है कि पॉकेट मनी आपको इसलिए दी जाती है कि उससे आपने अपनी कोई एक चीज पूरी करनी है। Sometimes होता है कि पॉकेट मनी बस आपकी, आपने जैसे कहते हैं ना उड़ानी है,
1: जो मर्जी करो।
0: सो आपको किस फेज में मिलती है, उस वाले फेज में कि जिसमें आपने अपनी कोई एक चीज पूरी करनी, कोई विश पूरी करनी है, या बस उड़ानी है?
2: उड़ाना और विश पूरा करना सेम ही रहेगा?
0: नहीं, एक चीज होती है ना कि मतलब आप
1: चीज के लिए
0: एक किसी स्पेसिफिक उसके लिए दी जा रही हो कि आप इससे अपना ये वाला काम कर लेना, और वो काम आपका उसमें नहीं आता।
2: अच्छा, जी खाली मैं एक बात, अगर मुझे ऐसी कोई चीज है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग के अखराजात बहुत ज्यादा हैं।
0: ठीक है,
2: तो वो तो मुझे पॉकेट मनी नॉट इन दैट सेंस कि मुझे महीने के शुरू में मिल जाता है, नहीं, मुझे कुछ एक मुनासिब रकम मिल जाती है और फिर जब वो खत्म होने वाली हो तो मैं दोबारा ले लेती हूँ।
0: ठीक है,
2: और उसमें सब कुछ हो जाता है, उड़ाना भी होता है, जरूरियात भी पूरी होती है, जो कुछ विशेज है वो भी पूरी होती है, उसमें सब कुछ हो जाता है।
0: अच्छा, जब हम छोटे थे ना तो पॉकेट मनी दोबारा नहीं मिलती होती थी, तब एक ही बार मिलती थी।
2: मुझे वो वाली नहीं मिलती थी, अच्छा, एक बार मिली, ठीक है, मिली, मुझे अक्सर औकात मिलती रहती थी। मुझे ऐसा, अब फिर आप लोगों के केस में ऐसा होगा कि सारी एक बार दे दी जाती थी, तो मुझे अगर सारी एक बार मिलेगी तो मैं उड़ा दूंगी।
1: आप लोगों के केस से क्या मुराद है?
0: ये हमें जो है ना, हमें इसने मिली नहीं, बना दी, हाथ धो दिए, जेंजी बन गई।
1: ये पूछना चाह रही हूं।
0: नहीं, मैं भी जेंजी हूँ। पता है एक टाइम में मुझे लगता था मैं जेंजी नहीं हूँ, फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा नहीं, ओके। सो स्टार्ट ऑफ जेंजी में मैं पैदा हो गई थी, सो मैं हूँ जेंजी। ओके जी, अच्छा जी, ये कह रही हैं कि जी इनको बार बार मिल जाती है, जबकि हमारे केस में ऐसा नहीं होता था। हमारे केस में यूजुअली हमने उससे कुछ स्पेसिफिक नहीं करना होता था, लेकिन हाँ, अगर वो होती है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी अपनी विश लिस्ट में होती है, जिसके लिए आप सेविंग कर रहे होते हो, तो मैं, मेरी आदत है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से जो है ना वो काफ़ी हद तक सेविंग कर लेती थी। मैंने अपनी वो जो चिज्जी वाली वो एक वो होती थी ना कि मैंने स्नैक्स खाने, ये करना, वो करना, उड़ाने, वो मैं बहुत कम करती थी और मैं ज़्यादातर जो है ना सेव कर लेती थी। लेकिन मुझे याद है कि हमारी डेली बेसिस की जो पॉकेट मनी होती थी ना, एक होता है डेली आपको मिल रहा है,
1: स्कूल जाते हुए,
0: हाँ, या ट्यूशन जाते हुए डेली मिल रही है। सो मुझे जो स्टार्टिंग की याद है वो शायद 1 रुपये या 2 रुपये थी।
1: अरे,
0: और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 5 रुपए भी जो आई ना,
1: 1 रुपए की 2 टॉफियां भी आ जाती थी,
0: ज्यादा ही आती थी। और मेरे ख्याल में 2 रुपए में कई शायद आपका छोटा बिस्किट या कोई चिप्स भी आ जाता था, आई थिंक।
1: कुछ स्लांटी भी छोटे छोटे से होते थे, हाँ,
0: कुछ इस तरह के, मतलब लाइक स्नैक्स आ जाते थे। और अगर आप कुछ ज्यादा कुछ ऐसा लेना है तो फिर आपको 2 दिन की अपनी सेव करनी पड़ती थी, या 3 दिन की आप कंबाइन कर लेते थे, और फिर आप जो है ना एक ही बार उसको स्पेंड करते थे। उसका भी एक अलग ही चार्म होता था, या कह लो एक अलग मजा होता था उस चीज का। या अगर कोई मार्केट में स्टेशनरी कोई ऐसी आई है जो कि
1: और रेजर्स और शॉर्पनर्स होते थे जो कुछ बने हुए होते थे,
0: हालांकि वो किसी काम के नहीं होते,
1: वो रेज नहीं करते थे,
0: रेज नहीं करते,
1: ब्लैक हो जाते,
0: पेपर फाड़ भी देते थे वो, लेकिन एक वो होता था ना दिमाग में कि ये लेना है, ये लेना है, ये देखा है। और स्पेशली हमारे बचपन में, क्योंकि हम लोग तो ट्यूशन भी जाया करते थे, सो ट्यूशन आने वाले बच्चे जो है ना वो ज्यादातर देखते थे, अच्छा उसके पास क्या है, उसके पास क्या है,
1: मुझे भी चाहिए, बॉक्स कैसा है, रेजर कैसी है, पेंसिल कैसी है, पेंसिल के पीछे भी रेजर लगी हुई
0: है, हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके लिए जो है ना ये पॉकेट मनी बड़ी काम आती थी, क्योंकि माँ बाप तो मानते नहीं थे, उनको पता था कि ये वाला रेजर किसी काम का नहीं है, ये शॉर्पनर भी शॉर्प नहीं करेगा, और ये पेंसिल भी लिखने के काबिल नहीं है। सो हम अपनी वो वाली जो चीज होती थी ना, वो समटाइम्स पॉकेट मनी इकट्ठी करके जो है ना उससे पूरी करते थे। सो आप क्या करते थे?
1: अच्छा वक्त था, मैं वापिस चली गई अपने पास्ट।
2: सिक्कों वाली पेंसिल
1: भी होती थी, वो एक जो है वो खत्म हो गया है या बिल्कुल वो हो गया, तो हम उसको उतार के उसको पेंसिल
0: भी किसी काम की नहीं थी।

0: जो वैसे मैंने देखा हम एक शो पूरा जो है ना स्टेशनरी के ड्रॉबैक्स पे भी कर सकते हैं, फैंसी स्टेशनरी जो किसी काम की नहीं। और अभी मेरे ख्याल में जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं और जिनके बच्चे ऐसे जिद करते होंगे स्पेशली ट्यूशन जाते हुए कि हमें वो वाली पेंसिल लेकर दें या वो वाली करके दें, सो उनके लिए भी ये जो है ना वो भी रिलेट कर रहे होंगे कि वाकई ये जो है ना सिक्कों वाली पेंसिल किसी काम की नहीं थी, वो वाला रेजर भी किसी काम का नहीं होता था। और जो
1: ले दिया करें, हाँ
0: अच्छा ले दिया
1: करें, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी सी फरमाइशें,
0: तो वो सीखेंगे कैसे? मुझे बताएं ना, अब के दौर में तो शायद पॉकेट मनी की उस तरह से वैल्यू नहीं है जैसे हमारे टाइम में होती थी। और हमें पता होता था कि अगर ये मिली है तो हमने इसको सोच समझ के खर्च करना है, ठीक है, और अगर खर्च कर दिया तो दोबारा नहीं मिलनी मेमुना साइमा की तरह, ठीक है। तो
2: मुझे भी उतनी थी, बट वो होता था कि कुछ टाइम बाद मिल जाया करती थी, आप मिल जाया करती थी, मुझे भी उतनी मिला करती थी, बट वो टाइम बाद क्योंकि उनको पता था इसने उड़ा देनी है,
0: उड़ा देनी
2: है, पेरेंट्स नहीं है।
0: अच्छा, बच्चे बच्चे की नेचर पे भी होता है ना कि माँ बाप को पता होता है कि इसने उड़ा देनी है,
1: ऐसा ना हो ना पेरेंट्स मंथ के स्टार्ट में देखे पूरे महीने की है, वो दो दिन में उड़ा ले।
0: सो अभी लास्ट मेरे ख्याल में, मुझे बचपन से तो याद है, अभी लास्ट मेरे ख्याल में जो लास्ट पॉकेट मनी मिली होगी वो कुछ थाउजेंड्स में गई हुई थी, उसके बाद नहीं मिली। सो आप लोगों का कहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ याद है आपको बचपन पॉकेट मनी?
1: मुझे 5 रुपए से याद है, ठीक जब है? मैं बहुत छोटी थी तो 5 रुपए, इसलिए मैंने कहा था ना वो जो 2 रुपए वाला मैंने स्लांटी जिक्र किया था ना, वो गोल गोल से होते थे, मुझे अभी भी याद है वो 2 रुपए का आता होता था, और एक था वो 1 रुपए का आता था, 1 रुपए वाला थोड़ा छोटा था, और मुझे अभी भी उसका एग्जैक्ट वो कलर और वो सारी चीज ना मेरे माइंड में आ रही है, मैं कह रही हूँ मैं टाइम मशीन से ना पास्ट में चली गई। तो हम कई दफा होता था ये 1 रुपए का बोले लिया, 2 रुपए का बोले लिया, 3 रुपए हो गया, और बाकी जो 2 बचे हैं ना उसमें से एक की कोई कैंडीज, मतलब 1 रुपए की 2 भी आ जाती थी समटाइम्स, और फिर इस तरह से या कोई जेली वगैरह ले ली तो ये 5 रुपए पूरे हो जाते थे।
0: और कितना मजा आता था उसको पार्टी करने का, कितना मजा आता था चीजें इकट्ठी करके। और सब पॉकेट मनी जो डिपेंड करता था, कुछ बच्चों को डेली मिलती थी, कुछ को वीकली, कुछ को मंथली मिलती थी। अब मंथली वालों के लिए जरा ज्यादा मुश्किल था उस टाइम पे हिसाब किताब करना,
1: मुश्किल
0: है। सो मेमुना साइमा आपको कब से मिली और कितनी मिली और अब कहाँ तक पहुंची है?
2: मैं अभी जो यहाँ पे आई हूँ ना वो भी अपने पॉकेट मनी के पैसों से आई हूँ।
0: गुड।
2: अपने साथ ही
1: अच्छा, वो बताना चाह रही है अब इतनी ज्यादा मिलना शुरू हो गई है कि वो ट्रेवल भी कर सकती है,
0: लेकिन मुझे अच्छी लगी है कि ये मुझे लगता है
2: स्टार्ट होती है तब से ही होना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, आप एक तरफ कह रही है कि आपकी उड़ाने वाली नेचर है, एक तरफ आप सेविंग वाली भी है, तभी आप आई है उसमें।
2: अगर इकट्ठी मिल गए तो मैं उड़ा दूंगी, सेविंग वाली भी नेचर है बहुत ज्यादा। अगर मुझे जैसे आपने ख्वाहिशात की बात की, वो एक बहुत पतली सी लाइन होती है जरूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान,
0: गहरी बात कर गई।
2: सोच समझ के देखना पड़ता है कि पहले जरूरियात के लिए सेविंग कर दो, फिर सेव करो और उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो,
0: ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
2: ऐसा नहीं हो कि मैं उड़ाने वाली, मैंने कहा कि अगर बचपन में मुझे इकट्ठी मिल जाती तो पेरेंट्स को शायद खौफ था कि इकट्ठी उड़ा देगी फिर हमें डबल डबल देनी पड़ेगी, तो इसे थोड़ा टाइम टू टाइम देते रहते थे,
0: ठीक है। ओके जी। ऑलराइट जी, हम थोड़ा सा अपने बचपन में चले गए हैं और आप लोग भी यकीनन अपने बचपन में चले गए होंगे, तो आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी और कहाँ स्पेंड करते थे, क्या उससे सेविंग्स की है और किस हद तक सेविंग्स की। मैंने वैसे बड़ी सेविंग्स की है, अब मैं बताऊंगी नहीं कि मैंने उसके बाद उस सेविंग्स का क्या किया, लेकिन मेरी एक आदत थी, मुझे ईदी भी मिलती थी ना तो बचपन में तो अम्मी अबू ले लेते थे, कहते थे गिर जाएगी, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए ना
1: जुल्म होता था,
0: लेकिन जब थोड़े बड़े हुए ना, जब थोड़ी समझ आई कि ये क्या हो रहा है, तो फिर जो है ना
1: तो हमारे पैसे
0: हाँ, तो फिर हमने कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं हम संभाल लेंगे, और मैंने फिर एक्चुअली इतना कुछ संभालना शुरू किया ना कि जैसे ये बात करी है ना साइमा की, फिर आपको पता होता है कि आपने कौन सी वाली विश पूरी करनी है और उसके लिए आप डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन फिर समटाइम्स जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं ना, फिर आप वो विशेज भी सोच समझ के पूरी कर रहे होते हैं और आप कह रहे होते कि नहीं रहने दो, लेट इट बी। सो जी, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई है बचपन की याद, पॉकेट मनी कितनी मिली शुरू में, क्या किया उससे, डेली मिलती थी, वीकली मिलती थी, मंथली मिलती थी, और क्या सेविंग्स करते थे, क्या लेते थे उससे, या हमारी तरह आपको भी शौक होता था पार्टी करने का, इकट्ठी चीज़ें स्नैक्स लेके जो है वो पार्टी करने का, वैसे उसका भी अपना ही मज़ा था। सो हमारा बचपन जो है ना वो क्वाइट अच्छा गुजरा है। आपके बच्चे जो है ना उस तरह से ना समझ पा रहे हैं पैसों की वैल्यू को, ना उनके पास पॉकेट मनी की उस तरह से वैल्यू है, और ना ही वो उस तरह से इंजॉय करते जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें ला के इंजॉय करते थे ना। आज पार्टी करेंगे.
1: एक्चुअली उनका ना फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया, आपस में कम हो गया. मतलब वो ले रहे हैं, कुछ ले भी रहे हैं ना, वो अकेले बैठ के खा रहे हैं. मतलब वो इंजॉयमेंट या फन वाली चीज ना कम हो गई, एलिमेंट मिसिंग है अब.
0: और पहले ऐसा होता था कि आप जो है वो बाहर बच्चों के साथ भी खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज भी होती थी, तो उसमें आपका काफी ज्यादा इंटरेक्शन होता था और उसके बाद आपकी बॉन्डिंग भी हो जाती थी. और फिर वो ये भी होता था कि हमारे बचपन में तो ये होता था कि किसी एक के घर इकट्ठे हो गए, सो वहां पे जो है वो पार्टी कर ली, ईद पे चले गए. हाँ, और ईद ईद भी अगर स्पेंड करनी है तो वो भी ऐसे होता था कि सब कलेक्टिवली कुछ लेने जाते थे कि आओ कुछ लेने चलते, अब ईदी मिल गई, किसको पहले ईदी मिल गई है. तो इस तरह की हमारे पास तो बहुत सारी मेमोरीज हैं जी. अगर आपके पास हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं 0421111 पर कॉल कर सकते हैं.

0: और अर्जीज के साथ साथ बड़ा मजे का एक और टॉपिक है जो कि मैं तो रिलेट कर सकती हूँ. मैं इनसे पूछूंगी कि मजा ये आ रहा है कि इनसे पूछने का मजा ज्यादा आ रहा है कि इनके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता. सो होता क्या है कि जी हम क्योंकि सब ही हम जितना मर्जी कह लें लेकिन हम हैं तो देसी फैमिली से ही ना, मतलब लाइक हमारे पेरेंट्स हैं तो उसी ओरिजिन से ना. सो होता क्या है हमारे घर में, आप लोग भी दोनों रिलेट करोगे कि हमें ना कहा जाता है कि आपके पास फ्रीडम है टू चूज, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं. लेकिन उसके साथ एक लाइन बोल दी जाती है, बट साड़ी दिली ख्वाहिश थी वो अगर आप दोनों में से किसी की पंजाबी अच्छी है ना
1: हमारी दिली ख्वाहिश
0: सो मैं तो चाहूंगी कि ये ना कोई पंजाबी में बोल के दिखाया आप दोनों में से अगर किसी की अच्छी पंजाबी. मेरी तो नहीं है. आप बोल के बताओ ना कि मतलब देखो फैसला तुम्हारा अपना है लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश ये है.
2: अच्छा जी, पंजाबी आई लव पंजाबी बट इतनी अच्छी नहीं है बोलने की.
0: अच्छा मेरे साथ भी मसला ये है कि मुझे अक्सर मेरे कॉलर्स कहते हैं कि जी आप पंजाबी में कुछ शो करें ना. मैंने कहा नहीं आप सुन नहीं पाएंगे.
1: मेरे ख्याल से हम तीनों का ये मसला
2: है, चाहते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं ना उनको नागवार.
0: हाँ राइट जी, हम जो है ना ये बात कर रहे हैं कि माँ बाप जो है ना वो अक्सर आपको इख्तियार देते हैं, चाहे शादी का फैसला हो, करियर का फैसला हो, कुछ और कुछ लेने का फैसला हो, कोई ऐसे आपने कोई इस तरह की चीज़ लेनी है, लेकिन माँ बाप साथ में ये भी कह देंगे देखो मर्जी तुम्हारी अपनी है लेकिन ना बस साड़ा दिल सी साड़ी दिली ख्वाहिश सी. तो ऐसा आपके साथ कब कब हुआ जिंदगी में कि आपको एक तरफ तो फ्रीडम दी गई और आप कह रहे हो कि वाह यार. वो होते ना कुछ बच्चे आपको कहते हैं कि ना हमारे पेरेंट्स तो कहते हैं नहीं तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स साथ में कह देते हैं साड़ी दिली ख्वाहिश है ऐसी.
1: तो काइंड ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको हम कहेंगे कि मतलब वो बच्चा बेचारा गिल्ट में ही चला जाए अपनी मर्जी करके.
0: वो कहते हैं कि जी देखो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुमने जो भी फील्ड चूज करनी है लेकिन साड़ी दिली ख्वाहिश से कि फैमिली से ना एक डॉक्टर हो. अच्छा कहाँ कहाँ हुआ आप लोग के साथ?
1: मेरा जब मैट्रिक हुआ ना तो मेरे 1000+ मार्क्स थे. अच्छा ये प्री कोविड वाला है.
0: अच्छा,
1: कोविड के बाद वाले जो 1000+ वाले बच्चे हैं ना उनको तो नंबर बांटे गए हैं, तो मैं ये इसलिए मैं ये चीज जो है वो क्लियर कर दूं.
0: ठीक है.
1: तो मेरे 1000+ मार्क्स थे तो मुझे सबने कहा कि ना मतलब मेरे ननियाल ददियाल दोनों साइड पे सब कजन्स ना वो या मेडिकल या इंजीनियरिंग, मतलब यही वो जो एक कॉम्प्लेक्स था
0: ये कॉम्प्लेक्स रहा है बड़ी देर रहा है.
1: अब मुझे मैथ्स पसंद था, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मेरे मैट्रिक में भी बोर्ड के एग्जाम्स में मैथ्स में फुल मार्क्स थे और मैं अभी तक सोशल साइंसेज में आने के बाद मैथ्स वाहिद चीज़ है जिसको मिस करती हूँ. तो मुझे मामा ने कहा कि मैंने कहा मैं प्री इंजीनियरिंग करना चाह रही हूँ FSC. तो मामा ने कहा देख लो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने. अच्छा अब मैं गिल्ट में चली गई हूँ कि अब मैं अपनी ख्वाहिश बेशक पूरी कर लूँ लेकिन मम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, मैं क्या करूँ. अब मेरी बड़ी सिस्टर थी उसका MBBS में नहीं हुआ तो उसने फॉर्म डी की ना, मम्मा उसका भी नहीं हुआ तो तुम कर लोगी, तुम कर सकती हो. मैं इस गिल्ट में कैन यू बिलीव कि मैंने पहले 3 महीने कभी मैं बायो की क्लास में बैठ रही हूँ और कभी मैथ्स की क्लास में बैठ रही हूँ. मेरे कॉलेज वाले परेशान है. जब एडमिशन भेजने का टाइम आया ना, मैनेजमेंट ने कहा बुलाया ऑफिस, बेटा डिसाइड कर ले अब क्या करना है. अब मैं को फिर मैंने कहा नहीं भाई, फिर मैंने बाबा से डिस्कस किया एंड ही इज वेरी सपोर्टिव. उन्होंने कहा अपने दिल की सुनो. मैंने कहा मेरा दिल कहता है मैथ्स. उन्होंने कहा करो.
0: चले जी, हमने ममूना की स्टोरी तो सुन ली, साइमा की स्टोरी भी सुनते हैं और इससे मैं भी रिलेट करूंगी. लेकिन अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जान पड़ना है और उसके बाद न्यूज ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं. स्टे ट्यून्ड विद अस क्योंकि हम 8 बजे तक जो है वो बहुत सारी बातें करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से फैमिलीज जो है ना इजाजत तो देती है लेकिन प्रेशराइज भी कर जाती है साथ साथ. सो स्टे ट्यून्ड विद अस.
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। ईमान वाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम न्यूयॉर्क में है, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर इत्तलात ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अहलकारों के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाके में 37 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और जापान में एशियन गेम्स हॉकी मुकाबलों में कल पाकिस्तान का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होगा।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल पर खुसूसी रियायत, मोटरसाइकिल, रक्षा, चिंची लोडर और दीगर दो और तीन पहियों वाली मुसाफिर या लोडर गाड़ियों के लिए 500 रुपए का हफ्तावार डिस्काउंट। अब 15 की बजाय 20 साल पुराने 2 और 3 व्हीलर्स भी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, यानी जिनकी रजिस्ट्रेशन जनवरी 2006 के बाद।
3: शुक्रिया,
4: आपने FM 101
3: ट्यून किया।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: से आप सुन रहे आज हमदा खान को और मेरे साथ जी मौजूद हैं स्टूडियोस में ममूना और साइमा। और बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि होता है देसी फैमिलीज में, देसी ही हैं हम सब। अब हम जितने मर्जी कह लें कि जी हम तो जेंजी हैं या हम बड़े मॉडर्न हैं, लेकिन ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो आपको आज़ादी तो देते हैं, एक तरफ कह देते हैं कि जी मर्जी तुम्हारी अपनी है, जो करना है करो, लेकिन बस हमारी दिली ख्वाहिश, साड़ी दिली ख्वाहिश ऐसी। सो हम इस पर बात करें कि जी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कभी शादी के फैसलों में ऐसे होता है माँ बाप कहते हैं नहीं जी वहाँ शादी कर लो, फिर कहते हैं नहीं तुम्हारे पास अपनी मर्जी है, लेकिन साड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो साड़ी बहू बने। तो होता है ऐसा, और करियर वाइज भी होता है, जैसे अभी मैं मुना बता रही थी कि उनको भी बड़ा एक प्रेशर रहा, और ये होता है कि जी फैमिली में कोई एक ना एक ऐसी चांद है सी बस के साड़ी कुड़ी ना डॉक्टर बने, पर मर्जी तो अड़ी अपनी है, तो तुम वेख लो की करना है ना। तो बच्चे तो अब आज के ना वो फिर रिश्तेदारों को भी कहते हैं फैसले खुद ही करते हैं, लेकिन बस हमारी दिली ख्वाहिश थी। तो ऐसा कुछ हुआ ममूना आपके साथ, साइमा आपके साथ, साइमा से स्टार्ट करते हैं जी। पहले
1: पहले तो हम बात कर रहे थे करियर की, तो ये एक जो हम लोग देसी लोग होते हैं ना, और जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली, अब वो जो हम लोग से बड़े हमारे जो पेरेंट्स रह चुके हैं ना, मुझे लगता है वो उनसे थोड़ा सा ऊपर चले जाएं अगर, तो वो लोग क्या करते हैं उनकी एक यही सोच है, वो अक्सर औकात हम लोगों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं इनडायरेक्टली। अच्छा अब दो इसके नजरिए हैं, अगर हम देख लें एक तरीके से देखें तो एक लोग कहते हैं कि ये इमोशनल ब्लैकमेल है, और दूसरे कहते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि पेरेंट्स ने हमें सही जगह बात बताई थी, बात तो पेरेंट्स को ब्लेम ना करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वाली बात सही भी है,
0: ठीक है,
1: कि वो लोग ये देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कोई माँ बाप ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी औलाद कोई ऐसा फैसला ले जो गलत हो, खुदा ना खास्ता,
0: ठीक है।
1: तो मुझे लगता है कि एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो आपको इसी हिसाब दिख रही होती है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है अब। और मुझे लगता है कि कुछ लोग जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो अपने एक्सपीरियंस ही बताते हैं, हम ये कहेंगे कि ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से तुम्हारी मर्जी है, पर मैं ये कहती हूँ या मैं ये कहता हूँ, अब्बा कहेंगे कि ये वाला बेस्ट। और ये डॉक्टर्स वाली बात है, ये तो हर घर की बात है, हर घर की बात है। अगर एक बच्चा एक चीज में इंटरेस्टेड है ही नहीं, डॉक्टर बनाने का सोच रहे हो, तो जमीन आसमान का फर्क है, वो इंटरेस्ट नहीं है तो आपने क्यों उसे जबरदस्ती डॉक्टर बनाना। तो जब मेरी यूनिवर्सिटी की बारी आई, वैसे तो पहले मैंने, अगर आप मुझे सुनेंगे तो मैंने अपने मैट्रिक बायो की, फिर मैंने आईसीएस कर लिया,
0: ठीक है,
1: फिर जब मैंने आईसीएस कर लिया उसके बाद बारी आई कि मैं यूनिवर्सिटी सीएस चूज करूँ, तो मैंने मास कॉम कर लिया। ये सही है, ठीक है, जो मुझे सही लगा ना कि इसमें जाना है, तो मैंने अपनी मर्जी किया,
0: ठीक है,
1: मैंने किसी के प्रेशर में नहीं आई हूँ, तो दैट्स गुड।
0: चले जी, अच्छी बात है। और जी आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं, आई नो कि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सो जी 04221111 पर लेट्स सी जी फर्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ और कौन अपना एक्सपीरियंस जो वो शेयर करते हैं। लेट्स सी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, बाजी क्या हाल है, ठीक है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम बशीर है, मैं जगह निमकोड़ा चमियम बसिदु।
0: जी जी बशीर साहब, कैसे हैं आप?
2: अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने बच्चों को वैसे फोर्स किया कि जी मेरी दिली ख्वाहिश ये है? हाँ, तो शादी करने चाहिए भी तुसी क्या होगा ना, साड़ी दिली ख्वाहिश है। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है जी, कॉल मिल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट जी, हमारे साथ पहले कॉलर हमारे मौजूद थे, उन्होंने कहा बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं और उनकी शादियाँ शुदियाँ कर दी हैं, तो मैंने कहा वो शादी के फैसलों में ही आपने कहा होगा ना कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है।

0: और अर्जी इसके साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और मुझे अभी एक कॉलर भी हमारी जो है हमारा बेग हमारे साथ मौजूद है, मुझे कहती कमेंट्स पढ़ लो वरना गिले शिकवे आएंगे आपको। और अर्जी इसके साथ रमजान उसमें गुजर भी हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो आप लोग बात कर रहे थे ना कि पेरेंट्स कहते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, जो अभी साइमा कह रही थी, तो एहसन खान भी जो है वो यही कह रहे थे कि पेरेंट्स जो है ना वो फिर कहते हैं कि उनका तजुर्बा भी होता है और आपको माननी भी पड़ती है, नहीं मानोगे तो भी फंसोगे और अपनी मानोगे तो भी फंसोगे। फिर माँ बाप बाद में कहते थे ना, देखा साड़ी नहीं सुनी ना, हाँ तो ऐसा भी होता है। और राइट जी, फिरोज आलम जान हमारे साथ मौजूद है मदीना मुनव्वरा से, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का। मनाजिर महमूद है हमारे साथ और फरहाद मेमन भी हमारे साथ मौजूद है। रियाज भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद है जी। और ये कौन सा विलेज है, सनाटका, सनाटका आई गेस, मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सनाटका ही है जी, बहावल नगर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज्वाइन करने का। लेट सी जी और कौन कौन से कमेंट्स हमें आ चुके हैं, हमारे साथ कौन कौन से और हमारे लिसनर्स मौजूद हैं। अच्छा जी चलें जी, अभी तो हमारे रिपीट कमेंट्स ही हो रहे हैं। रियाज भट्टी साहब ने आज दिल खोल के कमेंट्स कर दिए, अगर आप सुन रहे हैं तो। मैं कोशिश कर रही थी किसी और के नाम तक मैं बढ़ जाऊं, लेकिन अभी तक मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। और राइट जी, बहुत शुक्रिया जी इतने सारे कमेंट्स करने का। हम जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, तब तक 04111 पर लेट सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम बेटा, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, लाहौर से।
0: जी सलमान साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मैं इस मामले में कहना चाहूँगा
0: जी जी,
1: माँ बाप को भी जिद नहीं करनी चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए बेटी हो या बेटा हो, और बच्चों को भी जिद नहीं करनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए देखभाल की, देखभाल के, क्योंकि देखिए आप कोई जूता खरीदने जाते हैं या सूट, तो आप शोकेस में बड़ा खूबसूरत आपको लगती है कोई चीज, तो आप सिर्फ खूबसूरती की बिना पे वो चीज नहीं खरीदते, जूता बाहर निकालते हैं, उसका साइज चेक करते हैं, उसकी मजबूती देखते हैं, ये लेदर सही है कि नहीं, नीचे गत्ता तो नहीं लगाया हुआ, और हजारों चीजें चेक करने के बाद फिर आप वो चीज खरीदते हैं। तो जब किसी आपको कोई लड़का अच्छा लग गया या कोई लड़की अच्छी लग गई,
0: ठीक है,
1: उसका भी देखना पड़ता है कि उसके माँ बाप का उसके कैसे अहवाल है, उसके तरह जिंदगी क्या है, उसकी तालीम क्या है, वो सारी चीजें। इस मामले ना बच्ची को जिद करनी चाहिए कि नहीं जी मैंने इधर ही करना, करें बिल्कुल जरूर करें, लेकिन चेक करने के बाद, अगर माँ बाप कहीं करना चाहते हैं तो वो भी बच्ची के साथ इत्माम में पहले चेक कर लें, माँ बाप कहीं करना चाहते हैं या बच्ची करना चाहती है उसे या बच्चा करना चाहता है,
0: ठीक है,
1: सारी जाँच पड़ताल के बाद करें,
0: ठीक है।
1: ये माँ बाप में और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आपस में इकट्ठे होनी चाहिए कि बेटा आप कह रहे हो ठीक है हम इधर ही कर देते हैं, लेकिन ये चार चीजें जरूरी हैं। बंदा बाजार से एक बॉल पेंसिल खरीदता ना 20 रुपए की, वो भी चेक करता है पहले यार चला के कहानी जरा सही चलती है कि नहीं, 20 रुपए के भी आप चला के देखते हैं और जिंदगी का सवाल है, उधर कहते हैं बस ये खूबसूरत लग गया, इसकी अलायंस लग गई, शादी कर लेनी नहीं, चेक करें,
0: ठीक है। अच्छा, इसका मतलब माँ बाप की भी माननी चाहिए और माँ बाप को बच्चों का भी जो है ना वो पसंद देखनी चाहिए, ठीक है,
1: दोनों में कोई भी कर रहा है, लेकिन ये चीजें पहले चेक करें कि उसका जिस बच्चे के साथ करना जा रही है उसके माँ बाप के रहन सहन कैसा है, वो माशरे में उनकी रेपुटेशन कैसी है, उसकी तालीम कितनी है, वो कमाता कितना है, कल को आप गुजारा कर सकते हो कि नहीं कर सकते।
0: ठीक है,
1: बड़ा खूबसूरत है जी, खूबसूरती तो 10 साल बाद कोई मकान नया ले ना, 10 साल बाद उसकी खिड़कियां खुड़कियां महंगियां चिपियां हो जाती हैं, इसी तरह खूबसूरती तो वक्त के साथ साथ रह जाती है, अब हम टेढ़े मेढ़े हो गए हम भी,
0: ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का।
1: बहुत चीजें हैं मैं जो मैंने कही है, बच्ची हो या बच्चा या पेरेंट्स हो, ये दोनों माँ बाप और बच्चा मिलके चीज अच्छी लाके देखे, सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों की ख्वाहिश पूरी करता है, तो ये भी करे, जब हर ख्वाहिश पूरी करता तो ये भी करे, वो कहे ठीक है मैं इधर ही करता हूँ, यहाँ आप कह रहे हैं उधर ही करते हैं आपका, लेकिन ये चीजें जरूरी है बेटा, कल को आप दुखी होगी तो हमें भी दुख होगा, तो ये चेक करना जरूरी है।
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट जी, हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद थे जी, और इन्होंने ये बात की है कि पेरेंट्स को भी जो है वो ज़ाहिर है उनका तजुर्बा है तो उनको भी जो है वो देखभाल करनी चाहिए, देखना चाहिए चीज़ों को, और बच्चों को उनकी भी माननी चाहिए, और पेरेंट्स को भी जो है वो बच्चों की पसंद नापसंद, ख़ासतौर पर शादी के मामले में कह रहे थे कि वो भी उनको देखनी चाहिए। और राइट जी, बिल्कुल ठीक है जी, दोनों तरफ से फैसला होना चाहिए और म्यूचुअली जो है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो जो जनरेशनल गैप है ना, ये बेसिकली जनरेशनल गैप आप लोगों ने फेस किया कभी?
2: यस, और जेनरेशन गैप की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर 3 साल बाद कहा जाता है कि जेनरेशन गैप आ जाता है.
0: अच्छा, 3 साल बाद ही आ जाता है.
2: 3 साल बाद.
0: ओके जी. अच्छा जी, जेनरेशन गैप पे बात करते हैं, एक ट्रैक प्ले कर ले जरा.

0: अच्छा जी, जनरेशनल गैप की इन्होंने बात की, और ये तो बड़ा अजीब से स्टैटिस्टिक्स है कि 3 साल बाद फिर आ जाता है। अच्छा वैसे मुझे अब लगता है कि हम, क्योंकि अब जितना फास्ट चल रहे हैं ना हम, और हमने इतना कुछ देख लिया, तो हमें बाकी अब जो आप 3 साल वाली बात कर रही हो ना, मैं शायद उससे एग्री कर सकती हूँ कि 3 साल से भी जल्दी मुझे लगता है हमारा जनरेशनल गैप होगा आगे अगली जनरेशन के साथ जो है ना, क्योंकि वो जिस लेवल पर वो ग्रो कर रहे हैं, जिस लिहाज से वो बढ़ रहे हैं, जिस लिहाज से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और हर चीज़ मतलब AI का दौर, और आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको कम्पीट करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए जो है ना, आपको भी उसी लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। पहले होता ना, माँ बाप को नहीं समझ आ रही, चलो कोई नहीं है, अम्मी अबू नहीं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब जो है ना, अब पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है, अब उस तरह से चीज़ें नहीं रही।
1: अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि ना, जेनरेशन गैप को भी एक्सेप्ट करने में भी ना जेनरेशन टू जेनरेशन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पिछली जेनरेशन है ना, उनके सामने अगर हम ये कहेंगे ना विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जनरेशन गैप है, या आपको शायद वो आपके दौर की, आपके ज़माने में इस तरह होता था, हमारे दौर में ऐसा हो रहा है, ये चीज़ अब बदल गई है, तो उनके लिए ना ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है। क्यों भाई, हमने भी अपने दौर में, हमने भी तो जवानी गुजारी, हमने भी ऐसे किया, लेकिन हमारी जनरेशन जनरेशन गैप को भी जल्दी एक्सेप्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, मुझसे कोई 3 साल छोटा या छोटी बच्ची है ना, मैं उसको बेटा बेटी कह लेती हूँ, बेटा यार ऐसे कर लो। मतलब मैं एक्चुअली आई एम हॉस्टलाइज, तो मैं अब जो, जैसे अब मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, अब जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुए, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे बच्चियाँ हैं, तो मैं उनको कह रही हूँ तो बेटा ऐसे कर लो, वो आगे से कह रही होती है आप कौन से इतनी बड़ी हैं, तो मैं कहती हूँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम लोगों को चीज़ें मुझसे भी ज़्यादा पता है। लेकिन हमारी ओल्डर जनरेशन ने अनफॉर्चुनेटली, मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, कि वो एक एक्सेप्ट नहीं करते,
0: नहीं करते,
1: हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे अब आपने कहा ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे स्टूडियो में जब आप एंटर हुई ना, आपने कहा आजकल के या आप लोग बच्चे, आप लोगों को, और मैं कह रही थी कि तब साइमा नहीं थी और साइमा को बता रही हूँ, तब मैं कह रही थी आप खुद भी तो हमारी जितनी ही लग रही है। लेकिन अगर हम थोड़े से छोटे हैं तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मुझसे कोई 2-3 साल छोटा है मैं उसको मान लूंगी कि भाई हमारे दौर में ऐसा नहीं था, आपके दौर में ऐसा हो रहा है। AI मेरे दौर, मेरी यूनिवर्सिटी के दौर में मैं ChatGPT से नहीं बना सकती थी।
0: अब लड़कियों की भी वो आदत चेंज हो गई अपनी एज छुपाने वाली और एज कम बताने वाली कि जी हम तो छोटे हैं अभी। सो एग्जैक्टली जी, चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन हमारा सवाल वही है कि जो देसी फैमिलीज में जो कहा जाता है, आपको इंडिपेंडेंस तो दी जाती है कि जी जो दिल करता है, जो उससे दिल करता है, जैसी ख्वाहिश है वैसे करो, लेकिन साथ साथ ये भी कह देते कि हमारी दिली ख्वाहिश ऐसी है। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है किसी भी मामले में ज़िंदगी में कि पेरेंट्स ने साथ में एक फ्रीडम दिया और साथ में कहा कि दिली ख्वाहिश ये है, तो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। जी लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, मैं आ रहे बर्फी बनते बनते बनते।
0: चले एक बार मुझे भी कह लें दे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इतनी बार कह दिया
2: हम ना, मैं दसो भी अस भी प्रोग्राम सुनते होंगे तुम्हें,
0: आप तो कह रहे हैं आप शो सुन रहे हैं। पकड़े गए हैं,
2: मैं लाके आवाज नहीं आ रही है, कॉल लगी है, मान बढ़ती कॉल लगी है,
0: चले जी मैं टॉपिक बता देती हूँ। वो होता ये है कि आपने भी ऐसा किया होगा अपने बच्चों के साथ कि आपने उनको आज़ादी तो दी होगी कि अपनी मर्जी करो, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा होगा कि दिली ख्वाहिश मेरी ये है। पीछे इनके गाहक भी आ गए। चले कोई बात नहीं जी, आप ओके जी, ओके जी, हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं जी, शामिल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का।
2: अल्लाह हाफिज़।
0: ऑल राइट जी, इनके कस्टमर आ गए तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे पीछे से, उन्होंने उनको भी कह दिया कि जी मेरी मुश्किल से कॉल लगी है, कोई बात नहीं जी आप कस्टमर अटेंड करें। ऑल राइट जी, अल्हम्दुलिल्लाह वाला खेल हमारे साथ मौजूद हैं जी लाहौर से, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो जी। रमज़ान गुजर हैं हमारे साथ मौजूद, रजा चौधरी हैं हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया जी आपका भी ज्वाइन करने का।

0: फैमिली वाला जो प्रेशर है ना।
1: अच्छा तो मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो जब मेरी शादी उन्होंने करनी थी ना, घर वालों ने रिश्ता वगैरह अरेंज, मैं कहता था कि अभी नहीं, हम कुछ देर ठहर के करेंगे।
0: अच्छा,
1: तो मेरी अम्मी, मेरी खाला और मेरा नाना जी पहुँच आए। ये लड़का क्या कह रहा है कि अभी अभी रुकना है किधर, ये जो हमारी अपनी बच्चियाँ हैं औरों के घर में चली जाएं, ये कहता है कि अभी रुक जाएं।
0: अच्छा,
1: मेरी सांस ही रुक गई है।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा मेरी सांस ही रुक गई। तो मम्मा कहती है कि आपको ना पैर की जब आएगी ना तो आपको लग पता जाएगा।
0: अच्छा,
1: मैं कहता मुझे लग पता क्या जब तो बस ना फिर वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के शुक्र गुजार भी हैं, अच्छी जिंदगी गुजर रही है, वालदेन की रजा भी शामिल है। और फिर वो
0: चले, अच्छी बात।
1: अब मैं भी ना उसी फील्ड में जा रहा हूँ जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि वालदेन की जो बताया हुआ होता है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं जरूर इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए मुकम्मल आजादी होगी।
0: चलें जी, अच्छी बात है। जो आपके साथ गुजरी होती है ना, फिर आप आगे यही कहते हैं।
1: शादी वाली फील्ड ही नहीं होती, बाकी काफी और चीजें भी होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी भी मैं कोई काम करना शुरू करूँ तो वालदैन कहते हैं नहीं ये काम ये ऐसा नहीं है, 4-5 नुकायस उसमें निकाले होते हैं।
0: अच्छा,
1: तो आजादी होनी चाहिए, इंसान एक्सपीरियंस करेगा तो कुछ आगे पता चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: क्या करना है क्या नहीं करना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: रजा भाई आपका शो सुन रहे हैं और बिल्कुल बेताब हैं काल
0: मिलाने के लिए। चले ठीक है जी, ठीक है,
1: हमारे सीनियर कॉलर हैं।
0: ओके जी, हम उनकी भी कॉल अटेंड करते हैं जी। ठीक है, बाकी कोई मौका देते हैं।
1: भाई साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम, और किसी को मेरी बार नागवार गुजरी हो तो फिर जी।
0: ओके जी, एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का एहसन। और इन्होंने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, सो वो ट्रैक भी प्ले करते हैं। और ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि जी जो बाप के साथ हुई होती है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि उस जनरेशनल गैप को जो है ना कम करें और अपने बच्चों के लिए जो है ना आप वो करें। लेकिन फिर मुझे लगता है कि फिर जब तक आप बड़े होंगे ना, तो आपको समझ आने लग जाएगी नहीं माँ बाप ठीक करते हैं। तो आप भी जो है ना चाहते हुए भी जो है ना वैसा नहीं कर पाएंगे, उतना फ्रीडम नहीं दे पाएंगे।
2: हेरिटेज होता है, उसमें से आपने पॉजिटिव चीजों को आगे लेकर जाना होता है और नेगेटिव चीजों को माइनस करना
0: होता है। लेकिन ये जो एहसन ने बात की है ना, ये कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मैं जो ना मैं ऐसी नहीं होंगी, मतलब जैसे मुझे मिला है ना, मुझे इस चीज में अगर ये कहा गया तो मैं ऐसे नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम नहीं, हम कुछ चीजें साथ कैरी कर रहे होते हैं अपने और हमें नहीं पता होता, अनइंटेंशनली कैरी कर रहे होते हैं। और कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगता है कि नहीं इतनी भी आजादी नहीं ठीक है कि आप अपने बच्चों
2: को बाउंड्रीज और लिमिट्स तो ऑब्वियसली
0: हाँ। और अच्छा बुरा बेशक माँ बाप जो है वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं ना उन्होंने दुनिया देखी है। सो दिस इज वेरी ट्रू कि उन्होंने वाकई दुनिया देखी है।
2: बस जनरेशनल ट्रॉमा आगे नहीं जाना चाहिए।
0: हाँ, ट्रॉमा नहीं आगे जाना चाहिए, अच्छी वाली मेमोरीज जानी चाहिए।

0: अरिजीत 7:48 पे मंद ढाल और हम बात कर रहे हैं पॉकेट मनी के हवाले से, और उसके साथ साथ वो जो माँ बाप कहते हैं ना कि पूरी आज़ादी है लेकिन हमारी दिली ख्वाहिशें थी. सो अरिजीत जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं 0421000011 पर. लेट सी जी नेक्स्ट कॉलर कौन होते हैं हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? ऐसे ना करे, मैंने किसी और का नाम ले लू ना, फिर आपने नाराज हो जाए.
1: नहीं, मैं आज आर्य इमरान खान से नाराज हूँ, और आज साइमा जी और आर्य महमूना जी को मैं अपना नाम बताऊंगा.
0: अच्छा चलो ठीक है,
2: चले आप हमें
0: चले, मैं थोड़ी देर ब्रेक लेकर आई हूँ.
2: देखिए हमारे साथ तो आपका पहला इंटरेक्शन है, आप प्लीज जरूर अपना नाम बताइए.
1: आज

0: इन वाली को बता दे जो भी स्टूडियो में मौजूद है,
1: जो भी मौजूद है इनको बता दे।
0: हाँ इनको बता दे।
1: मोहम्मद उस्मान मुगल फ्रॉम शादरा।
2: मोहम्मद उस्मान मुगल, कैसे हैं आप, कैरियर से हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अच्छा क्या कहना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से, कुछ अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप?
1: एक्सपीरियंस तो मेरा कोई नहीं है क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ।
2: अच्छा नहीं, आपके आपके पेरेंट्स ने आपको कोई कभी कुछ कहा हो या कोई आज़ादी की बात हो रही हो तो साथ में अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया हो?
1: आज़ादी जब हम बड़े हुए हैं यानी कि हम खुद कमाना शुरू किया, खुद जॉब की है, तो फिर हमारी आज़ादी जो है ना वो अभी भी वो आज़ादी है जिस तरह हम कहते ना वो आज़ाद हो गया हर चीज़ की, फिर भी कहीं ना कहीं एलिगेशन जो है उसमें रुकावटें बनी रहती हैं कि आप इतनी देर कहाँ रहते हैं, वो नोक टोक जो होती है वो चलती रहती
2: है। इतना तो होना चाहिए ना, वो पता तो चले ना, वही माँ बाप की प्रेजेंस है वो महसूस तो होना।
1: जी जी, तो वो चलती रहती है। बाकी ये जो खाना पीना हो रहा है शुरू से ये मुनासिब करते हैं, ये नहीं कि 10 रुपये का खाना और हम 10,000 का खाएं जाके।
2: ठीक है, तो ये भी बताइए कि आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी जब आप छोटे थे, बचपन में स्कूल जाते थे?
1: स्कूल टाइम जो हमारा था ना वो था 25 पैसे का, 50 पैसे का, वो कागज वाला 1 रुपया चलता था, 2 रुपए चलते थे कागज वाले।
3: सही, सही, किस सन की बात कर रहे हैं आप?
1: ठीक है, तो वो उस वक्त 1 रुपया या 2 रुपए मिल जाए, 5 रुपया हमें ईद पे मिलते थे, ईद वाले।
2: अच्छा सही सही।
3: अच्छा ये किस दौर की बात है, कोई 1960s की या 70s की?
1: ये 1900
3: आप सोच में पड़ गए कि मैं कितना पुराना हूँ।
2: हम आपकी एज बिल्कुल भी गेस नहीं करना चाहते, हम वैसे ही पूछ रहे हैं।
1: देखिए मेरी बात सुनो, एज का कोई इशू नहीं है, मैं ना मैंने कभी एज छुपाई है ना मैंने कभी अपनी सैलरी छुपाई।
2: अच्छा आप हमें दोनों चीजें बता सकते हैं फिर अभी?
1: अभी एट अ टाइम बता सकता हूँ।
3: नहीं नहीं रहने दे,
1: एज है ना मेरी, एज आप काउंट कर ले 1990 की है।
3: नहीं नहीं ना करें,
2: 1990 की पैदाइश है आपकी?
1: जी
3: नहीं नहीं, उस टाइम में कहाँ से, इतना पुराना दौर, आप 25 पैसों पे हैं।
1: एक रुपया ये 2000।
3: हेलो, आई गेस जी कॉल इनकी जो है वो ड्रॉप हो गई, बट कोई बात नहीं जी।
2: वैसे 1-2 रुपए तो कुछ पहले ही
3: ठीक है, लेकिन 25 पैसा पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि 25 पैसा कैसे 1990 में, इतने पुराने नहीं है वैसे आप।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: Sunte rahiye FM 101.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

कैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो। लिखूं तेरी सदाएं पढ़ू सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो की

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी सोचो।

सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सब ये बातें जानते हैं, बूझते हैं और हम सबको पता होता है कि जिंदगानी में कैसे चलना है, लेकिन बाज़ूकात हमें याद दहानी की ज़रूरत पड़ती है। हम सबको पता होता है कि जिंदगानी उतार चढ़ाव का नाम है, लेकिन हमें फिर भी कहीं कभी याद दहानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम उम्र के किसी भी हिस्से में हों, चाहे हम कितने ही समझदार क्यों ना हो जाएं, हमें किसी के कहने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ तुम कहाँ खड़े हो। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे और मौजू भी रखेंगे और मौजू के ऊपर गुफ्तगुशनीद भी होगी, कुछ आपकी बातें भी होंगी, कुछ मेरी बातें भी होंगी और कुछ गीत भी होंगे, कुछ संगीत भी होगा और आपके दिल की बातें भी होंगी। 0551-1100-101 हमारे राबते का नंबर हुआ चाहता है और 920-8040 ये भी राबते का नंबर हुआ चाहता है। और इसके साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो पोस्ट लग चुकी है, आप कमेंट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर जाके, और फेसबुक पे जो पेज है उसका नाम है FM 101 चैनल पाकिस्तान, उसके ऊपर एक पोस्ट लग चुकी है, उस पोस्ट के नीचे आपने कमेंट करना है और अपनी राय का, अपनी बातों का इजहार मेरे साथ आपने करना है।

दो घंटे का साथ आपके साथ रहेगा, अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो शुरू हुआ है ना। मतलब जैसे जैसे उम्र ढलती है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, फिर वक्त लगता है ना रिस्पॉन्ड करने में, रिएक्ट करने में। और अगर हमारी उम्र कम होती है, जज्बात अपने भरपूर जोबन पे होते हैं, तो फिर हम रिएक्ट बड़ी जल्दी करते हैं, बाजुकत फायदा होता है, फिर तभी कहते हैं ना जवान खून को शामिल किया जाए। कभी कभार हम रिएक्ट बड़ा स्लो करते हैं, और तब करते हैं जब उम्र हो जाती है, जब तजुर्बा हो जाता है, और तजुर्बा कहता है कि यार रिएक्ट जो है ना वो जल्दी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, कभी तो नुकसान हो जाता है, देरी हो जाती है। और फिर उस्ताद कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए, याद आ जाती है ये बात। लेकिन कभी कभार चोट जो है वो बड़ी ठहर के लगती है, ठमर के लगती है, और सही जगह पे लगती है, फायदा हो जाता है।

रहा था ना कि अपने अंदर एक शोर बरपा है, सभी के दिलों में कुछ शोर बरपा होता है, जिंदगी कभी ऊपर और कभी नीचे, लेकिन जिंदगी जहां भी हो, जिस भी मोड़ के ऊपर हो, हमें क्या करना है, तसल्ली रखनी है। जब ऊपर हो तब भी तसल्ली रखनी है, जमीन के साथ पांव को जोड़े रखना है। और जब नीचे आए तो तब भी अपनी औकात तो अपने आप को पहचाने रखना है। जिंदगी में अक्सर हम कोई बात इसलिए नहीं कहते कि यार छोड़ो क्या बहस करना, या चलो बाद में देख लेंगे, चलो यार रहन दो, क्या बात करूंगा इसके ऊपर, चाहे वो किसी के रिश्ते में, किसी के साथ, किसी के रिश्ते में कोई गिला हो किसी का किसी के साथ, या कोई अधूरा एहसास हो किसी के साथ, या अपना

किसी ख्वाब की बात हो, लेकिन वक्त के साथ वही छोटी सी खामोशी ना अपने अंदर अंदर ही अंदर इंसान अपनी इतनी गहराई में ले जाता है और इतनी गहरी हो जाती है कि दिन रिश्तों में और हमारी अपनी जात के लिए वो दिन बड़े भारी होने लग जाते हैं। फिर वो एक ऐसा मोड़ बन जाती है हमारे लिए वो खामोशी के, हमें लगता है कि यार क्यों नहीं कहा था, क्यों नहीं बोला था मैं, या क्यों नहीं उस वक्त मैंने रिएक्ट किया था। जब कभी हम आंखें मूंदे लेटे होते हैं या हम माजी के दरीचों में जाते हैं तो हम कभी सोच रहे होते हैं कि यार क्यों नहीं कहा था इस वक्त, क्यों बोला नहीं था मैं, काश के बोलना चाहिए था, उस वक्त मैं बोल पड़ता तो ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता।

कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यार क्यों बोला था मैं, क्यों कहा था मैंने, क्यों बोला था मैं काश के वहां खामोश रह जाता, मैं खामोशी इख्तियार कर लेता। मेरे बोलने ने वो वबाल बरपा किया है कि जिसको आज तक मैं संभाल नहीं पा रहा। काश के मैं चुप रहता, मेरे मुंह को लगाम क्यों नहीं लगती। दोनों चीजें बड़ी दर्दनाक होती हैं, बोल पढ़ना भी दर्दनाक होता है, ना बोलना भी दर्दनाक होता है।

0: कहता है कि बात टाली ना जाएगी, बात टाली ना जाएगी, तुमसे भी बात ना संभाली जाएगी, इतनी खामोशी से गुजर जाओ यहाँ से कि परिंदे भी परों की ना सदा पैदा करें। कौन सी बात कहाँ किस तरह कही जाती है, ये करीना हो तो हर बात सुनी जाती है भाई। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, खामोशी बोल पड़ती है जहाँ अल्फाज मर जाएं। वो एक हर्फ तमन्ना था जो होंठों पर ही जम गया। हमेशा देर कर देता हूँ मैं
1: उतर
0: हर काम करने में, जरूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में, उसे आवाज देने में, उसे वापस बुलाने में, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और भी कुछ हो, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।

का क्या है, वक्त तो गुजर ही जाएगा, अगर मैं खामोश रहा तब भी गुजर जाएगा, अगर मैं भूल पड़ा तब भी गुजर जाएगा, लेकिन जो आने वाला वक्त है ना उस पे ये बड़ा गहरा असर डालेगा। अगर मैं बोल पड़ता तो शायद आज ऐसा ना होता, अगर मैं खामोश रहता तो शायद आज ऐसा ना होता। कभी कभार सामने बैठे वालों की आंखें आपको कहती हैं। कभी सामने बैठे एक शख्स की आंखों में आप झांकें तो वो आंखें कह रही होती हैं, खामोश हो क्यों, खामोश हो क्यों, दादे जफा क्यों नहीं देते, बिस्मिल हो तो बिस्मिल की अदा क्यों नहीं देते। आजादी इजहार तमन्ना की सजा दो, खामोश रहे कौन बका क्यों नहीं देते। और अपने अंदर एक तूफान बरपा होता है और वो कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये खामोशी जो अब छाई हुई है ये एक तूफान की लाई हुई है। दिल मेरा भी चाहता है कि मैं बोलूं, अंदर मेरा भी कहता है कि बोलो कि अब भी वक्त है, बोलो कि सच जिंदा है,

बोलो जो कुछ कहना है वरना खामोशी खा जाएगी। बात जो होंठों पे आई है वो कहनी है तुझे। तो बात जो होंठों पे आई है वो कहनी थी तुझे। अब वो बात अगर मैं कहूं तुमको तो दिल घटने लगता है। कैसे कहूं मैं तुम्हें वो बात जो मैं कहना तुम्हें चाहता हूं लेकिन लब मेरा साथ नहीं देते। फैज अहमद फैज कहते हैं, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म और जबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है बोल ले, अरे बोल ले। फैज कहते हैं, हमने जो कुछ कहा था वो तो होके रहा, तुमने जो कुछ ना कहा वो भी तो सुनना था हमें। तेरी खामोशी चीख चीख के बोल रही है कि तू कुछ कहना चाहता है। लेकिन हासिली गुफ्तगू ये है कि जी आपको बाज़ुकात कुछ चीज़ों पे खामोश रहना होता है और बाज़ुकात कुछ चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना होता है, और ये बड़ा एक अहम फैसला होता है कि कहाँ हमने बोलना है कहाँ हमने चुप रहना है। और ये जो छोटा सा फैसला है ना, कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, वो फिर उसके बाद एक और फैसला है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ये आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में बड़ा अहम किरदार अदा करता है।

छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें कि जो हमने कहनी है, जो हमने नहीं कहनी, जो हमने कितनी कहनी है कितनी नहीं कहनी, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव में बड़ा आम किरदार अदा करता है। और कभी आपको मौका मिलता है तो आपको अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए, और कभी आपको मौका मिले तो आपको कभी कभार चुप भी रहना चाहिए। तो ये जो फैसला है ना, चुप रहने वाला या बोल पड़ने वाला, बड़ा आम होता है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछना है कि आप क्या हैं, बड़ बोले हैं, बढ़ के आगे बात कर लेते हैं, आप को पता है कि आपने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, आपको नहीं भी पता तब भी आप बात कर डालते हैं, या आप हर जगह खामोश रहते हैं, बस आंखें बोलती हैं, या आंखें भी अगर नहीं बोलती तो आपके हाथों की उंगलियां और आपके हाथों का मसल ना बोल रहा होता है, आपकी बॉडी बोल रही होती है कि कुछ कहना चाहते हैं आप, लेकिन अंदर ही अंदर उसको रखे रखते हैं और उसके साथ लड़ते रहते हैं। तो क्या पर्सनालिटी रखते हैं आप, बोलने वाली या चुप रहने वाली, आज के प्रोग्राम में आप मुझे बताएंगे। 12:24 हैं, केबी मुझे कहते हैं 22 सितंबर है 2026 है। क्या कभी आपने उसे कहा कि एक बार चले आओ?

ओके जनाब, फेसबुक पे मेरे साथ माज अली हैं जी, बटबेर से, पेशावर बटबेर से प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच माज अली। कोमल ईमान है मेरे साथ जी, यूएसए से प्रोग्राम सुन रही हैं और कह रही हैं जी वेलकम टू द प्रोग्राम, और हेयर कट जो है वो आपका अच्छा लगा है। थैंक यू कोमल, बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी है मेरे साथ शाहदरा से जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। फरा अफजल है मेरे साथ, कहती हैं जी अच्छी स्टार्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फरा अफजल। मोहम्मद सदीक दार हैं जी नीलम वैली से, और ठंडा पानी जम्मू आज़ाद कश्मीर से जी प्रोग्राम सुन रहे हैं। तमाम सुनने वालों को सलाम कह रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। मोहम्मद सदीक दार आपको शुक्रिया। बख्तावर ज्ञानी मेरे साथ हैं जी, सलाम कह रही हैं और कह रही हैं प्रोग्राम अच्छा है जी। अभी मोहम्मद मेरे साथ हैं जी, कहते हैं बेटा जी गाना लगाने का, मेरे पसंद का गाना लगाने का शुक्रिया। यार वैसे तो आजकल गाने में बड़े अच्छे चला रहा हूँ, है ना, कोई कहता क्यों नहीं है भाई कि गाने आजकल अच्छे चल रहे हैं। यार कहा करूँ ना, गाने अच्छे चलते हैं।

0: हाँ जी 920-25-40 जो है वो आप मिला सकते हैं जी, और 0516-920-25-40 आप मिला सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, 0516-111-00-101 मिला सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कौन मेरे साथ शामिल हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा बात कर रही हैं जी। जी फरा, कैसी हैं आप?
1: ठीक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: आज पूरा दिन ना मैंने आपके इलाके में गुजारा है। वैसे
1: बताया क्यों नहीं भाई?
0: इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर।
1: वाह वाह वाह, बताते तो।
0: हाँ मैंने बताया था, वो जैसे ही अंदर एंटर हुआ था बैरियल पे, वो आपके जो खड़े होते हैं ना गार्ड, उनको मैंने बताया था। मैंने कहा ऐलान करते जाना, जो भी यहाँ से गुजरे उसको बताना यहाँ पे आज के भी आया हुआ है, के भी आया हुआ है। तो आपको नहीं बताया उन्होंने?
1: नहीं बताया, मुझे बताते तो बहन फूलों का हार लेके पहुंची होती।
0: उनको मैंने आप पौंकने वाला वो भी बताया, तो वो पौं पौं करने वाला वो नहीं होता, वो माइक्रोफोन, उसमें वो कह रहे थे के भी आया हुआ है आज, के भी आया हुआ, पकड़ो इन्हें, फड़ो इन्हें।
1: तो जब आया करें बताया करें।
0: तो मैं कह जो रहा हूँ, आप बताने का यही तरीका था, मैंने बता दिया था।
1: पता नहीं, मुझे नहीं पता।
0: हाँ फिर गोल वाली मस्जिद, वो जो गोल वाली मस्जिद है ना, उसमें मैंने फिर ऐलान भी करवाया था।
1: नहीं सुना मैंने।
0: नहीं सुना आपने? चिट्टे भी बांटी थी मैंने, वैसे मैं चिट्टे रखी हुई थी गाड़ी में से ना, इधर उधर बांटता जा रहा था, आज मैं आया हुआ हूँ, आज मैं आया हुआ। फिर भी आपको नहीं पता चला? फिर भी आपको पता नहीं चला?
1: किसने बताया नहीं कि खुरम भाई आ रहे हैं?
0: हाँ वो जो आपके मोहल्ले वाली है ना, वो साथ वाली जो आंटी है,
1: हाँ वो मुझे कह रही थी कोई आया बंदा, उसने बताया नहीं ना।
0: हाँ उनके घर के बाहर जाके मैंने तूफड़ी भी दी थी, और उनको मैंने कहा था कि बताना है साथ फरा को कि मैं आया हूँ।
1: अच्छा।
0: धुआं आपको नजर नहीं आया? धुआं नजर नहीं आया था आपको?
1: नजर आता तो देखती ना।
0: अच्छा चले। अल्लाह आपको सेहत दे। तो फरा बताइए क्या कहने आई है, खामोश रहती हैं या बोल पड़ती हैं?
1: क्या कहती
0: हो? आपने टॉपिक नहीं सुना आज के प्रोग्राम का लगता
1: है। अभी मैंने आपकी आवाज सुनी है, मैं अंदर आई और रेडी कर रहा था, मैंने कहा ये तो भाई आए हैं, मैं इनको कॉल पहले करूं।
0: चलो वेरी गुड जी,
1: बता दे बता दे टॉपिक है।
0: नहीं बस सब रहने दे। अच्छा चले बता देता हूँ। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप बोल पड़ती हैं या खामोश रहती हैं? कभी आपको मौका मिले तो किसी महफिल में बैठी हो तो आप सोचती हैं कि यार चुप हो जाना चाहिए, या आप बोल पड़ती हैं, जो आपके दिल में आता आप कह डालती हैं?
1: नहीं मैं अगर देखूं कि ये बात मुनासिब नहीं है, यहाँ बोलना चाहिए, वहाँ मैं बोलती हूँ जरूर। अगला बेशक जो मर्जी।
0: तो जिंदगी में आपके अभी अभी रिसेंटली ऐसा कोई वाकया हुआ हो जिसमें आपको लगा हो यार मुझे बोलना नहीं चाहिए था, यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ, कोई ऐसी बात है आपकी, याद है आपको?
1: हाँ जी, अभी एक शादी थी, मैं वहाँ गई हूँ, तो वहाँ एक रस्म थी जो बद रस्म है। जब दुल्हन को लेके जा रहे थे तो वो छन्नी होती ना, आटा जिसे छनते हैं, उस छन्नी में हमने गंदम डाली, और उसको ना यानी कि मेरी फैमिली में से आउट ऑफ फैमिली में कहीं गई थी, उनने क्या किया कि वो दुल्हन जब दरवाजे से बाहर निकल रही थी ना, वो उसके आगे करके वो गंदम लेके इतने लोग थे वो फेंक रही थी। मैंने कहा ये क्या, ये तो पाँव में आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चीज है, मुझे तो नजर नहीं आता। कहते हैं ये वो ना दुल्हन गंदम फेंक रही है पीछे के, कहती है मेरा घर रिजक जो ना घर में ही रह जाए। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये कितनी आप क्या अनोखी बातें कर रहे हो, ये पाँव में आ रही सारी गंदम, देखो कितने लोग हैं, कितने यहाँ बराती थे, कितने सारी गंदम सबके पाँव में आ रही है। मैंने ऊंची ऊंची वहां सब खामोश हो गई। मैंने कहा ये गलत तरीका है, अल्लाह ताला नाराज होता है, ये कौन सी किस कहाँ से कौन सी आप इसमें लेके यहाँ आ गए हो, आपको अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है? घर से निकाली बेटी, दुआओं से निकाले इसको, अल्लाह ताला अपना इसका घर आबाद रहे, आगे जाके इसके लिए बहुत ज्यादा आसानियां हो, कोई अपने सास ससुर की इज्जत करे। मैंने फिर बहुत बड़ा लेक्चर वहां चढ़ा। अच्छा, तो याद रखोगे?
0: फिर आप रात को सोई तो सोते हुए आपको ख्याल है यार ज्यादा बोल गई हूँ, आज बोलना नहीं चाहिए?
1: सोते नहीं, मैंने खुश हुई थी, मैंने कहा कह दिया, जिसने सुन लिया अमल किया तो ठीक है, अगर मैं किसी की बात पे अमल करूंगी तो मेरे भी कोई करेगा। हाँ। मैं नहीं करूँगा।
0: चलो चलो ठीक है फरा, थैंक यू फॉर
1: कॉलिंग।
0: ये होती है जी फरा, फरा कहती है जी कि मैं क्या डालती हूँ, और बर्मला टका के कह देती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर है। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे, बहुत दूर से आ रही
2: है जी।
0: जी तो आपकी क्या
2: आवाज गुड आ रही है जी?
0: बिल्कुल गुड आ रही है जी। आप कौन साहब बात कर रहे हैं? देखें आपकी आवाज फिर कट गई, आप क्या ये क्या कर रहे हैं साथ, आप मोबाइल कहीं और रखा हुआ है, कहीं और आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं?
2: अब आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है?
0: जी जी अभी आ रही है।
2: अच्छा मैं कह रहा हूँ कभी कभी आ रही हूँ अपनी पे।
0: नहीं समझ आ रही आपकी आवाज ना कट जाती है, आई थिंक सो आपने हैंड फ्री लगाए, मैं हैंड फ्री उतार के बात की।
2: नहीं नहीं सर मेरी आवाज आ रही है अब?
0: आ रही है आपकी आवाज, लेकिन जब आप जैसे ही बात करना शुरू करते हैं ना आवाज गायब हो जाती है।
2: मैं कह रहा हूँ मैं अपनी दुनिया में कभी कभी आरजे हूँ।
0: अपनी दुनिया में कभी कभी आरजे?
2: जी जी।
0: समझ नहीं आई मुझे, आप एक्सप्लेन करेंगे?
2: जी जी क्या कह रहे हैं?
0: एक्सप्लेन करेंगे आप इसको, मुझे समझ नहीं आई।
2: आप सुन रहे हैं इस रात के पहर में मुझे 101 के लाइव स्टूडियो से इस्लामाबाद।
0: मैंने पूछा आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मैंने पूछा आपसे।
2: मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ सर।
0: अच्छा तो ये वाली जो बात आपने की कभी कभी अपनी दुनिया में आरजे हूँ, ये क्या बात है, इसके इसके पीछे क्या बात थी, क्या स्टोरी थी, वो
2: बात है। मुझे शौक है आरजे बनने का।
0: अच्छा आपको शौक है आरजे बनने का?
2: जी जी।
0: ओके तो फिर क्या करते हैं आप इस शौक को पूरा करने के लिए?
2: अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड अपनी आवाज करके सुनता
0: रहता। अरे वाह वाह वाह वाह कमाल कमाल। तो क्या क्या बातें करते हैं आप अपने साथ? देखिये आवाज गई फिर आपकी, आप बोल ही नहीं सही पा रहे, आप कैसे आरजे बनेंगे? आपको सबसे पहले अच्छा एक मजे की बात बताऊं आपको, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे ना स्टार्ट में, जब मैं आरजे बना था तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सबसे पहला उसूल जो हमें बताया गया था ना, तो वो उन्होंने हमें बताया था कि माइक से आपने अपना डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है। तो ये टेक्निकली जो है ना, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है 10 दिन की हमें टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई थी, कि सिर्फ इक्विपमेंट समझने के लिए कि यार ये आपने कंसोल कैसे मैनेज करना है, आपने माइक्स कैसे मैनेज करने हैं, आपने कंप्यूटर्स कैसे मैनेज करने हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मीडियम है ना उसके साथ आपकी हावनो दोस्ती हो, ठीक है। और अगर आप आरजे बनना चाहते हैं ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग आरजे बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं अगर आपका शौक है। नहीं तो ये भी तो टॉपिक ही है ना, आप टॉपिक लग गए इसी पे बात करेंगे, ठीक है। नाम बताया क्या आपने?
2: मेरा नाम शहरयार है।
0: शहरयार, तो शहरयार आप अपना आर्मी के अंदर रह के भी ना ये कर सकते हैं, आर्मी के बहुत सारे रेडियोज हैं और वहाँ बहुत सारे हमारे फौजी भाई प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे फौजी भाई आर्जे हैं।
2: ओके सर काइंडली मैं बस
0: क्या करूँ, क्या बस मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, सब कुछ हो सकता है दुनिया में मेरे भाई, सिर्फ आग होनी चाहिए, आग
2: आग है सर
0: है, बस उसको जलाए रखो, उसको अलाव बनाओ, अलाव बनाओ ताकि इर्द गिर्द लोगों को नजर आए कि यार शहरयार भी है कहीं।
2: सर आपने बात कही कि बोलते हो नहीं बोलते, किस तरह बोलते हो? मैं बोल पड़ता हूँ सर।
0: बोल पड़ते हो?
2: कुछ कोई भी हो बंदा मैं बोल पड़ता हूँ।
0: चलो सोच समझ के बोला करो,
2: वो किसी नजरिए से बोलता
0: हूँ। नहीं ये जरूरी है,
2: पहले मैं सुनता रहता हूँ उसके फिर मौके भी नहीं को बोलता हूँ ये करना चाहिए ये नहीं होना चाहिए।
0: नहीं ये तो मैं नहीं मानूंगा कि आप मौके की मुनासिबत से बात करते हैं, आप अपने दिल की बात करते हैं। देखें गई आवाज, फिर गई आपकी आवाज।
2: मैं गलत क्या चीज़ें सही क्या चीज़ें वो।
0: अच्छा अच्छा शहरयार मुझे बताओ ये क्या क्या वजह है, ये आवाज कहाँ गायब हो जाती है, क्या करते हो?
2: असल में काम चल रहा है ना पेशावर रोड पे।
0: अच्छा
2: इस वजह से काम की वजह से सिग्नल डाउन होते हैं।
0: अच्छा सिग्नल अपडाउन, लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ शहरयार आवाज नहीं आ रही एकदम सिग्नल आ जाते हैं, ये क्या चक्कर है, सिग्नल सुन रहे होते हैं?
2: नहीं असल में मैं 2-in-1 हूँ ना इसलिए।
0: 2-in-1 है क्या मतलब 2-in-1?
1: मैं असल में सारी बातें करती हूँ ना आपको समझ नहीं आ रही।
0: बिल्कुल भी, बहुत बुरी एक्टिंग है, लिटरली जरा भी नहीं लगता कि आप लड़की की आवाज निकाल सकते हैं। मत कोशिश किया करें, आइंदा कभी नहीं करनी, ठीक है।
2: अच्छा,
0: ये आपकी गलत फहमी है कि आप लड़की की आवाज निकाल सकते हैं और इजी लोड इकट्ठा कर सकते हैं।
2: एक रिक्वेस्ट थी, आप माशाल्लाह सारे चीजें अच्छी चला रहे हैं, एक कलाम है इनानसुल्लाह
0: आ गया कलाम दे। चलो ठीक है मैं कलाम चलाना थोड़ा, बाय बाय।
3: मन तेरा लूटा।
0: अच्छा बोल पड़ता है शहरयार ना, लेकिन सोच समझ के नहीं बोलता, कैसे जज किया मैंने? ओके जी नेक्स्ट कॉलर से पूछते हैं कि वो क्या बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी,
4: आप कैसे हैं? ठीक है
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप मेरे भाई कैसे हैं, क्या नाम है आपका?
4: नहीं भाई नहीं हूँ, बहन हूँ।
0: अच्छा बहन है, वेरी नाइस।
4: हाँ जी।
0: बहन कहाँ से हैं आप?
4: नरवाद से नसीम बात कर रही हूँ।
0: नसीम, तो नसीम क्या करती हैं आप?
4: मैं बस घर में घरदारी करती हूँ।
0: घरदारी करती हैं, वेरी नाइस। तो नसीम बताइए कि बर्मला बोल जाती हैं या दिल में बात रखती हैं, चुप रहती हैं, लगता नहीं।
1: मेरा ऐसा है ना कि कभी कभी सही बोल जाती हूँ और कभी कभी जहाँ ना बोलना हो ना वहाँ बोल पड़ती हूँ, जहाँ बोलना हो वहाँ चुप रहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने यहाँ ये बात करनी थी क्यों नहीं की है, बस ऐसा होता है मेरे साथ।
0: ओके, ये अक्सर सभी
1: भी हूँ मगर किसी तरह सही बोल जाती हूँ, किसी तरह बहुत गलत बोल जाती हूँ। सब कहते हैं चली खामो, जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलती नहीं है, जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ बोल पड़ती है।
0: फिर मेरी बहन मासूम है ना बहुत,
1: बस गुजारा कर लिया है आपको।
0: अच्छा,
1: काफी उम्र हो गई है।
0: अच्छा,
1: 60 साल के होने वाले हैं तो।
0: अरे माशाल्लाह,
1: वैसे गुजरी गुजर गई।
0: चलें, बस अच्छी बात है, अच्छी गुजरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी अच्छी गुजरी।
1: बहुत अच्छी गुजरी है।
0: वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। चलें, अच्छा पता है एक मजे की बात आपको बताऊं, जो जो लोग मासूम होते हैं ना, जिनको ज्यादा चलाकियां या तुरशियां नहीं आ रही होती, उनकी उंगली वैसे ही अल्लाह पकड़ लेता है। अल्लाह कहता है यार ये मेरा मासूम बंदा है, बस इसको मैंने चलाना है। और जो होता है ना तेज तरार शेरियार की तरह, अल्लाह कहता है यार चलो भाई ये तो तेज तरार है, अपने आप को संभाल लेगा। तो अल्लाह फिर कहता है तुम खुद ही चलाओ अपने आप।
1: बस दफा बस मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बात नहीं कर सकती हूँ आगे से, किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ। मुझे भी कुछ कहे ना कोई तो मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। घर में आके फिर सोचती हूँ या बाद में सोचती हूँ, घर वाले भी कुछ कहे तो बाद में सोचती हूँ इस चीज का ये जवाब देना चाहिए था।
0: अरे वाह, अरे वाह,
1: फिर खामोश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ वक्त गुजर के आप क्या फायदा जवाब देने का।
0: चले अल्लाह आपको ऐसा ही रखे, पता है इसकी वजह से आपके आप पे बड़ी बहारें हैं, आपकी जिंदगी पे बड़ी बहारें हैं।
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
0: है ना इसकी वजह से।
1: हाँ जी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा।
0: आप जरा थोड़ी देर ना, थोड़ी देर के लिए आप, अपने नाम क्या बताया आपने मुझे? नसीम।
1: नसीम
0: जी। अच्छा अच्छा नसीम साहिबा, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचे ना कि अगर आप तेज तरार होती और आपके मियाँ भी माशाल्लाह, आपके मियाँ भी माशाल्लाह तेज तरार हैं, तो वो अगर
1: हाँ। वो भी इतने तेज नहीं है।
0: अच्छा, वो भी मासूम है, सादे से हैं।
1: जी, वो बहुत ज्यादा मासूम है।
0: अरे वाह वाह, दोनों की फिर खूब जमी है।
1: हाँ जी, उनकी जिदात उनके भाई खास होते हैं, वक्त कहते हैं आप इतने शियार बनते हैं, कहते हैं नहीं मैं बड़ा शियार हूँ, सारी देश की जमीने खा गए हैं तो आप बैठे ही रहे हैं घर में कागज लेके, कहते हैं नहीं कोई भी नहीं मेरी बेच सकता, मेरे पास सबूत है।
0: अल्लाह ताला ने उनके लिए आगे एक बाग रखा हुआ है, उसमें सारी जदातें हैं इकट्ठी, सारी उनकी भी इनको मिलेंगी
1: इंशाल्लाह। वो बहुत सारे लोग के आदमी है, बस मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं।
0: चलें चलें, उनसे उनसे कहिएगा मेरे लिए दुआ करें, और आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है, पता है आप लोगों की दुआएं बड़ी लगती
1: हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ।
0: अच्छा, मेरे लिए खुसूसी करनी है आपने वैसे?
1: ठीक है ठीक है, अल्लाह ताला आपको सुकून दे जिंदगी में,
0: मुझे
1: थोड़ी सी बीमारी है यूरोप के सर की, मेरे आस पाओ जो है जरा सही काम नहीं करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से शफा दें।
0: आमीन आमीन। नसीम साहिबा, आपको अल्लाह ताला शफा अता करें, और थोड़ा वॉक किया करें, ठीक है? वॉक से आप बेहतर होंगी।
1: ठीक है, बस ये मेरी बहुत बड़ी जो है ना गलती है कि मैं वॉक नहीं करती।
0: नहीं, बस आपने वॉक करनी है, यूरिक एसिड एकदम भागेगा ऐसे, ऐसे जैसे आपने ना बर्फ के ऊपर उबला हुआ पानी डाल दिया, ऐसे यूरिक एसिड भागेगा।
1: ठीक हो,
0: वॉक करना है आपने, एक्सरसाइज करनी है।
1: ठीक हो,
0: ओके जी, बाय बाय, ख्याल रखें अपना। ओके जनाब, सुनाते हैं आपको जी एक गाना, वापस आते हैं। मुझे आज के भी कहते हैं मम इंटरनेशनल, आप सुन रहे हैं इस्लामाबाद के स्टूडियो से ब्राहरा, सुन रहा हूं मैं आपको और सुना रहा हूं मैं आपको। 12:44 हुए चाहते हैं, 22 सितंबर है, 2026 है। एक गाना सुनाता हूं, वापस आता हूं, आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, फेसबुक के फीडबैक को भी हिस्सा बनाऊंगा। पूछ आपसे ये रहा हूं कि खामोश रहते हैं या बोल पड़ते हैं, कह डालते हैं या दिल में रखते हैं? अगर मैं आपको ये वाला सुनाऊं तो

0: हाँ जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफा फिर जी खुश आमदीद प्रोग्राम में वन वन इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं केबी के साथ। और खामोशी और बोलने के ऊपर बात हो रही है, और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खामोश हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं प्रोग्राम में ना, हम आरजेज भी सोचते हैं यार कि कुछ लोग आया करते थे, बहुत बोला करते थे, हाय कहा करते थे, और फिर वो गायब हो गए, और फिर अचानक से वो आ जाते हैं। तो अभी मैं ऑफ द एयर कॉल्स ले रहा था, तो उनमें एक ना वो शख्सियत भी निकली है कि जो काफ़ी अरसे से गायब थी। मैंने कहा रुक जा, तो मैं लाइव लेके चलना। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: तो नाम बताइए अपना, आप
1: कौन सा वाला बताओ, अनिला के विशाल?
0: अच्छा, अनिला से बड़ा मसला हो रहा है आपको?
1: नहीं, मुझे मेरी तो वो बहन,
0: हाँ अच्छा, बार बार अनिला अनिला अनिला अनिला कह रही हो। वैसे वो इसलिए कह रही हो कि अनिला तो डेली आती है, छाई नहीं है आजकल, सारे लोग अनिला की बातें कर रहे हैं।
1: उनके बगैर तो मजा ही नहीं आता, उनकी कॉल ना आए तो लगता है कि प्रोग्राम अधूरा सा रह गया।
0: हाँ, तो विशाल जब नहीं आएगी तो फिर कुर्सी तो अनिला ने संभाल ली ना। फिर
1: कुछ भी आज भी ना आए, कुछ भी कर तो कुछ लोग होते ना जिनके लिए चुप रहना ही अच्छा होता है, वो उनमें से है कि वो अगर ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: अनिला ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: अनिला देख लो, देख लो, ये चुप कराना चाहती है आपको।
1: नहीं, उनको तो सुनने के लिए
0: नहीं, नहीं, अभी आपने कहा ना, खुद कहा कि भाई कुछ लोगों को खामोश रहना चाहिए।
1: ना ना ना, मैंने कहा अनिला को तो सुनने के लिए होते।
0: अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि बस अनिला बोलती है तो मेरे बोलने की जरूरत नहीं रहती और मैं चुप रहती हूँ, ये कहना चाहती
1: हूँ? कुछ लोग मेरे वर्ग के अंदर चुप ही रहते चलता है।

0: अच्छा,
1: अच्छा तो मतलब अनिला की शोहरत से आप जो है वो मरूब हो गई हैं, आप कहती हैं बस और नीला आ गई मेरी जगह मेरी। हाँ मुतासर, वही मैं कह रहा मरूब हो गई आप, उनकी शोहरत से मरूब हो गई आप, है ना,
0: उनकी शोहरत से, उनकी बातों से।
1: अच्छा
0: मजे की होती है सच्ची से, मतलब के एकदम से ऐसा नहीं लगता कि प्रोग्राम जी जगह आ जाते थे।
1: अच्छा चलो अभी बताओ सच सच कि आप कहाँ गायब थी, स्टोरी बताइए किधर गायब थी आप और इतने से बात आई।
0: मैं बस इधर उधर ही थी और नाला पर वापस पहुंच गई, और वापस पहुंच के वापस प्रोग्राम में आ जाना, और एकदम से मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने मंडे को आपकी आवाज सुनी, और मैंने कहा अच्छा।
1: वैसे कौन से दिन होता है मेरा प्रोग्राम?
0: तो
1: नहीं वैसे
0: तो क्या मेरी आवाज भी सुन सोचा
1: नहीं, नहीं वैसे तो वैसे मिसाल बताओ मेरा, वैसे किस दिन होता है प्रोग्राम याद है आपको?
0: आपको तो पता नहीं वो कौन कौन से दिन, मुझे तो ऐसा नहीं याद की गल है, अभी भी मेरी हले याददाश्त खराब नहीं
1: है। इसका मतलब है कि आप एक साल से गायब हैं तकरीबन, है ना?
0: मैं नहीं, एक साल से नहीं, अराउंड 6 months से।
1: अच्छा
0: मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे बात रेडियो सुनना, रेडियो के साथ जुड़ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आपका टॉपिक भी बड़ा मजे का, किसी बोलने वाले से ऐसे काम गुड लिस्टनर, मुझे लगता है कि मैं खामोशी से ज्यादा अच्छा सुनती हूँ, और बोलने की बातों में कभी ना ही बोल दी थे चक्कर।
1: फिर आपकी हाय निकल जाती है, हाय ना ही बोल दी थे चंगल,
0: हाय हाय ना ही बोल दी थे चंगल, बोलना जड़ा ना कभी कभी ला जाना। तो कुछ लोगों का होता बोलने से, कुछ लोगों का बड़ा फायदा हो जाता है, तो उनका बोलना अच्छा होता है, और कुछ लोगों का सुनना बड़ा अच्छा होता है। तो मेरा दिल कर रहा था कि बहुत से लोगों को सुना जाए और खामोशी में सुना जाए,
1: सही,
0: और उससे बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है।
1: सही, चुप रह के सुनने में
0: चुप रह के, और जब आप कह रहे थे ना कि बोल के दबा जाते, तो मैं बहुत बस ये सोच ही रही थी कि काश कि आप उसको प्ले कर दे, क्या खूबसूरत थी ना सानी के बाद।
1: कौन सा? और बोल के लब आजाद है मेरे,
0: बोल के लब आजाद है ये।
1: अच्छा
0: तो वो बड़ा खूबसूरत कलाम है। तो
1: किसकी आवाज में
0: होता, लेकिन
1: किसकी आवाज में, किसकी आवाज में,
0: सॉरी
1: किसकी आवाज में है बोल के लब आजाद है?
0: टीना सानी की आवाज में। ए तो पूछने वाली गल नहीं, नहीं।
1: आए, आए,
0: वो भी तुसी पूछ रहे हो,
1: बस तुसा कह देता तो फिर मैं ला देता ए सुनो।
0: वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम।
1: हाँ।
0: और क्या क्या अच्छे बोल।
1: चले ठीक है मिशाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आती रहा करो, गायब ना हुआ करो, इधर ही रहा करो, ठीक है? चलो टीना सानी की आवाज सुनिए, बोल के लब आजाद है मेरे।

सच बात पे मिलती है सजा, सबको पता है, फिर भी जो ना बोले वो मुनाफिक ही रहेगा। हमने सोचा था खामोश रहेंगे, लेकिन बात बढ़ जाएगी इतनी, ये खबर थी भी तो ना थी।

इसी बात का जवाब जॉन एलिया ऐसे देते हैं, होंठ तो सी लिए हमने मगर आंखों का क्या करें, ये जो बोल पड़ती है सफाइयां देनी पड़ती हैं। होंठ तो सी लिए हमने मगर आंखों का क्या करें, ये जो बोल पड़ती हैं सफाइयां तो देनी पड़ती हैं। बात यह है कि अब कोई बात नहीं, वरना कहने को बहुत कुछ था मेरे पास।

पास ही खड़ी परवीन शाकिर बोल पड़ती हैं, मैं तो चुप थी मगर उसने मेरी आंखों में पढ़ा एक सच जो मेरी जात में बिखरा हुआ था। वो बात जो होंठों पे आके रुक जाए वही तो सारा दिन दिल पे बोझ रहती है। वो बात जो होंठों पे आके रुक जाए वही तो सारा दिन दिल पर बोझ रहती है।

वो जिनके होंठों पे हंसी और दिल में दर्द होता है, वो जब बोलते हैं तो हर लफ्ज़ नायाब होता है। यूं ही नहीं खामोश बैठे हैं हम, कुछ बातें ऐसी हैं जो कही नहीं जाती।

0: सारे सन्नाटे में कोई खड़ा हो और किसी ने कुछ कहना हो और सिर्फ उसी ने कहना हो और आपके दिल में बहुत कुछ हो और आप बोलना चाहते हो लेकिन बात आपने ना करनी हो, सामने खड़े उस शख्स ने करनी हो जिसने सन्नाटे को तोड़ना हो, तो फिर आपका दिल कहता है कि अरे बोल बोल के लब आजाद है तेरे। दिल का बोझ तो तभी हल्का होता है ना जब बंद कवाड़ खुले और कोई बोल पड़े। चुप रहने से ताल्लुक तो बच जाता है मगर अंदर का इंसान कभी कभार मर जाता है। आप ना बोलें तो सबको बुरा लगता है, आप ना बोलें तो सबको बुरा लगता है और अगर आप बोल पड़े तो फिर भी सबको बुरा लगता है।
1: बोल, जो कुछ
0: तो बोल के सबको बुरा लगवाइए। अगर आपने बोलना है तो, अगर बोलने की जगह है तो फिर बोलिए। सुकूत था जो तवील होता चला गया, एक हर्फ तमन्ना था जो अदा ना कर सका। जी जनाब, बोल है कि बोल के लब आजाद है तेरे, और खूबसूरत सा गाना जी, और था ये टीना सानी की आवाज में। और मेरे साथ कॉलर्स हैं जी, बहुत सारे कॉलर्स इकट्ठे हो चुके हैं और एक बजने वाला है। कौन है मेरे साथ, कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक जी। ए वन, आज खवतीन ही खवतीन आ रही है, क्या चक्कर है? आज खवतीन सारी जाग रही है। लाहौर से एरम बात कर रही है। लाहौर में आवाज आ रही है एरम आपको?
2: माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज आ रही है आपकी।
0: अरे वाह, तो बताइए एरम क्या करती हैं आप?
2: जी भाई, मुझे ये कहना था कि इंसान को मौके की नजाकत देखनी चाहिए।
0: आह, नजाकत
2: जी, मौके की नजाकत देखनी चाहिए और मौका देखना चाहिए कि हमें यहाँ बोलना है या नहीं बोलना। जी, वो मुझे यही कहना है सबके लिए।
0: आप क्या करती है, ये तो करना चाहिए, तो सभी को पता है। आप क्या करती है?
2: मैंने खुद की बात की है ना।
0: अच्छा, तो आप मौके की नजाकत के मुताबिक बात
2: है ना, मौके की नजाकत देखते हैं।
0: और अगर नजाकत ससुराल गई हो तो फिर क्या करती हैं आप?
2: तो फिर हम भी खामोश रह जाते हैं।
0: फिर आप भी खामोश, तो नजाकत का होना बड़ा जरूरी है।
2: माशाल्लाह प्रोग्राम आपका हमेशा की तरह अच्छा। पिछली बार जुमे को आपने बहुत कंफ्यूज किया था हमें, उस दिन मोबाइल भी हमारा ठीक नहीं था, अब तो मैंने मोबाइल भी ठीक करवा लिया।
0: अच्छा,
2: और माशाल्लाह उस दिन भी प्रोग्राम आप
0: तो
2: आपके,
0: तो मैंने आपका कान कैसे फ्यूज कर दिया
2: जी?
0: मैंने आपका कान कैसे फ्यूज कर दिया? इतने दूर बैठा मैं, इतना भी बुरा नहीं बोलता कि आपके कान फ्यूज हो जाए।
2: तो भाई आप लोग इतना, आप लोगों ने कंफ्यूज किया था जब आप लोग आ गए, कुछ सुन ही नहीं रहे थे।
0: अच्छा, आप कौन? ओ इरम, अच्छा जो आप मुस्तफा से जो बात कर रही थी है ना?
2: हाँ जी, जी।
0: अरे वाह, अच्छा आप वो हैं?
2: मुश्तबा भाई, उस दिन मैंने आपको सुनाना था, माशाल्लाह आप तीनों बहुत अच्छा गा रहे थे, तो मैंने कहा आप तीनों जजेस हैं, अभी उनसे मैं भी कुछ ऐड कर।
0: यार देखो इरम, ये नहीं कहना कि तीनों बहुत अच्छा गा रहे थे, दो बहुत अच्छा गा रहे थे, एक बहुत बुरा गा रहा था। सच बोलो ना, सच बोलने की नजाकत रखो अपने अंदर।
2: भाई सच बोलू ना, तो मैंने आपको नहीं सुना, हाँ। मुझे पता चला कि आपने गाया, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा मोबाइल खराब था, बैटरी बंद हो जाता था बार बार मोबाइल,
0: हाँ।
2: तो मैंने जिशान भाई को सुना था और दूसरे भाई को सुना था।
0: हाँ, कौन से भाई को?
2: मुस्तफा भाई।
0: कौन से भाई?
2: मैंने पहले भी मुस्तफा कहा था।
0: नहीं, कौन से भाई थे वो, नाम बताइए।
2: मुस्तफा भाई,
0: मुर्तजा भाई,
2: मुस्तफा।
0: यार वो मुस्तफा नहीं थे, वो मुर्तजा थे।
2: जी ठीक है,
0: हाँ मुर्तजा,
2: मुर्तजा,
0: हाँ मुर्तजा भाई थे वो।
2: ठीक है, अभी आओ भाई, अब समझ आ रही है। तो माशाल्लाह हमेशा की तरह आप प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा, अब इंशाल्लाह भी आ गई है, अल्लाह सलामत रखे, और अब दूसरी हमारी शहजादी भी आ जाए। और जो तो अनिला आप हम बात करें, तो आप भाई उस दिन कह रहे थे ना कि अनिला आरजे, आप आरजे हैं तो मतलब वो आई, अगर आप ना होते तो वो हमें कहाँ से मिलती।
0: हाँ, तो ये बात
2: वो भी हमारी परी है, हमारी गुड़िया, हमारी बहन है। तो हमें वैसे जब वो आती है तो प्रोग्राम चार जाने लग जाते।
0: अरे वाह, अरे वाह, देखो इतनी तारीफ ना करे कि सारे काम छाड़ के वो रेडियो ते बैठी रहे सारे। वैसे वो काम उसका ये करती मोर यही है।
2: नहीं, हम दोनों ना रात को प्रोग्राम सुनते, दिन अच्छा। वाला मैं थोड़ा सा काम।
0: अच्छा, मैंने तो जब भी दिन को भी रेडियो लगाया, अनिला की कॉल कहीं ना कहीं चल रही होती है।
2: हाँ अनिल आप भी सुने या ना सुने लेकिन हमारा सलाम उसके लिए जरूर होता।
0: अच्छा,
2: और तारक भाई को भी सलाम और हमीदपुर अंकल को।
0: चलो ठीक है, भैया एक मिनट एक मिनट इरम एक मिनट एक मिनट मेरे मैं ऐसे करता हूँ कि जब मैं आता हूँ ना स्टूडियो में तो अपने साथ एक शापर लेके आता होता हूँ, और जितने आप जैसी बहनें होती हैं ना वो शापर में सलाम डालती रहती हैं और मेरे पास सलाम इकट्ठे हो जाते हैं, मैं जाते हुए देख जाता हूँ आज मेरा शापर भर गया बस और जगह भी। और तो ना वो कहते हैं ऊपर से ना मैं गंड भी मार लीजिए तो ऑन जगह नहीं है। ओके बाय बाय। ओके मुश्तबा आज तुम मुर्तजा हो गए भाई, मुस्तफा आज मुर्तजा हो गया भाई, मुस्तफा से मुर्तजा। अरे वाह वाह, ऐसा मुझे लगता है कि आज प्रोग्राम है मुर्तजा का। वैसे मुर्तजा मुझे सुन रहे हो अगर तो आप कॉल करो, ठीक है, आप लाइव कॉल करो और इरम से पूछो कि भाई मेरे साथ क्यों इतना ज्यादती करती हो, मेरा नाम क्यों नहीं आप सही लेती हो। मुस्तफा भाई अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। जी मोहतरम कैसे हैं आप?
3: जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शफीक बोल रहा हूँ रावलपिंडी।
0: जी शफीक साहब कैसे मिजाज है आपके?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पिछले जुमे पे जो रौनक लगी हुई थी ना इस टाइम पे,
0: अच्छा
3: वो प्याज कमाल की थी।
0: अच्छा जी, तो शफीक साहब
3: जो नाम बदली हुए आज मेरा है तीसरा नाम उनका आ गया।
0: आज मुर्तजा साहब हो गए वो वैसे
3: आगे पता नहीं जितने और चेंज होंगे।
0: हाँ तो ये अगर इरम यहाँ पे रही तो फिर तो उन्होंने पूरी किताब लिखनी है इस पे।
3: किताब लिखनी है बिल्कुल, जिसको कहीं नाम ना मिलता होगा वो इनसे पूछ लेना।
0: हाँ तो बताइए जी आप क्या कहने आए हैं?
3: सर बात ये है कि जहाँ जरूरत हो ना तो वहाँ बोलना अगर देखें कि मुनासिब है तो ठीक है।
0: आप क्या करते हैं सर, मुझे ना बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या करते हैं? मैं ये सवाल ये रखा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं पूछा मैंने, मैंने पूछा आप क्या करते हैं?
3: मैं क्या करता हूँ?
0: हाँ अपने बारे में बताइए।
3: मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं जहाँ मुनासिब समझता हूँ वहाँ पे बोल पड़ता हूँ, जहाँ समझता हूँ कि यहाँ बोलना मुनासिब नहीं है हाँ। वहाँ पे खामोश।
0: अरे वाह बहुत कमाल, अब आगे आपका बोलना मुनासिब नहीं है वैसे
3: ये भी बात ही।
0: चले आगे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके जी शफीक साहब थे मेरे साथ जी, और नेक्स्ट कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, हाँ जी वालेकुम अस्सलाम।
4: हां भैया क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, कौन है?
4: सिदरा
0: सिदरा कुरेशी मंदरा से। तो सिदरा कुरेशी क्यों डर डर के बातें कर रही हो?
4: भैया फर्स्ट टाइम आपको कॉल की है।
0: अच्छा पहली दफा कॉल की है, फिर तो आप कर सकती हो, फिर डर के करो, फिर आप चीख के करो, बर्मला करो, जैसे करो मंजूर है कबूल है।
4: अच्छा आप ठीक
0: है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिदरा क्या करती है आप?
4: भैया कुछ नहीं, घर पे होती हूँ।
0: घर पे होती है, कुछ नहीं करती, खामोश रहती है, बोलती है? खामोश रहती है। तो आज आपने कॉल क्यों की? आप रेडियो सुनती हैं रेगुलरली? आज ही सुना है?
4: नहीं मैं 8 से 2 बजे तक रोजाना सुनती हूँ।
0: 8 से 2 बजे तक, तो आज क्यों कॉल की है वैसे? तो आपकी कॉल अगर आपने नहीं की तो ओके वेरी नाइस, थैंक यू सिदरा फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। तो सिदरा फिर क्या सुनाया जाए आपको?
4: मुझे पहली सी मोहब्बत मेरे
0: महबूब। ओके, आज आपने पहली कॉल की है ना इसलिए आपको सुनाऊंगा, ठीक है?
4: नहीं कोई मसला ना भी सुनाए, कोई मसला नहीं।
0: अरे वाह अरे वाह, मैं नाम दे रहा हूँ आपको, आप लेना नहीं चाहती है नाम? हैं?
4: नहीं नहीं भैया मुझे कबूल है आपका
0: नाम। चलो फिर ले लो, ये लो। अरे कितनी कमाल हो गया ना, कितना तेज हो गया तू, उठा करके गाना ले आना तू।
5: मेरी महबूब नमाज़,

मैंने समझा था कि तू दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सवाद दुनिया में रखा क्या है।

0: और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा।
1: अनगिनत सदियों के तारीख पे हिमानत लिश रेशमो अतलसो कमहाब में गुवार हुए, जा बजा बिकते हुए कोचो बाजार में जश्न, खाक में लिछड़े हुए खून में नहलाए हुए।
0: अरे वाह वाह वाह।

0: फारूकी जी कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। ये रात हुई अभी शाम नहीं हुई। जी जनाब। जी साजिद साहब बताइए।
1: यार हम पुकार रहे हैं मिसाल साहब की, मैंने कॉल आज सुनी तो बहुत दिल को अच्छा लगा। मैं तो यार बहुत हैरान था, मैं भी साल नहीं, एक साल तक कॉल मैंने भी नहीं की थी।
0: अच्छा।
1: और मैंने आपके प्रोग्राम में मैंने आपसे सवाल किया कि यार अनिला शर्मा से पूछ लिया थी ये काम पे।
0: अच्छा।
1: हाँ तो आपने भी जवाब ना दिया और अनिला साहब ने कोई जवाब नहीं दिया था, मैंने कुछ भी सुना और आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जवाब हमने सुना।
0: हाँ चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिशाल देखो ये आपके लिए साजिद साहब भी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे।
1: यार मैं पता कि जिंदगी का खुरम कोई पता नहीं होता कि इंसान की कब खत्म हो।
0: हाँ
1: हमें पता नहीं होता, ठीक है ना, हमें पता तब चलता है कि जब हमें कुछ जानने वाला हो। ये देखें हमारी प्यार मोहब्बत हकीकत किसी के साथ हवा की दोस्ती, ठीक है, हमने किसी के बारे में कुछ पता नहीं कि कौन कहाँ पे रहता है किधर रहता है, ना हमें पूछने की आगे जरूरत होती है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। और अनायत भी ये देखें ये सीनियर कॉलर है, मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं सीनियर कॉलर जो है ना हमारे उस्तादों के बराबर है। अनिल साहब होगी, आपा सलमा और मिशाल साहब होगी, साजिद अपना राशिद महमूद साहब, ये वो कॉलर है। मैं आपको इनके बारे में किस तरह भी आप गुफ्तगू करें मैं समझता हूँ कि ये आरजे से भी आगे हैं।
0: वाह जी वाह, वाह जी बहुत खूब।
1: इसकी आवाज में जब जो पर किरदार और होता है ना बंदे का किरदार जो होता है ना वो हर एक इंसान के दिल में जगह बना जाता है।
0: ऐसा ही है जी, कॉलर्स जो है वो आपको, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ। वो इसीलिए होती है कि कॉलर से प्रोग्राम बनता है और अगर अच्छा कॉलर हो तो ये बहुत सारे जो हमारे कॉलर्स हैं, जो अच्छे कॉलर्स हैं वो एसेट हैं, हमारे प्रोग्राम के एसेट होते हैं, हमारे रेडियो के एसेट होते हैं।
1: बात ये है कि कॉलर जो होता है ना ये कॉलर नहीं होता है, ये बहुत कुछ समझाने वाला होता है।
0: जी जी जी जी, बहुत कुछ समझा आपने भी, बहुत कुछ समझाया।
1: मैं भी बात कर रहा हूँ और बात अच्छी मुंह से निकलेगी तो किसी को नसीहत मिलेगी।
0: बिल्कुल जी साजिद साहब।
1: तो बुरी बातें जो होती है ना वो तो किसी के रिकॉर्ड में जाएगी ना, उसको समझ में आएगी कि क्या ये कह रहा है क्या। बस वो हम तो यही बस सलामी तक रहेगी कि अनिला साहब को सलाम, इसको सलाम, उसको सलाम है
0: जी।
1: ये सलाम है तो ठीक है, हम अनिला साहब की बहुत दिल से दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि वो कॉलर एक सलाम का बस गरा बन जाए और उसको परेशान करे, खुद ही परेशान, सुनने वालों को भी परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब की बात करें, जब भी आए रेडियो पे आए मतलब की बात करें और अच्छी बात करें।
0: चले थैंक यू सर, साजिद साहब बहुत शुक्रिया।
1: आपके मैं टॉप पे आऊं।
0: साजिद साहब आपने बहुत अच्छी बातें कर ली आज, आज मौजू पे मत बात कीजिए।
1: अच्छा थैंक यू सर, थैंक
0: यू। अच्छा ना आप बात भी रेडियो पे ना, एक और चीज भी आप अपने उसके साथ पल्लू के साथ बांध लें, जब भी आप आया करें ना कोशिश किया करें कि आप एक मिनट के अंदर अंदर अपनी बात कंप्लीट कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ना अच्छा नहीं होता। ज़्यादा बोलना, जो मैं आज बोलने पर ही बात कर रहा हूँ कि आपको कहाँ किधर कितना बोलना चाहिए, इसका फ़न आपको आना बड़ा ज़रूरी है। और कहाँ बोलना चाहिए ज़रूर बोलिए, वहाँ पे जहाँ खामोश रहना चाहिए वहाँ खामोश रहिए, और जितना बोलना चाहिए उतना बोलिए, उससे ज़्यादा मत बोलिए, क्योंकि एक वक्त तक लोग आपको तवज्जो से इन्हमाक से सुन रहे होते हैं, लेकिन जब वो बात बार बार रिपीट हो रही हो या अगर के ज़्यादा लंबी हो रही हो तो फिर इंटरेस्ट जो है ना वो खो जाता है सुनने वालों का। और हमारा रिश्ता तो सिर्फ सुनने वालों का है और सुनने सुनाने से है ना, तो इसलिए इस रिश्ते को बरकरार रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खुरम भाई, कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए।
2: जी बस आपकी दुआओं का तलबगार हूँ खुरम भाई। एक शेर याद आ रहा है मीम अमन साहब का।
0: जी जी।
2: वो कहते हैं कि दुख ये दी गल दुख या सुन दा सुख ये नू की खबरां, यार जिन्होंने मौत ने मारे रोंदे वेख के खबरां।
0: आए हाय हाय हाय वाह।
2: वो बात ये है कि जब कोई दुखी की गल सुनता है ना तो यकीन करें मतलब ना एक बहुत ही दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी बोलने की बात कर रहे हैं कि पहले खुरम भाई मेरी आदत थी कोई थोड़ा सा भी गलत कर रहा है ना तो मैं

0: मैं इसको बाद में समझा सकूंगा। वो मेरी कोशिश होती थी कि उसको साइड पे ले जाके कहता था यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, आप गलत कर रहे हैं। तो अब तो खुरम भाई वो ही बात है कि मतलब दुखों और गमों की वजह से ना इतना इंसानों में दबा हुआ होना, आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा होता है लेकिन बोलता नहीं हूँ कि यार ये ना कहे कि ये बीमार पड़ा है और लेक्चर के सिवा इसको कोई काम नहीं है।
1: चलो
0: तो ये
1: अच्छी बात है आपने की।
0: तो दूसरी बात ये है कि दो तीन दिन पहले ना मुझे ना एक आफत साहब से काम था खुरम भाई, मगरब की अजान हो रही थी तो मुझे ना गलती से मैंने उसको कॉल कर दी। उन्होंने कॉल उठा ली तो मैंने कहा आफत साहब आपकी तो नमाज का वक्त था, सॉरी मैंने आपको नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा आप बात करें। तो उनको ना उस दिन मैंने ना बहुत दिनों के बाद कहा कि खुरम भाई हम तो जो है ना मतलब एक आवारा लोग हैं लेकिन आप लोगों के दिल में अल्लाह ताला की किताब है। तो यार उधर से अल्लाह का फरमान हो रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं बात करें मैं नमाज नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा कि यार आप नमाज पढ़ा करें। उस दिन से खुरम भाई उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।
1: चलें थैंक यू। अगर अभी आप सहर हो गए हो तो आपकी फोन बंद कर दूं मैं?
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या कहूँ?
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अनीला, कैसी है?
2: मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, और दुआ करूँ जो जो जहाँ सुन रहा है अल्लाह सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे।
1: आमीन आमीन आमीन।
2: और खूबसूरत प्रोग्राम की तरह हमेशा की तरह सॉरी
1: सच बोला करो अनीला, सच सच बोला करो।
2: मैं सच बोलती हूँ, दिन में पता है कोई एक दो डेज होते हैं जब मैं सुन रही हूँ सुबह को कोई प्रोग्राम कोई खास मेरे फेवरेट, आपने मुझे मशहूर कर दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है।
1: दिल पे ले लिया आपने है ना?
2: नहीं नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको कम से कम मेरी आवाज सुनते हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छी होती है कि चले हमारी भी कोई अहमियत है।
1: चलो वो बस लंगड़ो जलनो कनेच पे ही जांदी है।
2: तो अच्छी बात है ना, क्योंकि कभी मुझे मेरी खुशकिस्मत ये है कि इतना बड़ा आरजे इतना खूबसूरत इतना बेहतरीन प्रोग्राम करने वाला आरजे कभी कभी मेरी भी आवाज के कानों में पड़ती है।
1: सच बोला करो, इतना खूबसूरत इतना बड़ा आरजे, सच बोला
2: तो क्या सच कह रही हूँ, इतने अच्छे आरजे। मैंने बताया था ना शुरू शुरू में जब आप आए थे बड़े सड़ू होते थे आपको सुन के, लेकिन आहिस्ता से जब हमने आपको सुना तो हमें अच्छा लगा कि वाकई भाई बंदा काम का है।
1: अच्छा तो लास्ट प्रोग्राम आपने सुना था जुम्मे को? लास्ट जुम्मे को सुना था आपने?
2: हाँ मैंने सुना था।
1: फिर आपने कॉल नहीं किया, हमने इंतजार करते रहे कि अनीला कॉल करेगी और आज मजा आया।
2: मैंने ये वक्त के खामोशी
1: से अच्छा डर गई अनीला, डर गई अनीला, डर गई
2: सच में डर गई थी, वाकई डर गई थी मैं।
1: आपने कहा आज तुम तीन बैठे हैं?
2: हाँ मैंने कहा आज ये तीन बैठे हैं, तीनों ने मुझे कहीं नहीं बोलने देना, चुप ही कर जा अनीला।
1: अच्छा कहीं दिमाग में ना किसी कोने में आ रहा था जब कॉलें आ रही थी, मैंने कहा अनीला की कॉल नहीं आई अभी तक, अनीला कॉल करे आज, आज मैं नहीं छड़ना ऐसा
2: है ना। कितनी खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे मेरे भाई इतना अच्छे से याद कर रहे होते
1: हैं। बचत हो गई आपकी वैसे उस दिन।
2: हाँ अच्छा हुआ मैं नहीं आई, वरना मुश्तबा कहते कहते आपने मुझे भी पता नहीं एरम बेचारी की तरह कहाँ घुमाना था। मुश्तबा भाई बेचारे खाम खाम में फंसे हुए थे।
1: हाँ बस नहीं, मुश्तबा भाई फंसे हुए नहीं थे, मुश्तबा भाई को फंसाने की कोशिश
2: कर रहे थे ना शरारती।
1: अच्छा तो अनीला बताइए फिर कि आप तो वैसे आपसे तो ये सवाल हम कर ही नहीं सकते ना कि आप खामोश रहती हैं या बोल पड़ती हैं, है ना?
2: नहीं वो यूं है कि नहीं, मैं बहुत सी जगहों पे खामोश रहना ही पसंद करती हूँ, मुझे पता भी होता है कि मामला क्या है और इस पे ऐसे ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन साथ ही मुझे ये समझ आ रही होती है कि कहने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर है चुप रहो, करने दो जो कह रहे हैं, होने दो जो हो रहा है, आप ही समझ जाएंगे।
1: सही हो।
2: और साजिद भाई के लिए और मिशाल शुक्र है तुम आ गई हो, बहुत अच्छा लगा सुन के आज मिशाल
1: कह रही थी
2: मेरे दिल में था मिशाल शायद आउट ऑफ कंट्री होगी तो इसलिए।
1: हाँ वो आउट ऑफ कंट्री थी के?
2: जी जी जी, अल्लाह सलामत रखे जी जो जो जहाँ है, और थैंक यू उनके लिए जो मुझे इतना याद रखते हैं, इतनी पिजराई करते हैं मेरी, और इतनी आप भी इतना मेरा हौसला बढ़ाते हैं जब भी मैं आती हूँ। आप सबके लिए बहुत सी दुआएं और शुक्रिया, अल्लाह सबको सलामत रखे, थैंक यू खुरम,
1: बहुत शुक्रिया अनीला, थैंक यू सो मच जी। इस वजह से अनीला सबको अच्छी लगती है ना, क्वालिटेटिव बात करती है जितनी भी करती है, थोड़ी और क्वालिटेटिव। 1:31 जी, प्रोग्राम मानव इंटरनेशनल आरजे के भी मुझे बुलाते हैं जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जो जो लोग मेरे साथ इस वक्त शामिल हाल हैं, اور مجھے سن رہے ہیں جی, ڈاکٹر نعیم سن رہے ہیں اس وقت, ذیشان سن رہے ہیں جی مجھے اس وقت, اور بلال سن رہے ہیں جی اس وقت میرے ساتھ شامل حال ہیں. اس کے علاوہ جی میرے ساتھ ہیں جی سروش ہیں اور اور اور اور اور اور اور ظفر علی ہیں میرے ساتھ, اور جمال ہیں, جمال افضل میرے ساتھ ہیں. زینب اسد سن رہی ہیں جی مجھے لاہور سے, تھینک یو.

0: वाह वाह वाह वाह, क्या गाना था जनाब। और ये गाना हम अपने बचपन में सुना करते थे, और जब पाकिस्तान टेलीविजन पे ये गाना लगा करता था, इसकी वीडियो चलती थी, तो वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ये था। और इसकी वीडियो भी कमाल वीडियो बनाई गई थी, और कमाल गाना जो है वो आज तक हमारे कानों में जो है वो रस घोलता है, और बहुत अच्छा लगता है जब भी ये गाना हम सुनते हैं। ओके जनाब, आप कॉलर है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम, 1:39 है, कौन है?
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: जी मोहतरम, कौन है, कहाँ से?
1: जी खुरम भाई, मैं इस जो लड़की कॉल कर रही थी ना, वो जो कॉल कर रही थी कि उसे कोई प्रॉब्लम है उसके मकान की या उसके वर्सा की तरफ से।
0: जी जी,
1: तो ट्राई करो अगर आप उससे मेरा किसी तरह से कांटेक्ट करवा दें तो इंशाल्लाह जो हमारे से हुआ था हम उसकी।
0: आप अपना तारुफ कराइए मेरे भाई, अपना तारुफ तो कराइए।
1: मैं आसिफ, मोहम्मद आसिफ बोल रहा हूँ।
0: अच्छा मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ साहब क्या करते हैं आप?
1: हमारा एक अपना डिपार्टमेंट है, उसमें हम काम करते हैं, हमारा ठेकेदारी निजाम भी होता है और भी कुछ मामलात होते हैं।
0: अच्छा, आपको लॉयर हैं?
1: जी
0: आप लॉयर हैं, कोई वकील हैं आप?
1: नहीं वकील नहीं, और वकील हमारे दोस्त हैं।
0: अच्छा,
1: तो अगर कानूनी उसे कोई मदद की जरूरत हो तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन वो पहले से उसका किसी तरह से अगर कॉन्टेक्ट हो जाए आप आपकी मदद से।
0: ठीक है चलें, ठीक है
1: बदल उसको, ये नंबर उसको दे दें।
0: जी जी ठीक है, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, और अगर आपकी जरूरत हमें पड़ी तो इंशाल्लाह आपसे मदद लेंगे। ठीक है,
1: तो दूसरी बात ये है कि अगर उसे किसी तरह और तरह की भी अगर मदद तो मकान बनाने में या किसी अशिया की, तो इंशाल्लाह हम ताबेदार हैं।
0: चलें, थैंक यू जी आसिफ साहब, ख्याल रखें अपना,
1: अल्लाह
0: हाफिज़ जी।
2: क्या
0: ये हुई ना बात,
2: क्यों
0: बेगाना वार ये हुई ना बात। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मोहतरम,
3: बहुत लंबी लाइन है आपकी, कॉल मिलती नहीं है।
0: नहीं मिल रही ना, वाकई आज बहुत लंबी चल रही है, आज मैं देख रहा हूँ।
3: नहीं आज नहीं, हमेशा से ऐसा ही है। वो बच्चा भाई कह रहे थे ना कि आपने लिस्नर बहुत ज्यादा है, ये सच है, बहुत ज्यादा है आपके।
0: अच्छा, बस ये रब्बे कायनात की बड़े बड़ा रहम है, बड़ा करम है कि लोगों को सुनने की तौफीक अल्लाह देता है, सुनते हैं लोग और मोहब्बत करते हैं, रब का बहुत शुक्र।
3: आपको आपको इतना अच्छा प्रोग्राम करने की तौफीक है।
0: जी जी जी, इसके लिए भी मैं रब का शुक्र गुजार हूँ। अगर
3: आपको
0: पसंद आता है आतिफ अब्बासी साहब। अब जी अब्बासी साहब क्या कहने आए हैं?
3: ठीक है, मेरा तो ये है कि मैं बोलने वाला हूँ।
0: अच्छा आप बोलने वाले हैं, आप बोल जाते हैं।
3: कोई भी हो, स्टेज कोई भी जगह हो, कोई भी सामने हो, बस बोल देता हूँ, जो दिल में बात होती है करता हूँ, खुल के करता
0: हूँ। चलिए दैट्स ग्रेट, ये तो
3: अच्छी बात है। मैं बदनाम भी बहुत होता हूँ, बहुत करता हूँ करता हूँ, क्योंकि बातों को होते हैं ना जो दिल में बात रखते हैं वो करते नहीं है किसी के सामने, तो ये कहा जाता है कि ये लोग ठीक है, लेकिन हमें ठीक नहीं कहा जाता, हम दिल में जो होता है वो बोल देते हैं।
0: चलें बोलते रहा करें आतिफ अब्बासी साहब, वेरी गुड, वेरी वेल डन, लेकिन सोच समझ के बोला करें। ठीक है, ख्याल रखें अपना। मरीना बिलाल मेरे साथ लाहौर से आई हैं, मलिक फराज मेरे साथ हैं, हेरा फातिमा कहती हैं कि मगरूर नहीं होना चाहिए, खामोश भी नहीं होना चाहिए। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: बेटा खुदम, मैं दोबारा आ गई, नसीम रवात वाली। अच्छा मैंने ना एक आपको शेर सुनाना है।
0: नसीम साहिबा, अच्छा नसीम साहिबा मेरी बात सुनिए, नसीम साहिबा
4: सुनानी है।
0: नसीम साहिबा, नसीम साहिबा ऐसा है, आप मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं आप, लेकिन ये है कि प्रोग्राम में एक असूल है कि एक दफा ही कॉल की जाती है, ठीक है, ओनली वन टाइम, एक ही दफा मौका दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू नसीम साहिबा, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है वो कॉल मिला रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत दफ़ा कॉल मिलाते हैं, कॉल नहीं लगती और टाइम बहुत कम होता है, मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, तो कोशिश किया करें आप थोड़ी बात करें, मुख्तसर बात करें, एक ही दफ़ा बात करें ताकि किसी दूसरे को मौका मिल सके कि वो प्रोग्राम में शामिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम।
5: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम।
5: तनवीर अकबर कर रहा
0: हूँ। तनवीर अकबर साहब जी, तनवीर साहब क्या कहने आए हैं?
5: सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम
5: अस्सलाम। और माशाल्लाह जो आपका पिछला कंपाइन शो था, क्या बात है।
0: अच्छा जी,
5: आप लोग आपने लोगों को हंसा हंसा के ना जो है ना वो पागल कर दिया हुआ।
0: बस चलें अब उनको हम दवाइयां शवाइयां गोलियां शोलियां दी हुई हैं, अपसेट हो जाएंगे इंशाल्लाह।
6: नहीं कभी अभी भी हंस रहे हैं।
0: अच्छा
6: क्या से होता है यार।
0: अच्छा
6: बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। ये जो अभी आपने सॉन्ग लगाया ना, क्या बात,
0: कौन से वाला? ये वाला जो अभी आप सुन रहे हैं,
6: ये अभी इश्क मोहब्बत वाला,
0: ये बेपरवाह वाला,
6: जबरदस्त।
0: आहा बेपरवाह, आहा सुनिए जरा, सुनिए।
6: और दूसरा आपका जो टॉपिक है उसमें मैं तो जनाब खामोश हो जाता हूँ।
0: बिल्कुल ठीक है, अब आप खामोश रहिए, ठीक है?
6: थैंक यू।
0: जुल्म कमाया। एक कॉल और लेते हैं जी, और फिर आपको बेपरवाह सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम
7: अस्सलाम।
0: जी मारिया शहजादी, कैसे मिजाज हैं आपके?
7: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। टॉपिक पे मैं ये बात करना चाहूंगी कि कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे खामोश भी रहना पड़ता है, मगर गलत बात जो होती है वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता।
0: आप क्या करती हैं मारिया, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप क्या करती?
7: मैं अपनी बात ही कर रही हूँ ना।
0: तो ये कहे ना, ये
7: कहीं पे खामोश भी रहना पड़ता है, लेकिन जो गलत बात होती है उस पर बर्दाश्त नहीं होता, फिर बोल पड़ती हूँ मैं,
0: बोल पड़ती है।
7: तो लिहाजा मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल इसलिए की है खुरम भाई, कि हो सकता है आपके लिसनरों में से कोई आमीन कह दे तो मेरा मसला हल हो जाए। मैं ना किसी परेशानी में हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला हल सुनना,
0: अल्लाह ताला आपकी परेशानी को हल करे। सारे बोलो आमीन आमीन। लो जी बेपरवाह क्या कहता है, सुनते हैं।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल। के बी आपके साथ है और के बी के साथ आपके साथ रहता है हर जुम्मे को और हर पीर को। आज पीर की रात है और मंगल का आगाज है। वक्त हुआ चाहता है 1:50 और 10 का साथ आपके साथ बाकी है। दर्द सभी के होते हैं और सभी को दर्द होते हैं। कोई किस रंग के दर्द में जीता है और कोई किस रंग के दर्द में जीता है। हर शख्स की अपनी अपनी कहानी है। देखने को वो बड़ी अलग सी कहानी है, समझने को भी वो बड़ी अलग सी कहानी है। लेकिन अगर आप बागौर जायजा लें और अगर आप बागौर देखें और उसको समझें तो आपको सभी कहानियां एक जैसी लगती हैं। सबका मतन एक जैसा लगता है आपको। सो आपकी कहानी, मेरी कहानी और उसकी कहानी और इसकी कहानी, सबकी कहानी एक जैसी है। सबकी कहानी दर्द तो दर्द है ना। वजह दर्द मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन दर्द तो दर्द ही है। वजह दर्द मुख्तलिफ हो सकती है, जगह दर्द मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन दर्द का एहसास वही दर्द वाला ही होता है। दर्द की शिद्दत ज्यादा या कम हो सकती है लेकिन दर्द दर्द ही होता है भाई।

0: हेलो, नहीं बोल रहे आप, मैं नेक्स्ट कॉलर को मौका देने लगा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर।
1: वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक जी, आप बताइए।
1: मैं अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक हूँ। हक नवाज बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी हक नवाज साहब, फटाफट कहिएगा, वक्त बहुत कम है।
1: खुरम भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी क्यूट सी प्यारी बहन मारिया के लिए बहुत ज्यादा दुआगू हूँ। अल्लाह ताला उसकी वो जो परेशानी है इसके लिए उसने दुआ कराई है। मेरा मालिक बेहतर जानता है, अल्लाह ताला उसकी उस परेशानी से उससे
0: आमीन सुमा
1: निजात
0: में,
1: दिला
0: आमीन
1: देता
0: सुमा में। थैंक यू,
1: है। और
0: आगे
1: दूसरा मैं
0: बोलिए।
1: ये रिक्वेस्ट करूंगा, सारे गाना अगर प्ले कर दें तो आता सखेलवी की आवाज में जाते वक्त कर दें या भी कर दें, आपकी मेहरबानी होगी।
0: अच्छा जी, इससे पहले मुझे लगता है मैं
1: सब
0: गाने नहीं,
1: माया है
0: इससे पहले मैं गाने नहीं प्ले कर रहा था। इससे पहले क्या कर रहा था मैं?
1: सर। नहीं मतलब फरमाइशी तो नहीं निकाल रहे थे ना खुरम भाई, आप मेरे साथ क्यों ऐसे करते हैं? मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में आने ही मैंने छोड़ दिया है।
0: अच्छा, आपके साथ मैं क्या करता हूँ यार, क्या किया मैंने आपके
1: बहस
0: साथ?
1: करते हैं मेरे साथ
0: आपके
1: हर बात पे।
0: आपके कान में खुजाई की है मैंने कभी?
1: अच्छा खुरम भाई प्लीज, आप प्ले करेंगे
0: क्या क्या प्ले करूं?
1: अतौल्ला सखेली का गाना सब माया है?
0: सब माया है,
1: हाँ अतौल्ला की आवाज में।
0: आप अगर मुझे गा के सुनाएंगे ना तो फिर करूंगा।
1: मैं कसम खुदा की मेरा गला खराब, मैं भी महफिल से हो गया, यकीन जाने
0: आप महफिल से हो
1: अल्लाह
0: गए? मतलब महफिल
1: अल्लाह
0: क्या,
1: को आज़ा नाज़ा
0: कौन
1: करके
0: सी
1: क्या कहूँ,
0: महफिल,
1: मेरा गला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है।
0: कौन सी महफिल?
1: महफिल नाथ में से होके आ रहा हूँ सर, अभी अभी आया हूँ।
0: अच्छा, महफिले नात से होके हैं आप, अभी अभी आए हैं
1: हाँ
0: तो नाते पढ़ते रहे हैं आप?
1: अभी आप गाना प्ले करेंगे या नहीं सर?
0: तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब गाना प्ले करो, गाना प्ले
1: जी
0: करो,
1: सर।
0: तुम मेरा गाना प्ले करो
1: अच्छा
0: बस।
1: सर, सॉरी
0: हैं?
1: सॉरी सॉरी, मैं कान पकड़े माजर कहते हुए आप बोले
0: हाँ,
1: सॉरी।
0: मतलब आप मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहे अकनवाज, मैं
1: नहीं नहीं
0: आपसे बात
1: भाई
0: करना,
1: सर, मैं ताबेदार, आप मेरे भाई हैं, काबिल
0: आप
1: इज्जत
0: मुझे ये कह रहे हो कि भाई मेरे से बात मत करो, बस कुछ भी ना करो, चुप हो जाओ, बस मेरा गाना प्ले करो, बस गाना प्ले करो। खुरम, मैं कह रहा हूँ गाना प्ले करो, ऐसे कह रहे हैं?
1: अच्छा खुरम भाई सॉरी सॉरी सॉरी सर, सॉरी कह रहा हूँ ना
0: नहीं यार, ये आपने पहले तो मेरी ना दिल आजारी कर दिया, आपने कहा यार
1: सर,
0: कि
1: सॉरी जो कह दिया, आप कान पकड़ लिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा।
0: फिर आप कहते हैं मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आता।
1: मैं आपसे नंबर लूंगा, आपसे वीडियो पे बात करूंगा, फिर आपको कान पकड़ के माफी मांगूंगा आपसे।
0: अच्छा, मतलब भी
1: अभी आप गाना प्ले कर देंगे,
0: कौन से वाला आपने कहा था?
1: अताउल्ला इस सखेलवी की आवाज में सब माया है।
0: सब माया, अगर मुझे ये ना मिले तो फिर मैं क्या करूं?
1: सारे आजकल क्या नहीं मतलब यूट्यूब खोले सब कुछ सामने आ जाता है।
0: नहीं मेरे पास ना,
1: अताउल्ला इस सखेलवी लिखे और आगे लिखे सब माया है तो आ जाएगा।
0: अच्छा, असल में मेरे पास ना कुछ कुछ चीजों के ऊपर कदगन है, मैं कुछ चीजें नहीं कर सकता ना यहाँ पे।
1: चले खुरम भाई, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।
0: मैं तावल्ला का गाना चला देता हूँ। मुझे मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा सब माया, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तावल्ला का को कोई
1: चलो
0: और गाना बता दे, मैं प्ले कर देता हूँ। वैसे मेरी प्रोग्राम में फरमाइश पूरी नहीं होती अकनवाज, सिर्फ आपके लिए प्ले कर रहा हूँ।
1: थैंक यू सो मच खुरम भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, बहुत
0: आमीन
1: शुक्रिया।
0: आमीन आमीन। तो मैं चले आपके लिए कोई गाना प्ले कर देता हूँ, ठीक है, अताउल्ला की आवाज में।
1: ओके सर, ओके लाफे।
0: आए अल्लाह हाफिज, बाय। और गाना जो है वो अताउल्ला का मैं जरूर प्ले करूंगा, ये वाला अच्छा हुआ था।

0: मिठिया मिठिया बात है, लेकिन वक्त बहुत कम है भाई, कॉल के बाद शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब,
1: कैसे हैं बेग भाई? खैरियत?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का करम। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप?
1: मैं अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए, खैरियत
0: से। डॉक्टर साहब ज़हन नसीब आप आए हैं, तो कुछ अच्छा ही बोला होगा हमने, आप आए हैं।
1: आपने माशाल्लाह एक बात बड़ी अच्छी की और दिल की गहराइयों से, उसमें दो बातें जोड़ देता हूँ। देखें, एक मैंने किसी साहब से कहा कि जी के अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी हुई है, उन्होंने आगे से कहा नाउज बिल्ला जी क्या शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा एक मेरे भाई, मैं बिल्कुल अदल के मुताबिक, मैं किसी को ये बात नहीं कहता, वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया मेरी नजरों के सामने, और जो आपने काम किया तो मैं गवाह हूँ, और अल्लाह मेरी जुबान बन के भी तो आपसे कह रहा, तो शुक्र अदा करें जाए आप तो बताए पे चले गए हैं। तो सम टाइम मखलूक खुदा की आवाज, इस वक्त कोई कहता है ना कि सर आप हक अदा कर रहे हैं, तो जो आप खामोशी में या तारीखियों में जो भी अमल साले कर रहे होते हैं, तो फिर मखलूक खुदा के दिल में अल्लाह डालता है किसी के लिए एहतराम इज्जत, फिर वो एक एहसान करते हैं कि गवाही देते हैं कि जी क्या माशाल्लाह बड़े आप अच्छे इंसान है। तो इसको शुक्र शुक्र में बदलना चाहिए बजाय के तकल्लुफ में। हम आगे कहते हैं नहीं नहीं जी कोई और बात करें, तो जबकि मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये बात थी,
0: अच्छा
1: जबकि कोई

0: सकते हैं।
1: मुझे वक्त खत्म हुआ चाहता है लेकिन क्या करें।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: पूरम भाई क्या हाल है?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप बताइए।
2: बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है, अब्दुल्लूर हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से।
1: जी हाशमी साहब, मैं मुझे पता था कि हाशमी साहब कॉल कर रहे हैं इसलिए मैं बैठा हुआ था।
2: काफी देर से ट्राई कर रहा था। एक दो खवातीन है जिनको विसार कोई का बड़ा शौक है, सारा टाइम वो आपका हर शो में ना 10-15 मिनट ठीक है, टॉपिक भी उन्हीं पे है ना, जिस तरह आबिश ने कहा था ना, हम फकीरों के हैं आदाब तकल्लम ही कुछ और, जब हमें बोलना हो रक्स गुनाह हो बोलते हैं,
1: समझ
2: जब हमें बोलना हो रक्स गुनाह बोलते हैं,
1: रक्स गुनाह
2: तो
1: बोलते हैं।
2: टॉपिक पे बात कम करती हैं, एक दो खवातीन है, मैं जब भी सुबह भी पे भी कॉल करूं रात को भी पता नहीं सोती भी है कि नहीं।
1: अच्छा।
2: तो टॉपिक जो आपका है ना आज,
1: अच्छा
2: वो इंग्लिश का मुहावरा ना, थिंक बिफोर यू स्पीक।
1: यस, वाह वाह वाह वाह सर, क्या बात किया
2: बोलो
1: सर, क्या
2: चुप तो सुख।
1: बस सर हाशमी साहब आज आप महफिल लूट गए हैं, ये जो जुमला आपने कहा है ना कि बोलने से पहले सोचो कि किसी की दिल आजारी तो नहीं हुई, अरे वाह।
2: अच्छा मुश्तबा भाई के एक दो नाम मैं भी रख लेता।
1: अरे वाह,
2: वो इरम को बड़ा
1: नहीं सर, यहाँ से आगे मत जाइए, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात।
2: सर
1: सुनिए हाशमी साहब मेरी बात सुन लीजिए, आपने जो बात की है ना कि भाई के सोच बोलने से पहले तोलो और सोचो और फिर बोलो, सर मैं बस आपने ना महफिल लूट ली है। वैसे मैं यही कहना चाह रहा था सभी के लिए, अपने लिए और आपके लिए भी।
2: हाँ जी, चलो फिर वो शायरी दूसरी तरफ चली जाएगी, खुश रहे, टाइम थोड़ा है।
1: हाँ जी,
2: अल्लाह
1: हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। समझने वाले समझ गए होंगे कि केबी क्या कहना चाहता है। अगर कोई नहीं समझा ना तो फिर वो उसका कसूर है। कहना यही चाहता था कि सोचिए और फिर बोलिए वरना खामोश रहिए। जा रहा था मैं, जाने देना चाहिए था मुझे, रोक लिया आपने, तो चले आपको भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
3: ईमान बात कर रही
1: हूं। अरे ईमान क्या हाल है, कैसी हो ईमान? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ईमान। और ईमान आज के प्रोग्राम की आप आखिरी कॉलर होंगी।
3: अच्छा भाई,
1: आपके बाद मैंने कॉल कोई नहीं लेनी, बस
3: मैं खामोशी से सारा शो सुनती रही।
1: अच्छा,
3: जो सुनते सुनते मैं पुराने वक्त में चली गई।
1: अच्छा, कौन से पुराने वक्त में?
3: जब आपका शो सुना करते थे पहले।
1: अच्छा, तो उस पुराने वक्त में क्या था ऐसा कि जो आप
3: ऐसे सुनते रही? मैं मुझे ना अपना आप बड़ा पराया लग रहा है अब आपका शो सुनते हुए।
1: अच्छा, क्यों?
3: लोग रहे जो पहले होते थे।
1: अच्छा,
3: अब सब कुछ नया नया लग रहा है तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूं।
1: सब नया नया लग रहा है, पुरानी बातें अब नहीं रही।
3: हाँ जी, जो पुरानी महफिल सजती थी ना वो लोग रहे ना ऐसा कुछ रहा।
1: तो मतलब पुरानी वाली महफिल अच्छी थी या अब वाली महफिल अच्छी है?
3: मुझे तो पहले वाली अच्छी लगती थी।
1: अच्छा, तो फिर जब आप नहीं आओगी तो फिर देखो महफिल पराई पराई लगती है ना। अच्छा, गिले कर रही हो आपके, मैंने आपके कमेंट नहीं पढ़े है ना?
3: वो तो आप पढ़ते नहीं हो तो जाके
1: नहीं, मैं देख रहा था कि मैं क्या ईमान जो है ना वो कॉल करे, कमेंट्स तो उसके मैं शामिल नहीं करूंगा, इसको इतना मैं तंग करूंगा कि वो कॉल करे। तो देखो आज आपने कॉल कर ली, आखिरी कॉल आपकी है और आपकी कॉल के बाद मैंने कॉल नहीं लेनी, सो आपकी कॉल जो है ना वो लास्ट कॉल है, तो ये कितना बड़ा ऑनर दिया मैंने आपको आज। अच्छा जी, मैं ईमान के बारे में आप सब सुनने वालों को बताऊं जी कि ईमान जो है वो मेरे प्रोग्राम का एक बड़ा अहम एक खासा हुआ करती थी और मेरे प्रोग्राम को ये क्राफ्ट किया करती थी, मुझे टॉपिक बताया करती थी, उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट दिया करती थी कि यार भाई आज आपने इस पे बात करनी है, आज इस पे बात करनी है। कभी कभार ईमान बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आती थी और कभी कभार ये मुझे 10-20-15 टॉपिक्स भेजती थी और मैं कहता था नहीं ईमान, नहीं ईमान, नहीं ईमान, ये थक जाती थी लेकिन फिर भी भेजती थी। सो ईमान फिर अब आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया ना, फिर इसलिए जब इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है,
3: है? नहीं ऐसा तो नहीं है, बस हालात बदल जाते हैं तो।
1: हाँ, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं। चले खुश रहें, आबाद रहें ईमान, जहां भी रहें सुखी रहें, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हमेशा याद रखी जाएंगी और आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी FM 101 के लिए स्पेसिफिकली मेरे प्रोग्राम के लिए वो हमेशा याद रखी जाएंगी, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती, ठीक है। और आपके आपके कमेंट्स हम पढ़े ना पढ़े, मैं प्रोग्राम में शामिल करूँ ना करूँ, मैं पढ़ता जरूर हूँ। चलो चलो मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ भी लेता हूँ, ठीक है, जाते जाते। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ना जी, कॉल ना उठाएं, कमेंट ना पढ़ें तो लोग नाराज हो जाते हैं। खैर जी, ईमान मुझे लिख रही है कि हमने खुद में तुमको पुरोया है तस्बीह की तरह, याद रखना कि अगर हम टूटे तो बिखर तुम भी जाओगे। फिर कहती हैं कि भाई संगा चाल दे, तो आई एम फाइन। और कहती हैं भाई समझ नहीं आ रही कि क्या बोलूं, क्या कमेंट करूं। शो सुनते सुनते पुराना वक्त याद आया जब यहां आपके साथ हम रौनक हुआ करते थे। आज आप अपने नहीं पराए पराए लग रहे हैं, वही बात जो हमने कॉल पे की है। मेहमान ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी अपने हैं, आप भी अपनी हैं, जब भी रहेंगी, जब तक रहेंगी, जब तक नहीं भी रहेंगी तब भी आप सारे लोग अपने हैं। जो लोग शामिल होते रहते हैं प्रोग्राम में, डेफिनेटली वो प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। आज हम इस माइक के सामने हैं तो आज कल को हम इस माइक के सामने नहीं रहेंगे, तो फिर ये किसी और का माइक, किसी और की महफिल हो जाती है। तो महफिल के अंदर, वो कहते हैं कि महफिल के अंदर जो लोग होते हैं वही महफिल होती है। आज हम यहाँ पर हैं, कल को आज के भी आज यहाँ पर मौजूद है, कल को ये माइक्रोफोन किसी और के पास होना है, यहाँ पे मैं नहीं हूँगा तो ये फिर मेरा नहीं रहेगा, ये किसी और का होगा, क्योंकि इस कुर्सी पे बदल जाना है हम सब ने। इसी तरह इस दुनिया के ऊपर से भी हमने बदल जाना है। आज हम जहाँ जहाँ हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, आज हम कहीं बहन हैं, कहीं बेटी हैं, कहीं माँ हैं, और कहीं कुछ और हमने किरदार निभा रहे हैं। तो कल को हमने उस किरदार से निकल के इस दुनिया से जब चले जाना है तो किसी और ने ये किरदार निभाने, और अजलों से लोग किरदार निभा रहे हैं, उनकी जगह हमने ली है और हमारी जगह दूसरे लोगों ने ले लेनी है। तो इस तरह ज़िंदगी इसी तरह चलती है। तो इसी बात के साथ जी मैं आज के प्रोग्राम का अख्तितम चाहूँगा कि आपको जो भी किरदार सौंपा गया है, आपको जो भी जगह दी गई है, आप उस जगह के ऊपर उसका हक अदा कीजिए और उस किरदार को उस वक्त तक खूब निभाइए, और ऐसा निभाइए कि आपके जाने के बाद भी काफ़ी अरसे तक लोग उसको याद रखें। और आप अपने रब के सामने जब खड़े हों तो आप रब के सामने सुरखुरू हों और उसे कह सकें कि अल्लाह जो तूने किरदार मुझे दिया था मैंने उसको बाखूबी निभाया है, वो तेरी मंशा के मुताबिक निभाया है, जिस तरह तू चाहता था उस तरह निभाया है। अल्लाह ताला हम सबको रब की मंशा के मुताबिक अपने किरदार निभाने की तौफीक अता करे, और हम सबको जो वो नहीं चाहता वो ना करने की तौफीक अता करे। अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे आप सबको, मुझे और जितने सुनने वाले हैं उन सबको। दुराने गुफ्तगू को गलती को सैफ हुआ चाहता हो तो माफ़ी चाहता हूँ, रब के हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफ़ी खासगार हूँ। किसी के कान को, किसी के दिल को कोई बात गिरा गुजरी है तो माफ़ी चाहता हूँ। मुझे आज के भी कहते हैं, और प्रोग्राम मेरा होता है हर जुम्मे को और हर पीर को, और अगर आप प्रोग्राम में शामिल हाल होना चाहते हैं, प्रोग्राम में कुछ अच्छी बात करना चाहते हैं, किसी खास मौजू के ऊपर बात करवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडलर है kb.baig, आप लिखेंगे kb.baig तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। आप मुझे बता सकते हैं कोई भी बात अगर आप मुझे कहना चाहते हैं। तो मुलाकात होगी आपके साथ जी अगले जुम्मे को, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त केबी को, केबी साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़। चलाने के बाद बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं, सुन रखो कि वो हर चीज पर एहाता किए हुए है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: हामीम,

0: ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने उसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते। और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
1: वजालू लहू मिन इबादिही
0: और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते।
1: वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून
0: और हम अपने परवरदिगार

क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो और जो सरी गुमराही में हो उसे राह पर ला सकते हो। अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो उन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे।